बैजू बावरा फिल्म से ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, शकील बदायूनी की रचना थी और नौशाद का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे आशा फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत ने संगीत से संवारा है।

दोस्तों, हर इंसान एक नई आशा लेकर जीता है। उसके रास्ते में बहुत सी मुसीबतें आती हैं, लेकिन एक आशा की किरण हमेशा जब मन में पैदा होती है तो अगले दिन जीने की राह फिर बना लेता है। और अब अगला गीत अपने पराई फिल्म से, येसुदास का गाया हुआ, योगेश की रचना है और बप्पी लहरी का संगीत।

दोस्तों, जो शाम के रंग में रंग गया, उसे और किसी रंग में रंगने की क्या जरूरत है।

हमारे श्रोताओं ने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। दोस्तों, इस संसार में बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने किसी के लिए बहुत भलाई की, लेकिन बदले में हमें क्या मिला। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि शायद हमारा स्वभाव यही कहता है कि हम ऐसा ही करें, और सामने वाले का स्वभाव है वो वही तो देगा। इसलिए भला करते वक्त कभी ऐसा ना सोचें कि हमें वैसा ही मिलेगा जो हम बांट रहे हैं। घर संसार फिल्म से अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ में। SH बिहारी की रचना है और रवि का संगीत।

मोहम्मद रफी के गाए इस रचना के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपनी दोस्त वंदना चुग को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम और अब सुनते हैं वंदे मातरम।

नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की नवी तिथि, तदनुसार 1 अक्टूबर 2026 सुबह के 5:53:40 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। छह बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में। भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण होगा 6:10 से 6:44 पर। और इस कार्यक्रम की प्रस्तुति रहेगी सुरुति जिंदल की। छह बजकर 44 से 6:55 तक आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस कान। आज अयोध्या कांड के अंतर्गत भाग 70 आपको सुनवाया जाएगा। छह बजकर 55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और 7 हिंदी में समाचार होंगे। सात बजकर 5 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और 7:10 से 7:30 तक गोल्ड सुप्रभात कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे सुरती जिंदल। सात बजकर 30 से 8 तक आप सुनेंगे आज सवेरे। आठ बजे से लेकर 8:15 तक आप सुनेंगे समाचार प्रभात। अंग्रेजी में समाचार होंगे। 8:30 से 8:45 तक उर्दू में समाचार होंगे। म्यूजिकल दिल लगी 8:45 से 9 तक आप सुन सकते हैं सुरुति जिंदल के साथ। और 9 हिंदी में समाचार होंगे 9:05 पर अंग्रेजी में। सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क्स जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया का विमोचन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार

समझौते से कारोबार के लिए नए अवसर पैदा करने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन में देशभर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज और संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6,044 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका में श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो गया है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण का, और आज अर्पण में आपके साथ हूँ मैं सुरति। सुप्रभात। आइए प्यारी सी सुबह को भक्तिमय बनाएं प्यारे प्यारे से भजनों के साथ।

बड़ा सोचिए, बड़ा करिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपनी सोच को बड़ा रखें।

इंसान का चरित्र कैसा होना चाहिए? बिल्कुल नमक जैसा। पूछे क्यों? वो इसलिए कि नमक जैसा किरदार बनाने पर मौजूदगी का पता ना चले, लेकिन अनुपस्थिति हर कोई महसूस करता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे खाने में अगर नमक ना हो तो नमक की कमी महसूस होती है, ठीक ऐसे ही अगर हमारा चरित्र होगा तो हमारे ना होने पर भी हमारी कमी का एहसास होगा।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण, और आज अर्पण में आपका साथ दे रही हूं मैं सुरती।

समय जो है वो सबसे बड़ा शिक्षक है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है और ये हम समय के साथ ही सीख

किस्मत का इंतजार मत करिए, जानते हैं क्यों? क्योंकि अपनी मेहनत को ही आप अपनी तकदीर बना सकते हैं, इसलिए मेहनत के जरिए रास्ते तैयार करने की कोशिश करें।

इसी के साथ अर्पण में फिलहाल बस इतना ही, और अब वक्त हो गया है श्री रामचरित मानस गान का, तो आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस का अगला भाग FM गोल्ड पर।

प्रयाग में त्रिवेणी स्नान करके भरत ने तीर्थराज की वंदना करते हुए अपनी मनोकामना प्रकट की। मैं अपना क्षत्रिय धर्म न त्याग कर अत्यंत आर्त होने के कारण आपसे भीख मांगता हूँ। न मुझे अर्थ में रुचि है, न ही धर्म काम और मोक्ष की कामना है। बस एक ही याचना है कि जन्म जन्मांतर श्री राम के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। भरत को त्रिवेणी के बीच से गूंजती कोमल वाणी सुनाई पड़ी। हे तात, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री राम के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम्हें व्यर्थ ही ग्लानी हो रही है, क्योंकि श्री राम को तुमसे अधिक कोई भी प्रिय नहीं। भरत का तन मन पुलकित हो गया। वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि के चरणों में झुके ही कि मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया।

0: आप सभी सुन रहे थे श्री रामचरित मानस और अब वक्त हो गया है समाचारों का। सुनेंगे संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और ठीक 7:10 पर सुनना न भूलिएगा प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात मेरे यानी सुरति के साथ। लेकिन आप सुनते हैं फिलहाल संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां भारत मण्डपम् इत्यत्र संघलोक सेवायोगस्य शताब्दी समारोहे सहभागं करिष्यति। सः अस्मिन् अवसरे आयोजितं कार्यक्रममपि सम्बोधयिष्यति। अयं कार्यक्रमः विगतवर्षस्य अक्टूबर मासस्य प्रथमदिनांकात् प्रारब्धानां आवर्षं यावत् प्रवर्तमानानां समारोहाणां समापन सूचकः भविष्यति। षड्विंशत्यधिक नवदशशततमे वर्षे संघलोक सेवायोगस्य स्थापनायाः शतवर्षपूर्त्यवसरे एतस्य समारोहस्य आयोजनं भवति। श्रीमोदी संघलोक सेवायोगस्य शताब्दी स्मारक नाणकम् अथ स्मारक प्रैष्य चटिकाञ्च प्रख्यापयिष्यति तथा 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन्स इन इंडिया इति नामना एकस्य पुस्तकस्य विमोचनमपि करिष्यति। मंत्रिमण्डलस्य आर्थिक कार्य समित्या ह्यः अग्रिम वित्तीय वर्षस्य रबी विपणन सत्रस्य सर्वेषां सूचितानां सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धयितुं अनुमोदनं प्रदत्तम्। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः नवदिल्ल्यां केन्द्रीय मंत्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् उक्तवान् यत् कृषकेभ्यः तेषां कृष्युत्पादानां लाभकरं मूल्यं सुनिश्चेतुं निर्णयः अयं गृहीतः।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट बार्ली ग्राम लेंटिल्स रेपसीड मसूर मस्टर्ड और सेफ्लावर इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: कुसुम सस्यस्य समर्थन मूल्ये सर्वाधिकं 75,600 रूप्यकाणां सर्षपस्य 13,400 चणकस्य 83 गोधूमस्य च 25 रूप्यकाणां प्रति क्विंटल मितं परिवर्धनं विहितम्। एतदतिरिच्य मंत्रिमण्डलेन हरितोर्जा वीथि इत्यस्य तृतीय चरणं अथ ऐतिहासिकी पीएम धारा योजना च समनुमोदिता, येन राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च 35,000 गीगावाट परिमितस्य नवीकरणीयोर्जा उत्पादनस्य सुगम संचारणं भविष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य तटीय कर्णाटक केरलम माहे आंतरिक कर्णाटक तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल चेत्येषु प्रदेशेषु विद्युत गर्जनेन सह प्रबल वृष्टिः पूर्वानुमानिता। ऋतु विभागेन अद्य नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा प्रदेशेष्वपि समानैव ऋतु परिस्थितयः प्रवर्तिष्यन्ते इति संभावना अभिव्यक्ता। विभागेन उक्तं यत् रायलसीमा आंतरिक कर्णाटक उड़ीसा अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय प्रदेशेष्वपि विद्युत गर्जनेन सह विद्युत्पातस्य च संभावना अस्ति। जापान देशे प्रवर्तमानासु एशिया क्रीडासु भारताय ह्यः अद्यावधि सर्वाधिकः सफल दिवसः अभवत्। भारतेन 4 सुवर्णपदकानि प्राप्तानि। अनेन भारतस्य पदक संख्या आहत्य 6 अभवत्, यस्मिन् 10 सुवर्णपदकानि 21 रजतपदकानि तथा 39 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। महिलानां हॉकी क्रीडायां भारतं ह्यः दक्षिण कोरिया दलं 2-0 इत्यंकः पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। तत्रैव स्क्वॉश क्रीडायां भारतस्य पुरुष दलं महिला दलं च उपांत्य चक्रे प्रविष्टे, येन भारताय 2 अन्ये पदके सुनिश्चिते। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ गुवाहाटी नगरस्य बरसापारा क्रीडांगणे आयोजितायाः त्रिस्पर्धायाः एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः द्वितीयायां स्पर्धायां भारतेन वेस्ट इंडीज दलं 8-0 पराजितम् इति वार्ताः।
0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
3: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने इसे मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए एमएसपी में 390 रूपये प्रति क्विंटल, जौ के लिए 136 रूपये प्रति क्विंटल, चने के लिए 83 रूपये प्रति क्विंटल

0: और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिन्दी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 13 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है, जिन पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यय हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बोर्ड ने वन जोन वन ऑपरेटर योजना के तहत 10 साल के लिए करीब 17,969 करोड़ रुपए की सीवर रखरखाव योजना को मंजूरी दी। हर जोन में एक ऑपरेटर सीवर की देखरेख और सफाई करेगा। लोगों की शिकायतों का भी समाधान किया जाएगा। सीवर की जांच और सफाई के लिए मशीनों और रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। सीवर की निगरानी ऑनलाइन भी की जाएगी। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही दुबई की फ्लाइट में के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में मदद की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल कार्ज ने इस घटना को एक गंभीर घटना और संदिग्ध आतंकवादी हमला बताया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटका, केरलम, माहे कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों और पुदुचेरी में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of the Union Public Service Commission UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. He will also address the gathering on the occasion. A report.
2: The program will mark the culmination of year-long celebrations that commenced on 1st October last year, commemorating 100 years since the establishment of the Union Public Service Commission in 1926. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi will release a UPSC centenary commemorative coin, a commemorative stamp, and a book titled 100 Landmark Judgments Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India. The program will witness participation of stakeholders from across the country, including chairmen and members of state public service commissions, senior officers of Government of India, academicians, UPSC officials and others. This event is part of the two-day program being held by UPSC. Yesterday, on the first day, Shatabdi Samaroh Manthan was held at Bharat Mandapam. Eminent speakers addressed the event and it was followed by panel discussions on various themes. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
1: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support price, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for sunflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal. The minister said the CCEA has also approved the implementation of the Intelligent Traffic Management System, ITMS, project by the Delhi Police at an estimated cost of over 1,789 crore rupees, inclusive of taxes. Mr. Vaishnav said the Union Cabinet also approved the Green Energy Corridor, GEC, Phase 3 scheme. Defence Minister Rajnath Singh will attend the 279th Annual Day of the Defence Accounts Department, DAD, in New Delhi today. On the occasion, the Defence Minister is scheduled to launch various IT initiatives of DAD. These include the integration of the Indian Army Financial Information System and Department's Saksham platform, the revamped National Compilation System for the Ministry of Defence, and the Payment Routing and Integrated System Management platform for introducing Treasury single account payments in the Ministry of Defence. New Delhi will host a textile conclave today to discuss emerging technologies in the textile sector. Addressing a press conference in New Delhi, National General Secretary of Laghu Udyog Bharati, Om Prakash Gupta, informed the conclave will bring together 400 micro and small industries associated with the textile sector from across the country. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal had a meeting with Poland's Finance and Economy Minister Andrzej Zomanski on the sidelines of the G20 Trade Ministers' meeting. In a social media post, Mr. Goyal said that they discussed new avenues to further strengthen trade and investment ties. Both the ministers also discussed that how the India-EU FTA can create new opportunities for businesses and deepen economic cooperation between India and Poland. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over coastal Karnataka, Kerala, Mahi, interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The IMD predicted similar conditions in Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. In men's cricket, India crushed the West Indies by 8 wickets in the second ODI of the three-match series at Barsapada Cricket Stadium in Guwahati last night, taking an unassailable 2-0 lead. Put into bat, West Indies posted their highest-ever ODI total of 405 for 7. India comfortably chased down the target in 43.3 overs, losing only 2 wickets. And that is the end of this news bulletin.

सुबह सुबह आपको एक पैगाम देना है, आपको सुबह का पहला सलाम देना है। गुजरे सारा दिन आपका खुशियों में, आपकी सुबह को एक खूबसूरत सा नाम देना है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मेरे यानी सुरती के साथ। और वक्त हो गया है आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम का, जिसका नाम है गोल्ड सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन।

0: सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
3: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मेरी यानी सुरिति के साथ, और आपका ये है मनपसंद प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात। पिछले दिनों बारिश और मौसम में बदलाव की वजह से सर्दी, जुकाम, बुखार और संक्रमण जैसी परेशानियां बढ़ गई हैं और इसीलिए इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि इस टाइम पर हम साफ पानी, सुरक्षित भोजन, हाथों की सफाई और मच्छरों से बचाव जरूर करें। लेकिन हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, कुछ छोटे मोटे घरेलू उपाय यदि हम करते हैं तो हम सर्दी जुकाम से बच सकते हैं। और ये कौन से छोटे मोटे घरेलू उपाय हैं? बेसिकली ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बेस्ट है। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ हर्ब्स की या इम्यूनिटी बूस्टर मसालों की, जैसे कि हल्दी, काली मिर्च, पिपली, तो ये अगर हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो काफी हद तक रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही साथ आप अपनी डाइट में अदरक को शामिल कर सकते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है और साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने में काम आती है। आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश भी खा सकते हैं जो कि बदलते मौसम में आपको सर्दी जुकाम से बचाएगा। और साथ ही विटामिन सी से भरपूर आंवला भी खा सकते हैं जो कि आपकी हेल्थ को बेनिफिट देगा। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात क्या है, बारिश के दौरान जमा पानी और साफ सफाई में यदि गड़बड़ी की तो भाई मच्छर जो हैं और मच्छरों से होने वाले संक्रमण से बचना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं रोजमर्रा

0: की जिंदगी में तो हमें काफी हद तक आराम आ जाता है। इसके अलावा यदि आपके गले में दर्द है, खराश है, तो गुनगुने नमक वाले पानी से गरारे कीजिए, इससे गले को राहत होगी। नाक बंद होने पर आप नेजल ड्रॉप्स का यूज कर सकते हैं, इससे भी फायदा होगा और साथ ही साथ भाप लेने से भी आराम मिलता है। और हाँ भाई हाँ, सर्दी जुकाम के दौरान धूल धुआं सिगरेट से दूर रहिए, क्योंकि इससे गले की जलन बढ़ सकती है और आपकी मुसीबत भी बढ़ सकती है। तो हमें तो भाई इन सारी मुसीबतों से बढ़ना है और खुद को हमेशा हेल्दी रखना है और इस तरह के संक्रमण से प्रोटेक्ट करके रखना है, है ना। तो छोटे छोटे उपाय करते रहिए और खुद को बचाते रहिए।
1: कभी हमने नहीं

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था

0: अच्छा कौन है।
1: वैसे भी अपने से अच्छा किसी और को समझना भी नहीं चाहिए, खुद को अच्छा समझेंगे तो और बेहतर बनते जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मौसम की कि आखिरकार आज का मौसम कैसा

0: रहने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए आज का मौसम बढ़िया रहने वाला है। आज जो है खिली खिली धूप रहेगी और खिली खिली धूप के साथ साथ आपको आनंद लेने का मौका मिलेगा अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस खिली धूप में आखिरकार आनंद किसका लेंगे भाई? बारिश नहीं है, ठंडक नहीं है, खिली खिली धूप है, तो डेफिनेटली धूप का ही तो आनंद लेंगे ना। ऐसे मौसम चाहे जैसा भी हो, गाने बेहतरीन बजते हैं FM गोल्ड पर, है ना।
1: झुमका गी

क्या बात है, पुराने गाने हमेशा से सुपर डुपर हिट, बेहतरीन और दिल को सुकून पहुंचाने वाले होते थे, या फिर ये कहा जाए दिल को झुमाने वाले होते थे। और ऐसे एक और बहुत ही प्यारा सा गाना मुझे याद आ रहा है, तो चलिए चलते चलते एक और बहुत ही प्यारा सा गाना हो जाए एफएम गोल्ड पर गोल्ड सुप्रभात में।

0: गोल्ड सुप्रभात में फिलहाल बस इतना ही। अब वक्त हो गया है समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज सवेरे का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज सवेरे। अब
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज 1 अक्टूबर है और अगर आप कैलेंडर पर नजर डालें तो साल का लगभग 3/4 हिस्सा हमारे पीछे छूट चुका है। लेकिन यहीं रुककर सोचने के बजाय जरा इसे दूसरी नजर से देखिए। अभी भी हमारे पास पूरे 3 महीने बचे हैं, यानी 90 दिन, यानी 2000 से भी ज्यादा घंटे। इतने वक्त में तो आदतें बदली जा सकती हैं, रिश्ते संवारे जा सकते हैं, अधूरे सपने को नई उड़ान दी जा सकती है। अक्सर हम जनवरी में बड़े संकल्प लेते हैं और फिर साल के आखिरी महीने में आकर खुद को ये कहकर संतोष कर लेते हैं कि अब तो साल ही खत्म होने वाला है, अगली बार देखेंगे। लेकिन सच ये है कि हर नया दिन खुद में एक नई शुरुआत है। तो श्रोताओं, इसी उम्मीद, जोश और संकल्प के साथ आज सवेरे कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। हेलो सरबजीत।
1: हेलो वैष्णवी। एंड वैष्णवी, एज यू राइटली सेड, वी स्टिल हैव गुड सॉलिड 3 months टू बिल्ड ऑन आर रिलेशनशिप्स, टू वर्क ऑन एवरीथिंग दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू डू, एंड ऑफ कोर्स ऑल्सो एंजॉय आर लवली कप्स ऑफ कॉफी। एंड आर लिसनर्स वुड श्योरली अप्रिशिएट दिस इन ड्यू कोर्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट कॉफी एट द ऑनसेट ऑफ द प्रोग्राम। Meanwhile, listeners, welcome once again to this Aaj Savere program. And in this edition, we will be bringing you the latest in national and international news, Metro City updates. And of course, towards the end of the program, Vaishnavi and myself will together flip the pages of history to make what makes 1st of October so memorable. So Vaishnavi, let's begin the program with the news headlines.
0: बिल्कुल, आज की प्रमुख खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। वे इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी अधिकारी और देशभर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
2: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing the media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnaw said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal. The minister said the CCEA has also approved the implementation of the Intelligent Traffic Management System ITMS project by the Delhi Police at an estimated cost of over 1,789 crore rupees, inclusive of taxes. Mr. Vaishnaw said the Union Cabinet also approved the Green Energy Corridor GEC Phase 3 scheme. It will strengthen India's intrastate transmission system to enable the evacuation of up to 135 gigawatts of renewable energy across states and union territories.
0: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत के खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि तकनीकी उन्नति, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के संदर्भ में अपतटीय खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है।
1: India's embassy in Riyadh and its consulate general in Jeddah said they are closely monitoring the health of Captain Smith Machar, the Indian pilot of Fly Dubai flight FZ1073. He was injured while helping avert a major in-flight crisis that forced the aircraft to divert to Tabuk in Saudi Arabia. In a statement on a social media post, the Indian embassy said Captain Machar is currently admitted to a hospital in Tabuk and receiving medical treatment.
0: और अब बात खेलों की. भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए तीन मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया. इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली. भारत ने कप्तान शुभमन गिल की नाबाद 223 रन और रोहित शर्मा की शतकीय पारी की बदौलत 44वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. श्रोताओं, अब अपने सफर का रुख देश के अलग अलग शहरों की ओर करते हैं, जहां आज की सुबह अपने साथ कई अहम गतिविधियां लेकर आई हैं. शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से. दिल्ली में इस वर्ष सितंबर महीने का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI पिछले 5 वर्षों में इसी अवधि की तुलना में सबसे कम रहा. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार सितंबर 2026 में दिल्ली का औसत AQI 102 रहा. ये 2025 और 2024 में 105, 2023 में 108 और 2022 में 104 पर था. मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से सितंबर के दौरान दिल्ली में 200 से कम दैनिक औसत AQI वाले दिनों की संख्या भी पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक रही. AQI का 200 से कम होना मध्यम श्रेणी में आता है. सरबजीत, ऐसे में दिल्ली में आमतौर पर हम देखते ही हैं कि प्रदूषण रहता है
1: जी,
0: और ये खबर दिल्ली वासियों के लिए राहत

0: He stated that Tamil Nadu has a rapidly aging population and the number of people with dementia is projected to double to 10 lakh. Dementia is an umbrella term for a decline in mental ability. State Health Minister K.G. Anurag said the government would work towards a coordinated state plan. The MOU between the State Health Department and DEMCON reflects a shared commitment to strengthening dementia care. The state plan will look at standardizing screening assessments, referrals and treatment, as well as making diagnosis, systematic referrals and follow-ups part of the existing primary healthcare infrastructure. In an ongoing screening program conducted since February of this year by the DIA in collaboration with the state government, among 2,500 elderly people in Coimbatore, Erode and Chengalpet, it was found that 9% had cognitive impairment. Among those screened, 30% reported neurological problems such as slowness, tremors, falls or limb weaknesses, while 28% experienced sleep disturbances. About 27% reported feeling sad, irritable or disinterested in usual activities, and 18% had trouble with memory, wayfinding or planning. Vaishnavi, since we are talking about dementia, I believe that spending time with the elderly citizens of the country and in your own family, I think goes a long way in saving people from this kind of a malaise. What do you have to say about it?
1: जी बिल्कुल. श्रोताओं, वैसे हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी है. इसके बारे में हालांकि हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन सरब जी, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही है. आजकल के समय में मुझे ऐसा लगता है कि बुजुर्गों को सिर्फ आपका समय चाहिए, और स्पेशली जैसे ऐसे अगर डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम अगर है तो ज़रूर उनके साथ थोड़ा समय बिताइए. और शायद कभी कभी वो चिड़चिड़े हो जाते होंगे, आपका भी मूड खराब हो, लेकिन थोड़ा समय, थोड़ा पेशेंस उनके साथ रखिए और सब कुछ बहुत अच्छा होगा जल्दी.
0: Absolutely. We have another update from Chennai. A delegation from the National Council for Innovation and Entrepreneurship, NCIE, met the Governor of Tamil Nadu, Rajendra Vishwanath Arlekar, yesterday to present its roadmap for youth development, skill enhancement and institutional capacity building in alignment with the vision of Vikasit Bharat 2047. The delegation outlined NCIE's proposed implementation framework aimed at fostering innovation-led growth among students, educational institutions and aspiring entrepreneurs across the state. Key focus areas discussed included structured startup development programs, university collaborations, industry CSR partnership frameworks and mechanisms to nurture youth leadership. And what's the update that you have from Mumbai, Vaishnavi?
1: मुंबई वालों के लिए पहली खबर है, मुंबई में 5 प्रवेश बिंदुओं से आने वाले वाणिज्यिक और बाहरी वाहनों के लिए टोल दरें आज से करीब 20% बढ़ जाएंगी. नई दरें वाशी, एरोली, मुलुंड ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे, मुलुंड एलबीएस मार्ग और दहीसर टोल प्लाजा पर लागू होंगी. मिनी बस और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिए टोल 75 से बढ़कर 90 रुपये, जबकि ट्रक और बसों के लिए 150 से बढ़कर 180 रुपये होगा. भारी मोटर वाहनों के लिए दर 190 से बढ़कर 225 रुपए हो जाएगी. 3 वर्ष में टोल दरों में संशोधन के तय प्रावधान के अंतर्गत ये बढ़ोतरी की गई है. कार और अन्य हल्के मोटर वाहन टोल से मुक्त रहेंगे. और अगली खबर की ओर रुख करते हैं. मुंबई में लाल बागचा राजा गणपति उत्सव के 12 दिनों के दौरान निकले करीब 39 टन खाद्य कचरे को लैंडफिल में भेजने के बजाय बायोगैस और बिजली में बदला गया. बृहन मुंबई महानगरपालिका और लाल बागचा राजा के सहयोग से चलाए गए इस अभियान को प्रसाद टू पावर नाम दिया गया है. महानगर पालिका के बायोमिथेनेशन संयंत्रों में कचरे से करीब 3,645 घन मीटर बायोगैस और 4,382 किलोवाट घंटे बिजली पैदा हुई. सरबजीत, कुल मिलाकर ये पहल कचरे के बेहतर इस्तेमाल के साथ साथ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय कदम है.
0: एब्सोल्युटली. एंड लेट्स मूव ऑन टू द अपडेट फ्रॉम बेंगलुरु. द टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 4.0 नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका यस्टरडे एनविसेजेस a financial outlay of 4,000 crore rupees, targeting an investment of 20,000 crore rupees that could create 5 lakh new jobs. It has announced incentives for setting up silk yarn production, reeling and spinning facilities at the Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel or PM Mitra Park in Kalaburagi in North Karnataka. To support these policy initiatives, the government

0: has also identified 34 taluks where special attention will be given to setting up new textile and apparel units. These units will be entitled to additional incentives and concessions over and above the general benefits available under the policy. Karnataka Tourism Minister K.G. George has issued orders to expedite development works at the world-famous Jog Falls, where the Sharavati River plunges from a height of 253 meters. Chairing a departmental review meeting yesterday in Bengaluru, the minister stated that water will be pumped back to the upper reaches of the falls to benefit tourists beyond the monsoon season. The minister noted that Jog Falls is the state's most iconic tourist attraction and its potential should not remain confined to the monsoon season. He informed officials that the primary objective is to develop Jog Falls into a destination that attracts visitors throughout the year. To achieve this, he directed the Jog Management Authority and Jungle Lodges and Resorts to work in close coordination to ensure that the ongoing development works are completed within their stipulated timelines. Indeed, Vaishnavi, this kind of step by the authorities will definitely increase the footfall at these iconic tourist spots.
1: जी बिल्कुल. और अगली खबर के और कोलकाता की तरफ चलते हैं. पश्चिम बंगाल में नए निवेश और परियोजनाओं के विस्तार को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की. बैठक में 6 क्षेत्रों में संभावित निवेश पर चर्चा हुई. इनमें डेटा सेंटर और AI क्लाउड, अंतर्राष्ट्रीय केबल लैंडिंग स्टेशन, कोयला गैसीकरण और फूड पार्क सहित सड़क बुनियादी ढांचा और मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल शामिल है.
0: And moving to the news from Hyderabad, the chairman and managing director of Telangana State Southern Power Distribution Company Limited, Jitesh V. Patil, said that uniform service line charges for low tension and high tension electricity connections will give consumers clarity on costs in advance. Mr. Patil was speaking at a media conference held at the head office to create awareness about this system introduced by the Telangana Electricity Regulatory Commission. He said that charges are now fixed based on the load. Earlier, estimated costs differed by 30-40% because of distance and transformer capacity. This difference has now ended and the checking and approval of applications will be faster. Mr. Patil explained that the system applies only to connections that get supply through a common feeder and are within 1 kilometer of route length from the electrified network. Beyond that, connections will be sanctioned under the normal estimate system. Once the charge is paid, the company will take care of network expansion and feeder arrangements. Under low tension, load-based charges are in force for all categories including domestic, commercial, industrial, agricultural and EV charging.
1: और अब जानते हैं महानगरों में मौसम कैसा रहने वाला है. शुरुआत दिल्ली से ही करते हैं. दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मुंबई में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में भी आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. यहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.
0: But Vaishnavi, whatever may be the figures, but in Delhi right now, the mornings are beautifully pleasant. So indeed, you can enjoy your cup of coffee in the morning. Meanwhile, Chennai is likely to see generally cloudy sky with light rain. The temperatures are expected to range between minimum 29 degrees, maximum 36 degrees Celsius. Bengaluru will have generally cloudy sky with a few spells of rain or thunder showers. Minimum temperature around 20 degrees and maximum may go up to 31 degrees Celsius. Hyderabad is also likely to have partly cloudy sky with possibility of development of thunder lightning. Temperatures are expected to range from 23 degrees to a maximum of 34 degrees Celsius.
1: और अब बात करते हैं आज के दिन की विशेषता के बारे में। सरब जी, जैसा हम बात कर ही रहे थे कि आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है और श्रोताओं, इसका उद्देश्य उम्रदराज लोगों के अधिकारों, सम्मान, स्वास्थ्य और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और भारत की बात करें तो भारत में बुजुर्ग सिर्फ परिवार के वरिष्ठ सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि वे

0: अनुभव, परंपरा और जीवन की सीख का एक बड़ा स्रोत है। इसलिए आज सिर्फ उनके लिए एक दिन मनाने का नहीं है, बल्कि उनके साथ अपने रिश्ते को थोड़ा और मजबूत करने का है।
1: Of course, so when we go back from our busy schedule of work life, let's take out time today and spend some time with the senior citizens in our family.
0: जी, और श्रोताओ, आज अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस भी है।
1: And that's the reason why I've been reminding listeners to have their cup of coffee.
0: बिल्कुल, आज का ये दिन ये दिन दुनिया भर में कॉफी की विविधता, उसके स्वाद और उससे जुड़े करोड़ों लोगों के योगदान को याद करने का अवसर है। भारत में भी कॉफी की अपनी एक खास पहचान है। दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर कॉफी की खेती होती है। तो अगली बार जब कॉफी का कप आपके हाथ में हो, तो एक पल के लिए उस किसान के लिए बारे में भी सोचिएगा जरूर, जिसने कॉफी के पौधे की देखभाल की, और उन तमाम हाथों के बारे में जिनकी मेहनत से आपकी सुबह का ये प्याला तैयार हुआ था।
1: जी बिल्कुल, एंड इज देयर एनी अदर डे दैट वी आर ऑब्जर्विंग टुडे?
0: जी, आज अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस भी है, और श्रोताओं, इसका उद्देश्य शाकाहारी भोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पौधे पर आधारित खाद्य पदार्थों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण से जुड़े पहलुओं को समझने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। और हम आपको बता दें कि भारत में बड़ी संख्या में लोग शाकाहारी भोजन को अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली का हिस्सा मानते हैं। सही तरीके से अपनाया गया शाकाहारी आहार शरीर को फाइबर, विटामिन, खनिज और कई जरूरी पोषक तत्व दे सकता है।
1: सो इंडीड, अ कॉल फॉर गोइंग बैक टू नेचर एंड कंज्यूमिंग व्हाट नेचर गिव्स अस सो नेचुरली।
0: बिल्कुल, और अब पलटते हैं इतिहास के वो पन्ने जिन पर आज की तारीख दर्ज है। शुरुआत करते हैं 1854 में। आज ही के दिन भारत में डाक व्यवस्था के इतिहास का एक अहम अध्याय शुरू हुआ। इसी दिन देश भर में मान्य पहला आधिकारिक डाक टिकट बिक्री के लिए जारी किया गया, जिस पर महारानी विक्टोरिया की तस्वीर छिपी थी। इससे पहले 1852 में सिंध क्षेत्र में सिंध डाक नाम से एक स्थानीय टिकट चलता था, लेकिन 1854 का यह टिकट पूरे देश में एक समान डाक व्यवस्था लागू करने वाला पहला कदम था।
1: 1890 ऑन दिस डे योसेमाइट नेशनल पार्क वाज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड इन कैलिफोर्निया, यूएस, एंड 1920 ऑन दिस डे साइंटिफिक अमेरिकन रिपोर्ट्स दैट म्यूजिक विल सून बी ट्रांसमिटेड टू होम्स वाया रेडियो सिग्नलिंग द बिगिनिंग ऑफ रेडियो बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। 1939 फर्स्ट अक्टूबर ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी मेड इट्स फर्स्ट ब्रॉडकास्ट फॉर फॉरेन लिसनर्स, अ पश्तो सर्विस स्टार्टेड ऑन दिस डे इटसेल्फ।
0: और 1953 में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके आंध्र राज्य का गठन किया गया था।
1: 1958 ऑन दिस डे द नासा बिगैन इट्स ऑपरेशंस मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन।
0: और 1967 में भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई।
1: 1958 फर्स्ट अक्टूबर अमेरिकन एक्सप्रेस लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट चार्ज कार्ड इन द यूएस एंड कनाडा। दिस मूव हेल्प्ड शेप द फ्यूचर ऑफ क्रेडिट कार्ड यूज वर्ल्ड वाइड।
0: और 1971 में पहला ब्रेन स्कैन जिसमें एक्सरे कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी या सीएटी स्कैन का इस्तेमाल किया गया था, ये लंदन के विंबलडन में किया गया था।
1: 1st October 1978, the minimum legal age for marriage for women was raised from 14 to 18 years and for men from 18 to 21 years. 1982, on this day, the first compact disc CD album was released in Japan.
0: और 2002 में आज ही के दिन एशियाड खेलों में स्नूकर प्रतिस्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। और श्रोताओं, अब बात उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को याद करने का है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। शुरुआत करते हैं चंद्र सिंह गढ़वाली से। आज चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि है। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। वे गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक थे। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चल रहा था। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश मिलने पर चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपने सैनिकों के साथ गोली चलाने से इनकार कर दिया। इसके लिए उन्हें कोर्ट मार्शल कर दंडित किया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
1: एंड लिसनर्स, व्हेन वी थिंक ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, सर्टन नेम्स इमीडिएटली कम टू माइंड, बट द जर्नी टुवर्ड्स फ्रीडम वाज आल्सो शेप्ड बाय मेनी रिमार्केबल इंडियंस हुज कंट्रीब्यूशंस मे नॉट ऑलवेज फाइंड अ प्लेस इन पॉपुलर नैरेटिव्स। वन सच पर्सनैलिटी वॉज एस सुब्रमण्य अय्यर, अ डिस्टिंग्विश्ड

0: lawyer, jurist Subramania Iyer rose to become the first Indian Chief Justice of the Madras High Court. But his life did not end with the courtroom. As India's political consensus was growing, Subramania Iyer too became increasingly involved in the national movement. His association with Annie Besant and the Home Rule movement reflected Subramania Iyer's growing commitment to the idea of self-government for India. Today, we pay tributes to S. Subramania Iyer on his birth anniversary.
1: भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसी महिला भी थी जिनका जन्म भारत में नहीं बल्कि लंदन में हुआ था, लेकिन उन्होंने भारत को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। ये थी एनी बेसेंट, जिनका जन्म आज ही के दिन 1847 को हुआ। वे समाज सुधारक, लेखिका, शिक्षाविद और थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रमुख हस्तियों में थी। उन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: यस वैष्णवी, ऑफ कोर्स, एंड सिंस वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू द ग्रेट एनी बेसेंट, आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट एनी बेसेंट बिकेम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द 1917 कलकत्ता सेशन, एंड एनी बेसेंट लॉन्च्ड एंड एडिटेड newspapers like New India and Commonweal to shape political consensus and advocate for freedom. And you've already mentioned, of course, that Annie Besant had a role to play in the foundation laying of the Central Hindu College in Banaras.
1: जी. और आगे बढ़ते हैं। उर्दू शायरी की दुनिया से हिंदी सिनेमा के गीतों तक का सफर तय करने वाले मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म आज ही के दिन 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। मजरूह ने लगभग 6 दशकों के अपने लंबे फिल्मी सफर में 2000 से अधिक गीत लिखे और कई पीढ़ियों के संगीत प्रेमियों के दिल में जगह बनाई। शाहजहां, अंदाज, आराधना, तीसरी मंजिल, यादों की बारात और कयामत से कयामत तक जैसी फिल्मों के गीत उनके लंबे और विविध रचनात्मक सफर का हिस्सा रहे। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए उन्हें 1965 में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार भी मिला था। और 1993 में वे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले गीतकार बने। इसके अलावा कई अन्य पुरस्कार भी उन्हें मिले थे, लेकिन आपको अब सुनाते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा एक खूबसूरत गीत, रुक जाना नहीं।

co-starring with Savitri, Sivaji Ganesan acted in this film Pasamalar, and his performance as a deeply affectionate, self-sacrificing brother shall be always remembered for times to come. बिहार की मिट्टी, लोकगीतों की मिठास और छठ की आस्था, इन तीनों का जिक्र हो और शारदा सिन्हा की आवाज याद ना आए, ऐसा शायद ही हो सकता है। बिहार के सुपौल जिले में जन्मी शारदा सिन्हा को प्यार से बिहार कोकिला कहा गया। विवाह गीतों और सोहर से लेकर छठ गीतों तक उनकी आवाज ने लोक संगीत को घर घर पहुंचाया। उन्हें पद्मश्री संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं वर्ष 2025 में उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण प्रदान किया गया। वैसे तो उनके कई छठ गीत आज भी पर्व की पहचान बन

के हैं, उनकी आवाज में छट सिर्फ एक गीत नहीं लगता, उसमें घर लौटने की खुशबू, घाट की रौनक, परिवार की याद और आस्था के अनुभव सुनाई देती है। तो आइए आपको सुनाते हैं उनका एक खूबसूरत छट गीत।

0: फिल्मों में भी शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज दी थी और हम आपके लिए ही एक उनका खूबसूरत गीत लेकर आए हैं।
1: ये तोहरे सजनिया अग पगली है जाओ।
2: And of course, Vaishnavi, time now to pay tribute to the great music director and singer Sachin Dev S.D. Barman.
0: बिल्कुल, त्रिपुरा के राज परिवार से आने वाले बर्मन ने बंगाली लोक संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहरी समझ को अपनी विशिष्ट संगीत शैली का आधार बनाया। और आगे बढ़ने से पहले आपको उनका एक गीत सुनाते हैं।

0: Listeners, we hope you are enjoying these beautiful numbers, but of course, as the clock is ticking fast, time to wind up.
1: बिल्कुल, और आज सवेरे में श्रोताओं बस इतना ही. उम्मीद है इस मुलाकात में आपने आपके दिन में कुछ नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा जरूर जोड़ गई होगी.
0: Listeners, thank you for tuning in. Have a superb day. Namaskar.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
1: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिन्दी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
2: आयुष्मान भारत पीएम जय,
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
0: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और PB बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और

0: उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वर्तमान में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
2: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
3: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड़ रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमुल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
4: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सन्नत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
3: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें।
1: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 2400 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्य ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज की अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसे आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to participate in centenary celebrations of UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Cabinet hikes minimum support prices for Rabi crops for 2027-28 marketing season. Government to launch auction of offshore mineral blocks today to unlock India's offshore mineral potential. Supreme Court rules out total ban on firecrackers ahead of Diwali. Favors balanced approach. Saudi authorities arrest Omani co-pilot for stabbing captain and attempting to crash fly Dubai flight traveling from Dubai to Tel Aviv. Prime Minister Modi describes Indian pilot Smith Machar a true hero for saving 174 lives. And in men's cricket, India beat the West Indies by 8 wickets in the second ODI in Guwahati to take an unassailable 2-0 lead. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of the Union Public Service Commission UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. A report.
8: The program will mark the culmination of year-long celebrations that commenced on 1st October last year, commemorating 100 years since the establishment of the Union Public Service Commission in 1926. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi will release a UPSC centenary commemorative coin, a commemorative stamp, and a book titled 100 Landmark Judgments Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India. The program will witness participation of stakeholders from across the country, including chairmen and members of state public service commissions, senior officers of Government of India, academicians, UPSC officials and others. This event is part of the two-day program being held by UPSC. Yesterday, on the first day, Shatabdi Samaroh Manthan was held at Bharat Mandapam. Eminent speakers addressed the event and it was followed by panel discussions on various themes. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
7: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated Rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में यूपीएससी की सत्साला तकरीबात में शिरकत करेंगे। मरकजी काबीना ने 2027-28 के मार्केटिंग सीजन के लिए रबी की फसलों के वास्ते कम अज कम इमदादी कीमतों में इजाफा किया है। सरकार साहिली इलाकों में मादनियाती वसाइल को बरूएकार लाने की खातिर आज साहिली इलाकों के मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी का अमल शुरू कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से कबल पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के इम्कान को रद्द कर दिया है और मुतवाजन रवैये की वकालत की है। सऊदी अरब के हुकाम ने दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाई दुबई परवाज के कैप्टन पर चाकू से हमला करने और हवाई जहाज को गिराने की कोशिश करने की बिना पर ओमान के साथी पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 174 अफराद की जान बचाने पर भारतीय पायलट स्मिथ मछार को हकीकी हीरो करार दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में गुवाहाटी में दूसरे एक रोजा मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया और 2-0 की सबकत हासिल करके सीरीज अपने नाम कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की सत्साला तकरीबात में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: ये प्रोग्राम साल भर जारी रहने वाली उन तकरीबात के अख्तिताम की अलामत होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर को 1926 में यूपीएससी के क्याम के 100 साल मुकम्मल होने की याद में शुरू हुई थी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यूपीएससी का 100 साला यादगारी सिक्का, एक यादगारी डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया उनवान से एक किताब का इजरा करेंगे। इस प्रोग्राम में मुल्क भर के स्टेक होल्डर्स शिरकत करेंगे जिनमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और अराकीन, भारतीय हुकूमत के सीनियर हुकाम, माहिरीन तालीम, यूपीएससी के हुकाम और दीगर शामिल हैं। ये तकरीब यूपीएससी की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली 2 रोजा तकरीब का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन का इनेकाद किया गया था। मुमताज मुकर्रिर

0: मदद मिली। वजीर आजम ने कहा कि कैप्टन स्मिथ मचार एक हीरो हैं और भारत को उन पर फख्र है। जनाब मोदी ने उनकी जल्द सेहत याबी, नई कुव्वत और तंदुरुस्ती की दुआ की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता आजम के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता आजम के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि जदीद तर्ज के बुनियादी ढांचे और ज्यादा मजबूत कनेक्टिविटी के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर क्यादत सरकार के नजरिए को किस तरह जम्मू कश्मीर में काबिल कदर चनाब और अंजी खड रेल पुलों के जरिए अमली शक्ल दी जा रही है।
1: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 26 जून को चिनाब और अंजीखट पुलों का इफ्तिताह करने के बाद कहा था कि ये रेलवे पुल भारत की इंजीनियरिंग सलाहियत की अलामत और जम्मू और कश्मीर में रابطे को मजबूत करने में एक संगे मेल की हैसियत रखते हैं। ये दोनों पुल उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में तामीर किए गए हैं। चिनाब रेल ब्रिज दरियाए चिनाब से 359 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है और ये दुनिया की सबसे बुलंदी पर वाक़े रेलवे का मेहराब पुल है। अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल रेलवे पुल है जो कि 96 केबल्स पर कायम है। इन पुलों से न सिर्फ जम्मू और कश्मीर तक रेल रابطہ मजबूत हुआ है बल्कि लोगों और अशिया की नकलो हमल में भी बेहतरी आई है। नीज से और इक्तिसादी सरगर्मियों को तकवियत मिली है। इन पुलों से कश्मीर से जरी, बागबानी और दस्तकारी की अशिया को तेजी से मुल्क भर की मार्केटों तक पहुंचाने में भी सहूलत पैदा हुई है। कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले एक बागबान तजम्मुल अहमद का कहना है कि इन पुलों की तामीर से रेल रابطہ मुमकिन हुआ है जिसकी वजह से सेब पैदा करने वाले किसानों के लिए अपनी पैदावार को मुल्क के दीगर हिस्सों तक पहुँचाना आसान हो गया है।
3: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सन्नत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
2: श्रीनगर से अशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: मर्दों के क्रिकेट में कल रात गुवाहाटी के बिरसापाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे एक रोजा मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस तरह भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल करके सीरीज अपने नाम कर ली है। भारत ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज से बल्लेबाजी करने को कहा और वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 405 रन बनाए जो एक रोजा क्रिकेट मैचों में उसका अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। भारत ने 43 ओवर्स और 3 गेंदों में महज 2 विकेट खोकर जीत का निशाना आसानी से हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सिर्फ 133 गेंदों पर धुआंधार 233 रन बनाए और आखिर तक आउट नहीं हुए। रोहित शर्मा ने 75 गेंदों पर 101 रन स्कोर किए जो एक रोजा मैचों में उनकी 35वीं सेंचुरी है। शुभमन गिल एक रोजा मैचों में सबसे तेज रफ्तार डबल सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने महज 117 गेंदों पर यह कारनामा अंजाम दिया। उन्हें अपनी शानदार इनिंग्स के लिए मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
4: शुक्रिया कौनन। قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اخبار پرتاب نے دبئی سے تل ابیب جانے

0: अली परवाज की सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग और पायलटों के दरमियान झगड़े की वजह सामने आने से मुतालिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की सुर्खी है, वजीर आजम मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बातचीत, तिजारत, दिफा और अहम टेक्नोलॉजी पर तबादले ख्याल। पटाखों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, मुकम्मल पाबंदी लगाना नामुमकिन, ये खबर भी अखबार में सफे अव्वल पर है।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में यूपीएससी की सरसाला तकरीबात में शिरकत करेंगे। मरकजी काबीना ने 2027-28 के मार्केटिंग सीजन के लिए रबी की फसलों के वास्ते कम अज कम इमदादी कीमतों में इजाफा किया है। सरकार साहिली इलाकों में मादनियाती वसाइल को बरुए कार लाने की खातिर आज साहिली इलाकों के मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी का अमल शुरू कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से कबल पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के इम्कान को रद्द कर दिया है और मुतवाजन रवैये की वकालत की है। सऊदी अरब के हुकाम ने दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाई दुबई परवाज के कैप्टन पर चाकू से हमला करने और हवाई जहाज को गिराने की कोशिश करने की बिना पर ओमान के साथी पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 174 अफराद की जान बचाने पर भारतीय पायलट स्मिथ मचार को हकीकी हीरो करार दिया है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो गया है म्यूजिकल दिल लगी का और म्यूजिकल दिल लगी में आपका साथ दे रही हूँ मैं सुरती। शुरुआत करते हैं एक प्यारे से गाने के साथ, फिर करेंगे ना कुछ काम की और कमाल की बातें, लेकिन पहले ये प्यारा प्यारा सा गाना आप सभी के लिए।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मेरे यानी सुरती के साथ म्यूजिकल दिल लगी में हो रही है दिल से दिल की बात। आज है पहली तारीख और पहली अक्टूबर को पूरे विश्व में क्या मनाया जाता है बहुतों को पता है लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ, विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। वाओ, इस दिन की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी। अगर बात करें इसके महत्व और उद्देश्य की तो ये दिन शाकाहारी जीवन शैली के स्वास्थ्य, पर्यावरणीय, नैतिक और मानवीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाता है। साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहूंगी कि विश्व शाकाहारी दिवस के साथ ही पूरे अक्टूबर महीने में शाकाहारी जागरूकता माह के रूप में पूरे अक्टूबर मंथ को सेलिब्रेट किया जाता है जो कि 1 नवंबर को समाप्त होता है। तो भाई शाकाहारी रहिए, हेल्दी फूड खाइए और साथ ही हेल्दी फूड के साथ साथ जिन लोगों को शाकाहार पसंद नहीं है उन्हें शाकाहार खाने की सलाह दीजिए, कोशिश कीजिए कि वो भी खाएं और अच्छा महसूस करें। आफ्टर ऑल प्लांट्स बेस्ड जो फूड होते हैं

फूड्स होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल तो होते हैं ना, ये तो आप जानते हो ना। कुल मिलाकर देखा जाए हमें हेल्दी रहना है तो क्यों नहीं हम मिलकर सेलिब्रेट करें इस खास दिन को, 1 अक्टूबर यानी कि विश्व शाकाहारी दिवस। आज ही नहीं पूरे महीने मनाना है तो आज से शुरू हो जाते हैं।

और इसी के साथ वक्त हो गया है इजाजत लेने का, इसलिए मुझे यानी सुरती को दीजिए इजाजत, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना है। वक्त हो गया है अब समाचारों का, तो सुनेंगे हिंदी में और अंग्रेजी में समाचार। सुनते रहिए अपना मन पसंद आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी होगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका विभाग की आंतरिक हिन्दी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए एमएसपी में 390 रूपए प्रति क्विंटल, जौ के लिए 136 रूपए प्रति क्विंटल, चने के लिए 83 रूपए प्रति क्विंटल और गेहूं में 25 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इससे व्यवस्थित अन्वेषण को प्रोत्साहन मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा और अपतटीय खनिज अन्वेषण तथा विकास के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। न्यायाधीश एमएम सुंदरेश और पीबी बराले की खंडपीठ

0: पीठ ने संकेत दिया कि दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं और वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया था विमान। हालांकि कर्मचारियों को सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। हालांकि भारत श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त के साथ जीत हासिल कर चुका है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of the Union Public Service Commission, UPSC, at Bharat Mandapam in New Delhi today. He will also address the gathering on the occasion. The program will mark the culmination of year-long celebrations that commenced on 1st of October last year, commemorating 100 years since the establishment of the UPSC in 1926. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi will release a UPSC centenary commemorative coin, a commemorative stamp, and a book titled 100 Landmark Judgments Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India. The program will witness participation of stakeholders from across the country, including chairmen and members of state public service commissions, senior officers of Government of India, academicians, UPSC officials and others. This event is part of the 2-day program being held by UPSC. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing the media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnaw said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal.
2: Rabi season ki MSP badhane se
3: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the 6 major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government's commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.
2: Us commitment ko dhyan mein rakhte hue ye naye MSP approve hue hain.
1: The minister said the CCEA has also approved the implementation of the Intelligent Traffic Management System project by the Delhi Police at an estimated cost of over 1,789 crore rupees, inclusive of taxes. Mr. Vaishnaw said the Union Cabinet also approved the Green Energy Corridor Phase 3 scheme. The Ministry of Mines will launch the auction of offshore mineral blocks today. The ministry said that this marks an important step towards unlocking India's offshore mineral potential and strengthening the country's long-term mineral resource security. The auction comprises 2 offshore mineral blocks in the Andaman Sea region, which will be offered for grant of composite license.

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 14वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा। व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आशीष कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: लोकतंत्र में जनसेवा का अर्थ केवल शासन करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करना भी है जो नागरिकों के जीवन को सरल बनाए, आसान बनाए, आर्थिक विकास को गति दें, न्याय सुनिश्चित हो और संस्थानों को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाया जाए। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सार्वजनिक सेवा यात्रा शुरू करने से लेकर साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने तक और उसके बाद लगातार 12 सालों तक राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी निभा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इस दौरान शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कानून और संस्थागत ढांचे में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव हुए। भारतीय न्याय संहिता, श्रम संहिताएं, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC, GST परिषद, रेरा, नीति आयोग, सहकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जन विश्वास अधिनियम, वाणिज्यिक न्यायालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जैसे कानूनों एवं संस्थानों ने देश की शासन व्यवस्था और आर्थिक ढांचे में नई भूमिकाएं निभाई हैं। और इन सब में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और नेतृत्व का अहम योगदान रहा है। तो इन कानूनों में बदलाव से क्या व्यापक असर पड़ा है, आइए सुनते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट।
2: आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के साथ आया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने आपराधिक कानूनों का स्थान लिया। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। नए प्रावधानों में अपराधों की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संगठित अपराध और आतंकवाद जैसे मामलों के लिए प्रावधान किए गए हैं और कुछ अपराधों में सामुदायिक सेवा का विकल्प भी रखा गया है। श्रम व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव हुए हैं। 29 पुराने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है। इनमें वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। ये संहिताएं नवंबर 2025 से लागू हैं। इनमें न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को एक व्यापक ढांचे में रखा गया है। कर व्यवस्था में GST एक बड़ा संस्थागत बदलाव रहा। केंद्र और राज्यों के बीच कर संबंधी फैसलों के लिए GST परिषद को साझा मंच बनाया गया। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए रेरा की व्यवस्था की गई। कारोबार और वित्तीय व्यवस्था में दिवाला समाधान के लिए IBC ने समयबद्ध प्रक्रिया उपलब्ध कराई। वहीं छोटे और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की दिशा में जन विश्वास कानून महत्वपूर्ण कदम रहा। कारोबारी विवादों में तेजी से समाधान के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों और मुकदमे से पहले मध्यस्थता की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया। नीति निर्माण में भी संस्थागत बदलाव हुआ। वर्ष 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया जो केंद्र और राज्यों को नीतिगत और तकनीकी सलाह देने के साथ सहकारी संघवाद के लिए मंच उपलब्ध कराता है। सहकारिता क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के लिए प्रशासनिक और नीतिगत ढांचे को मजबूत करना तथा उनके आधुनिकीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आयोग पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की निगरानी करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने चिकित्सा शिक्षा और नियमन के लिए नया संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराया है। इन सभी बदलावों का दायरा अलग अलग क्षेत्रों में है, लेकिन व्यापक उद्देश्य एक ही है, बदलती जरूरतों के अनुरूप कानूनों और संस्थानों को विकसित करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नागरिकों तथा कारोबार के लिए अधिक स्पष्ट और जवाबदेह व्यवस्था तैयार करना। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: इन सुधारों का उद्देश्य क्या रहा? इनसे आम नागरिक, श्रमिक, उद्यमी, निवेशक, किसान और विभिन्न सामाजिक वर्ग किस तरीके से सकारात्मक तरीके से प्रभावित हुए? क्या इन बदलावों ने भारत की संस्थागत क्षमता और कारोबारी माहौल को नया स्वरूप दिया? और क्या इनके क्रियान्वयन में अभी भी चुनौतियां बाकी हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम पेश कर रहे हैं जनसेवा से देश सेवा। और हमारे साथ मौजूद हैं दो महत्वपूर्ण मेहमान, प्रफुल्ल केतकर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका।
3: धन्यवाद।
1: और आशीष कुमार पांडे जी भी हमारे साथ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक सेवा की शुरुआत से लेकर केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल तक शासन की प्राथमिकताओं और प्रशासनिक दृष्टिकोण में क्या कुछ बहुत प्रमुख बदलाव देखने को मिले और इन बदलावों के प्रमुख आयाम क्या हैं, इस चर्चा की शुरुआत हम केतकर जी आपके साथ करना चाह रहे हैं।
3: देखिए, शासन प्रशासन जो भी होता है उसको तो लोकाभिमुख होना ही पड़ता है और उसके आधार पर नीतियां भी बनती हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जब थे तो उस समय से एक विशेष रूप से ये दिखता है, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से वो आते थे उन्होंने उसको केवल लोकाभिमुख नहीं बनाया, बल्कि जो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी उसको फेडरलाइज किया। मुझे ध्यान में है 2002 में 3 में जब पहली बार उन्होंने प्रयोग शुरू किया तो शासन आपके द्वार इस नाम से गुजरात में हर जिले में पूरा सेक्रेटरिएट जाता था, तो साल भर में यह राउंड पूरा होता था, तो यह अपने आप में एक अलग प्रयोग था। दूसरा, मैंने देखा कि सीएम के रूप में उनके कार्यालय में डैशबोर्ड, हर स्कीम का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, तो इसमें एक तरफ ग्राउंड के इनपुट्स आने का मैकेनिज्म और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के साथ उसका इंटीग्रेशन। मुझे लगता है कि जो किसी भी सुशासन के 4 स्तंभ माने जाते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा होता है अकाउंटेबिलिटी, तीसरा होता है डिलीवरी और चौथा होता है जस्टिस, इन चारों को उन्होंने जिस तरीके से इंटीग्रेट किया पूरे ही शासन प्रणाली में और एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी को जो भी डिलीवर कर रहा है उसको उसके लिए अकाउंटेबल बनाया, क्योंकि नंबर्स रोज दिख रहे हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति भी आज देख सकता है कि पिछले 10-12 साल में भारत में कितने घरों तक बिजली पहुंची या हर घर जल मिशन में कितने लोगों को एक्चुअली टैप का पानी मिला। नहीं मिला है तो भाई आपका डेटा ये कह रहा है, आप ये ग्राउंड पर एज ए मीडिया में तो देख ही सकता हूं। फिर उसके कारण क्या है कि एक नैतिक दबाव उस ग्राउंड पर डिलीवरी करने वाले पर बनता है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अप्रोच का बदलाव है। तीसरा, इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है लेकिन महत्वपूर्ण है कि इन सबको भारत की वास्तविकता के कुछ चीजें तो हमको

0: करनी पड़ती है, चाहे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हो, चाहे इंटरनेशनल मानकों पर आधारित प्रोजेक्ट हो, लेकिन उसका इंडियनाइजेशन, भारत की वास्तविकता को, भारत के सांस्कृतिक सामाजिक धरातल को ध्यान में रखते हुए, और उसमें मैं फिर नीति आयोग को देखता हूं कि जो सेंट्रलाइज प्लानिंग कमीशन था वो नीति आयोग बनना या इंसॉल्वेंसी कोड के आधार पर। तो मुझे लगता है कि भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, उसकी सांस्कृतिक रूट्स को बनाए रखते हुए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर फॉरेन स्कीम्स हो या टेक्नोलॉजी हो, उनका एक इंटीग्रेशन करते हुए जो गवर्नेंस का एक मॉडल खड़ा रहा, वो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी एज अ पर्सोना का एक बहुत बड़ा योगदान है।
1: और यही गवर्नेंस का मॉडल जो है भारत को विकसित भारत 2047 की तरफ ले जाने में काफी अहम भूमिका निभा रहा है। अगले सवाल में आपके पास आएंगे, योजना आयोग से नीति आयोग बनने की कहानी और उसके क्या फायदा हुए इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आशीष जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आशीष जी, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS ने भारतीय दंड संहिता IPC का स्थान लिया और 1 जुलाई 2024 से ये लागू भी हुई। इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लागू हुए। इन नए कानूनों में आम नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अब आपको क्या दिख रहे हैं और क्या हम अगर देखें 2 सालों में तो इनसे न्याय मिलने की प्रक्रिया और अधिक सुलभ और समयबद्ध हो सकी है?
2: न्याय प्रणाली किसी भी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अभी प्रफुल्ल साहब ने 4 अनिवार्य अंग बताए और आखिरी उसका जो अंग बताया वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बताया, क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो आपकी व्यवस्था को पूर्ण व्यवस्था नहीं कहा जा सकता है। हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तो उनका एक मोटो था, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अब इसको किस तरीके से धरातल पर इम्प्लीमेंट किया जाए और उसका खासकर जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसी के साथ एक वास्तविकता का रिकॉग्निशन भी था कि जो हमारे दंड संहिता से रिलेटेड कानून थे वो सदियों पुराने हो चुके थे, क्या आने वाला भारत उन कानूनों के आधार पर आगे चल सकता है या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न था, यक्ष प्रश्न था। इन सारी चीजों को देखते हुए ही ये नए 3 कानून लाए और जो हमारी न्यायिक प्रणाली के 3 महत्वपूर्ण अंग थे, जैसा आपने कहा IPC, CRPC एंड एविडेंस एक्ट, तीनों को चेंज किया गया। अब आपका सवाल इस विषय को टच करता है कि क्या इससे परिवर्तन क्या आया है। अब देखिए, परिवर्तनों को अगर हम डिस्कस करेंगे तो शायद हो सकता है पूरा दिन निकल जाए। मैं कुछ ऐसे परिवर्तन बताता हूं जिसकी डायरेक्ट बेयरिंग है, जिसने कि समाज की सीढ़ी पर अंतिम स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी टच किया है। अब अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो सबसे पहला आपका क्या कंसर्न होता है, पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट कैसे दिखाना है। देश की आज भी एक बहुत बड़ी जनता का वर्ग ऐसा है जिसको कि थानों में जाने में डर लगता है, पुलिस का नाम आते ही छोड़ो इसमें क्या पढ़ना है यार, जो भी हमारे साथ घटना घटित हो गई है अगर अवॉइड की जा सकती है अवॉइड की जा सकती है। लेकिन आज की डेट में जब 0 FIR जैसे प्रोविजंस लाए जा सके हैं, आज की डेट में जहां डिजिटल माध्यम से आप पुलिस के पास कंप्लेंट कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा बैरियर जो था पुलिस और जनता के बीच में और जो एक हिचक थी उसको कहीं ना कहीं पाटने का प्रयास किया गया है। क्योंकि किसी भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का सबसे पहला अंग होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कैसे होंगी, तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। अब एक बार FIR रजिस्टर हो जाती है उसके बाद बहुत सारे चरण होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट फाइल होती है, ट्रायल होता है, जजमेंट्स आता है। इन कानूनों ने इस प्रक्रिया के हर एक चरण को कहीं ना कहीं टच किया है। अगर आप देखें इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स हैं, किस तरीके से आपको साक्ष्यों को कलेक्ट करना है, कई स्तरों पर वीडियोग्राफी को मैंडेटरी किया गया है, कई जगह फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी किया गया है, और आखिरी स्तर पर अगर हम जाकर कहें तो कहीं ना कहीं कितने समय में किसी जजमेंट को डिलीवर करना है, इवन कोर्ट्स के लिए भी एक गाइडलाइन बनाई गई है, एक रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि अगर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं तो आपको इतने दिनों के भीतर अपना जजमेंट पास करना है। तो इन तीनों कानूनों के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हर एक चरण को टच करने का प्रयास किया गया है और जिसके बहुत ही प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं।
1: जब आशीष जी ये कानून लाए गए थे तब एक बात हो रही थी कि पुलिस को थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि वो पुराने सिस्टम के आदि हो चुके हैं, तो एक उनकी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू की गई, शायद वो अभी भी चल रही है। साथ ही नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस अभियोजन न्यायपालिका और फॉरेंसिक संस्थानों की क्षमता भी बढ़ानी थी। तो आज हम 2 साल बाद कहां पर खड़े हैं?
2: आपके पहले ही बिंदु से शुरू करते हैं। देखिए, इन कानूनों के पीछे उद्देश्य क्या था? जब ये कानून पुराने कानून थे उस समय देश में अंग्रेजों का शासन होता था या एक

0: सीआरपीसी थोड़ा बाद में भी आया, लेकिन जो उसकी मूल भावना थी वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल एरा से जुड़ी हुई थी। अब सरकार का उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से जो दंड पर आधारित कानून है, जो कहीं ना कहीं पनिशमेंट की बात करते हैं, उसको किसी तरीके से हम विक्टिम सेंट्रिक बना सकें, उसको किसी तरीके से रिफॉर्मेशन का एक एलिमेंट डाल सकें। अब अगर मंशा पुलिस की केवल इतनी हो कि इस व्यक्ति के ऊपर ये एलिगेशन है और थाना ही जब कोर्ट बन जाता है और वहां से ही दंड स्टार्ट हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं से वहां से निकालकर अगर कहीं रिफॉर्म करने की उस व्यक्ति को संभावना दिखाई पड़ रही है, तो कम्युनिटी सर्विस जैसे जो प्रोविजन हैं उसको भी इन कानूनों में लाया गया है। और पुलिस की मानसिकता किस तरीके से चेंज हो, इसको लेकर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ही बीपीआरडी इंस्टीट्यूशन आता है और बहुत ही नेशन वाइड प्रोग्राम इसके लिए ऑर्गेनाइज कराए गए हैं। बहुत सारे सेशंस हुए हैं और कुछ सेशंस का पार्ट बनने का मुझको भी मौका मिला है, जहां पर पुलिस ऑफिसर्स को नए कानूनों के बारे में समझाया गया है। दूसरी चीज आपने कही महत्वपूर्ण बात कि क्योंकि इन कानूनों को खासकर एविडेंस से रिलेटेड प्रोविजंस को सुदृढ़ करने के लिए फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन और इस तरीके की चीजें भी आई हैं, तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर भी सतत रूप से काम हुआ है, ये हम देख रहे हैं। और ये मेजरेबल काम है, ऐसा नहीं है कि केवल बातें हुई हैं, हम धरातल पर भी काम हुआ देख रहे हैं।
1: प्रफुल्ल जी, जो हम चर्चा कर रहे थे इन बदलावों की, तो आप तो जुड़े रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से विभिन्न कानूनों में छोटे अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को कम करने और अनुपालन को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इसका आम नागरिक, खासकर छोटे कारोबारियों और उद्यमियों पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आपका अपना अनुभव क्या कहता है?
2: देखिए, 1860 में ये सारे प्रावधान जब बने थे तो उसके पीछे सोच कॉलोनियल सोच थी। भारतीयों को दंडित करना, भारतीयों को हर चीज में फंसा के रखना, बहुत सारे कानून तो ऐसे थे, हजारों कानून जिनका उपयोग ही नहीं होता था। तो दंड देना है या न्याय देना है? दंडित करना है तो शासन की भूमिका बदल जाती है, न्याय देना है तो भूमिका बदल जाती है। तो ये केवल नाम का बदलाव नहीं है, सोच का बदलाव है। वही जनविश्वास में है। पहले यह होता था कि यदि स्पेशली टैक्सेशन रिलेटेड रूल्स में कि वो अधिकारी मान के चलता था कि इसने टैक्स चुराया तो जैसे मेरा पैसा चुराया है, तो उसके ऊपर मान ले किसी के ऊपर रेड होती है, किसी को नोटिस चली जाती है, तो वो चर्चा का विषय उसके मोहल्ले में बन जाता था। और फिर उस व्यक्ति की जो उसमें वास्तविक रूप में क्या निकलेगा नहीं निकलेगा वो बात की बात है। अब जनविश्वास के तहत क्या हुआ है कि पहली बात तो उसका इन्वेस्टिगेशन फेसलेस हो गया है। तो अधिकारी को पता नहीं है मैं किसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको पता नहीं है कि कौन अधिकारी है। तो फर्स्ट फेज में तो वो फेसलेस है। इसने क्या किया है, उसको नोटिस अभी भी जाएगी, लेकिन वो किसने भेजी है, कौन अधिकारी, इसके बारे में तो इंटरफेस इसमें जो ट्रांसपेरेंसी वाला और अकाउंटेबिलिटी वाला इश्यू है गवर्नेंस का, वो अपने आप ही एड्रेस होने लगा, क्योंकि ये मैकेनाइज हो गया। तो मान लो 500 रुपए की मेरे टैक्स कैलकुलेशन में मुझसे या मेरे सीए से कुछ गलती हो गई है तो उसका अभी भी मुझे आता है, आएगा, हजारों लोगों का आता है, लेकिन उसको इमीडिएट रिड्रेसल करने का उसमें उपाय भी दिया हुआ है, तो मैं उसको एड्रेस करूंगा तो अगले रिटर्न में मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन उसके कारण मुझे इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने हैं, या जीएसटी ने उसको और भी अलग कर दिया है क्योंकि शुरू के टेक्निकल ग्लिचेस थे, उसको मैंने भी रिपोर्ट किया बहुत बार। लेकिन क्या हुआ कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैक्सेस थे, उनका इंटीग्रेशन हो गया। तो स्टेट लेवल के सेल्स टैक्स से रिलेटेड हो या वैट से रिलेटेड टैक्सेस हो, उनका इंटीग्रेशन होने के कारण अब वही व्यापारी जो शुरू में इसके बारे में कतराता था, वो कहता है यार हर 3 महीने के बाद ये करना पड़ता है, लेकिन प्रोसेसेस बहुत आसान हो गए, हर बार हमको जो हमारा माल जा रहा है, क्योंकि हर स्टेट का टैक्सेशन का ये अलग होता था, सेल्स टैक्स के रूल्स अलग होते थे, तो उसके बारे में हमको ये नहीं करना पड़ता। दूसरी बात है कि एक बार हमने ये प्रोसेस कर दिया तो हमको हर बार किसी न किसी ऑफिसर के सामने जाकर नहीं बैठना पड़ता। तो ये इस प्रोसेस पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उस ये बिजनेस कर रहा है मतलब चोरी कर रहा है, ये जो मानसिकता हमारी सोशलिस्ट माइंडसेट ने बन गई थी, प्लानिंग कमीशन भी उसी का प्रतीक था
1: जी,
2: इसलिए वो नीति आयोग करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इस सारी प्रोसेस ने सरकार की इस सारी व्यवस्था पर, टैक्स देने पर लोगों का विश्वास बढ़ाया, बिजनेसमैन को अपने जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसको एक सिंगल विंडो, सिंगल क्लिक, सिंगल वेबसाइट, इसके आधार पर मैनेज करने की व्यवस्था आई, और इसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंकिंग बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ,
1: बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ। और साथ में जो आप बता रहे हैं कि

0: अधिकारियों का जो एक डर था, टैक्स अधिकारियों का, वो डर मन से समाप्त हुआ।
1: उसे एक शब्द प्रयोग होता था मोदी जी की गवर्नमेंट आने से पहले, मीडिया में भी हम उसको उपयोग करने लगे थे, टैक्स टेररिज्म।
0: जी,
1: तो ये 1970 से एक शब्दावली रूढ़ हो गई थी, टैक्स टेररिज्म, कि टेररिज्म की तरह डर हो गया था। तो उससे निश्चित रूप से
0: इनकम टैक्स ऑफिस से किसी के घर एक चिट्ठी पहुंच जाए, उस दिन उस घर में खाना भी नहीं होता था, लोग सही ढंग से खा नहीं पाते थे डर के, ये देखा है। लेकिन आज जीवन में सुकून आया है, खास करके मध्यम छोटे कारोबारियों के बीच में। आर्थिक सुधार, श्रम और कारोबारी माहौल भी परिवर्तित हुआ है। 4 श्रम संहिताओं के जरिए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित इंटीग्रेट करने का प्रयास किया गया। इनका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना और श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों का विस्तार करना है। इन संहिताओं से संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेषकर गिग वर्कर्स जो हैं और प्रवासी मजदूरों को काफी लाभ मिला है। इस बारे में भी आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि वो क्या हुआ है।
1: देखिए, अब जब 2025 में, क्योंकि 2016-17 के बाद ये 29 अलग अलग लेबर लॉज बने हुए थे, और ये समस्या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए भी थी, क्योंकि उनको उसका कंप्लायंस करना था। दूसरी तरफ जो उसका, जिसके लिए ये बनाए गए हैं, उसके लिए भी ये 29 अलग अलग कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपने अधिकारियों के लिए लड़ना, ये किसी भी व्यक्ति के लिए या इवन यूनियंस के लिए पॉसिबल नहीं था। अब ये जो 4 कानून आए, 4 लेबर कोड्स, जिसमें एक तो वेजेस से रिलेटेड है, एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस से जुड़ा हुआ है, एक जो है वो सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, और 4th जो है वो सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन से जुड़ा हुआ है। अब इन 4 कोड्स के आने के कारण क्या हुआ, इस पर एक लंबी चर्चा जब भारत में G20 आया था तो उस समय भी हुई थी। L20 के नाम से, Labour 20 नाम से वहां पे एक फोरम बना था, और उस फोरम ने भी इन 4 कोड्स की सराहना की कि इतना सिंप्लीफाइड और इतना वर्कर फ्रेंडली। तो हमने क्या किया था कि ये कानून बनाते हुए वर्कर्स के इंटरेस्ट के बारे में तो सोचते थे, लेकिन ये मानकर चल रहे थे कि बेसिकली इंडस्ट्री और वर्कर्स ये एक दूसरे के दुश्मन है। अब पहली बार एक कॉन्सेप्ट, उद्योग परिवार एज अ फैमिली, इंडस्ट्रियल यूनिट एज अ फैमिली, जिसमें सरकार, उद्योगपति और वहां पे काम करने वाले वर्कर्स, ये तीनों जो है एक परिवार है जो देश के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है। तो इन 4 कोड्स ने सबसे बड़ी बात जो की है, तो एक तो सिंप्लीफिकेशन किया, दूसरी तरफ कंप्लायंसेस को स्ट्रीमलाइन किया। तो इंडस्ट्री के जो भी कंप्लायंसेस थे, जो आउटडेटेड प्रोविजंस थे, वो बाहर हो गए। अब इतना ज्यादा मैकेनाइजेशन हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई, तो वो जो पुराने इंडस्ट्रियल लॉस थे उसमें से तो कुछ तो एप्लीकेबल ही नहीं थे। लेकिन इसके साथ साथ इसने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जिसमें वर्कर्स के राइट्स और वेलफेयर की प्रोटेक्ट हो, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री को भी अपने उद्योगों को बढ़ाने में सहायता मिले।
0: ये जो 4 लेबर कोड्स हैं आशीष जी, इसने भी सोच में बदलाव का काम किया है, जो आप भारतीय न्याय संहिता के संबंध में अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। आशीष कुमार पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट में आप एडवोकेट हैं, आपसे ये जानना है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC, इसने कंपनियों के दिवालियापन और ऋण समाधान की प्रक्रिया के लिए एक बिल्कुल नया ढांचा पेश किया। इस कानून ने बैंकों की जो NPAs हैं, ऋण वसूली है, निवेशकों के विश्वास और कारोबारी अनुशासन को किस हद तक प्रभावित किया है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
2: इस पूरे कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कुछ कानूनी रूप से जो बदलाव हुए हैं, उसमें से एक वकील होने के नाते मैं जिस तरीके से देखता हूँ, उसमें IBC की आपने बात करी, ये बहुत ही, जिसने व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया है, और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आप 2 चीजों से जोड़ सकते हैं। प्रफुल्ल साहब ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी, और दूसरा जो सरकार का एक मोटो रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। देखिए, 2014 के पहले हो क्या रहा था, ऐसा नहीं है कि कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जहां भी ऋण से रिलेटेड डिफॉल्ट्स होते थे, और बैंकों का उसमें बहुत सारा पैसा फंसा हुआ था, इंस्टीट्यूशंस का बहुत पैसा फंसा हुआ था, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रोथ को भी हैम्पर कर रहा था। अब उसके रिकवरी कैसे करी जाए, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल था, और उसके लिए बहुत सारे कानून थे, मल्टीपल प्रोसीडिंग्स थी, मल्टीपल फोरम्स थी। अब बैंकों को अपना पैसा पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर बहुत सारी फोरम्स पे जाना पड़ता था और वो भी सालों साल प्रोसीडिंग्स लटकी रहती थी और उसमें भी कोई निर्णय नहीं निकल पाता।

0: था, तो एक जनरल टेंडेंसी बन जाती थी कि आप लोन लीजिए, डिफॉल्ट करिए, कानूनी प्रक्रिया में चीजों को डाल दीजिए। और चूंकि उस उद्यम का, उस कंपनी का, उस व्यवसायिक प्रतिष्ठान का कंट्रोल उसके प्रमोटर के पास ही रहता था, तो अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव होता था कि मैं जाकर बाद में वन टाइम सेटलमेंट टाइप की कोई एक चीज कर लूंगा और उससे मुनाफे के साथ निकल जाऊंगा, जो कि कहीं ना कहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा था। आईबीसी के आने के साथ क्या हुआ है, देखिए एक तो बहुत मल्टीपल कैटेगरी है क्रेडिटर्स की। आज की डेट में अगर कंपनी आपसे कुछ भी पैसा लेती है, सपोज करिए आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैं बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करता हूं, आपने एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसी भी कंपनी को कुछ गुड्स सप्लाई करी हैं और कंपनी ने आपको पेमेंट नहीं किया हुआ है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस आप उनको भी आईबीसी कोड के तहत बाध्य कर सकते हैं या उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर अगर पेमेंट नहीं होता है तो एक बेसिक मैकेनिज्म बनाई गई है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की एक पूरी संस्था खड़ी करी गई है। प्रमोटर्स के हाथ से कंट्रोल निकल जाता है उस कंपनी का और उस कंपनी का कंट्रोल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास में आ जाता है। तो प्रमोटर्स के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती ये हो गई है कि अगर मैंने किसी भी ऋण का समयबद्ध तरीके से भुगतान नहीं किया तो मेरी कंपनी का कंट्रोल मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक डिटरेंस क्रिएट हो चुका है। फिर दूसरी सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इसमें यह है कि किसी भी कंपनी में अगर वो स्ट्रेस्ड कंपनी है और अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पा रही है तो पहला प्रयास ये होता है कि किसी तरीके से चीजों को रिजॉल्व कर लिया जाए। अगर कंपनी ऑफ क्रेडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद उस कंपनी के फंक्शंस प्रॉपरली चल सकते हैं और उस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है तो किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे प्रतिष्ठान को उसको बाद में बेचा जा सकता है, एसेट्स को प्रिजर्व किया जा सकता है और जो भी क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा जिस हद तक भी संभव है वहां तक लौटाया जा सके। अल्टीमेटली जो उसका डिसोल्यूशन है कंपनी का, इंसॉल्वेंसी है, वो सबसे लास्ट स्टेप के रूप में आया गया है। तो इस पूरी व्यवस्था ने कई स्तरों पर जो समस्याएं थी उसका समाधान किया है। सबसे पहला डेटरेंस, अगर आपने कोई लोन लिया है आपको समयबद्ध तरीके से चुकाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा। दूसरा, अगर कंट्रोल जाता है तो ऐसा नहीं है कंपनी की देखभाल नहीं होगी, एक प्रोफेशनल बॉडीज होगी जो कि खुद क्रेडिटर्स की है, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है उस कंपनी को चलाने में, वो पैसे की रिकवरी के लिए उस कंपनी को चलाने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज एक शेड्यूल्ड क्रेडिटर्स की है। अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो लिक्विडेशन के बाद जो एसेट्स होंगी वो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है।
1: बिल्कुल, और साथ ही अगर जीएसटी की बात करें, जीएसटी ने भी कारोबारियों का जो जीवन है वो बहुत आसान कर दिया है। और साथ ही जीएसटी परिषद जो है ये सहकारी संघवाद का एक महत्वपूर्ण संस्थागत उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक संबंधी निर्णय लेते हैं। जीएसटी ने देश के साझा बाजार, कर अनुपालन और व्यापारिक गतिविधियों को बेहद ही सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। आज कहां आप खड़ा पाते हैं जीएसटी पर, आप क्या कहना चाहेंगे?
0: अगर आज मुझको लगता है देश की अर्थव्यवस्था उन्नति कर रही है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा अहम योगदान जो जीएसटी रिजीम, न्यू जीएसटी रिजीम है, उसका रहा है। देखिए, जीएसटी रिजीम आया क्यों, जरूरत क्यों पड़ी हमको? इनडायरेक्ट टैक्सेशन के नाम पर हमने एक टैक्स टेररिज्म की बात करी थी। टैक्स टेररिज्म केवल डायरेक्ट टैक्सेस में नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी होता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब टैक्स टेररिज्म की बात होती है तो उसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो पूरी अर्थव्यवस्था पर उसके असर होते हैं। जो कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको कंसोलिडेट कर एक सेंट्रलाइज एक जीएसटी रिजीम हमने इंट्रोड्यूस किया। उसकी वजह से देखिए हुआ क्या, जो मल्टीपल टैक्सेस पे करने पड़ते थे छोटे छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेसेस तक को, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम एक हमारे पास है। अब चूंकि देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे राज्य हैं और राज्यों के पास भी चूंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस कई सारे होते थे, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीजों का मूवमेंट होता था, गुड्स या सर्विसेज का, तो जो भौगोलिक बॉर्डर्स होती थी वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बॉर्डर्स बन जाती थी। और उसके वजह से आप देखते थे हर स्टेट बॉर्डर पर ट्रकों की एक लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना पड़ रहा है। जीएसटी के आने के बाद से पूरे देश को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट के रूप में कन्वर्ट किया गया है। और इसके असर से ये हुआ है कि जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें मल्टीफोल्ड एक तरीके से इजाफा हुआ है। और इसका असर आज हमको आज की इकोनॉमी में दिखाई पड़ रहा है। आज जो अगर आप जीएसटी कलेक्शन को देखिए, जीएसटी कलेक्शन कई गुना बढ़ चुका है। और जीएसटी कलेक्शन के साथ साथ आप इसका एक अलाइड एक पार्ट इसका ये भी है, इसने कहीं ना कहीं इकोनॉमी की फॉर्मलाइजेशन की तरफ भी गए हैं हम, क्योंकि ई इनवॉइसिंग जैसे बहुत सारे प्रोविजंस जीएसटी में आए हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर हम बात करते हैं तो जो छोटे दुकानदार हैं जो पहले शायद कैश में डील करते थे, एक लार्जर स्कीम के पार्ट में देखिए तो अब चूंकि वो इनवॉइसिंग के थ्रू काम हो रहा है तो इकोनॉमी का भी फॉर्म

0: ये भी देखते हैं कि पहले कारोबारी कैश लेने में कोई हिचक नहीं रखते थे, बल्कि उनकी चेष्टा रहती थी, चाहते थे कि कैश मिल जाए। अब क्या है कि देखिए क्या सोच का बदलाव है जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं। आज छोटे से छोटा कारोबारी, बड़े से बड़ा कारोबारी कैश नहीं ले रहा है। अगर कैश आप देते भी हैं तो या तो वो बोलेगा कि नहीं जी खुले नहीं है, आप यूपीआई पेमेंट कर दीजिए या कार्ड से दे दीजिए। ये एक जो सोच का बदलाव हुआ है, ये और आगे कहां तक जाना है इस सोच को?
1: मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये 100% खत्म हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन ने तीन चीजें की। एक, सोशल इंक्लूजन। मजाक उड़ाया जा रहा था जब पहली बार भीम और यूपीआई की बात आ रही थी, आज ये चर्चा हो रही है कि 0.2 से 0.4% हो जाएगा तो कितने लोग इससे हटेंगे, और उसका असर जमीन पर नहीं हो रहा है क्योंकि अब लोगों को उसकी आदत भी पड़ गई और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता, तो जो हायर कैटेगरी वाले ट्रेड लेवल के पेमेंट्स है उसमें कुछ ना कुछ चार्जेबल करना पड़ेगा, और वो भी क्रेडिट कार्ड वगैरह बाकी लोग यूज करते तो उसके चार्जेस है ही। तो सबसे पहला जो हुआ कि गांव का सामान्य आदमी भी जो छोटी सी दुकान रेडी पटरी पर काम कर अपना ये लगा रहा है, वो भी इससे पेमेंट, तो उनका बैंकिंग में इंक्लूजन होना ये बहुत बड़ा बदलाव था
0: जी।
1: दूसरा, फास्ट एंड एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन, मतलब आप एक्चुअल 221 रुपया 39 पैसा है तो उतना ही पेमेंट आप कर सकते हो। तो जब वो ट्रेड के बड़े इसमें होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये सब लोग 99 रुपीज 299 रुपीज क्यों छापते हैं, तो वो 1 रुपया जो था वो बेसिकली वही था, वो कैश में हो ना हो लेकिन वो एडिशनल ही था, वो कभी भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता था। आज आपके पास वो ऑप्शन खुला है, तो इसके कारण ट्रांजैक्शनल ट्रांसपेरेंसी आ गई है, एग्जैक्टनेस एक्यूरेटनेस आ गया है। तीसरा, इसके कारण उसके लिए भी ये लगने लगा है कि यार फिर ये जब सब मेरा पूरे मेरे डैशबोर्ड मेरी कुंडली मेरी जन्म पत्रिका सब बनी हुई है, मैं कहीं से भी करूंगा तो वो दिखने ही वाला है, तो मैं फालतू चीजों में 2 पैसे के लिए मैं और अपने झंझट क्यों पाल लूं। तो ट्रेडर भी, और कभी भी आप देखिए ये टैक्स टेररिज्म 1970 से जब शुरू हुआ तो लोगों के टैक्स चुराने की मानसिकता बढ़ गई क्योंकि लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक जमाना था जब इमरजेंसी के समय उसके आसपास 80-90% तक सारा कुल मिलाकर टैक्स देना पड़ता था, तो जब मैं ये सारी मेहनत कर रहा हूं उसमें 80-90% सरकार को देने पड़ रहे हैं तो मैं क्यों करूं, और उस पर से भी कोटा भी है परमिट भी है, तो रिलक्टेंस खत्म हो गया। जब डिलीवरी मिलने लगती है तो लोगों की टैक्स देने की मानसिकता बदल जाती है, तो उसके कारण टैक्स ब्रैकेट भी चेंज हो गए। तो मुझे लगता है ये तीनों तरीके के बदलाव उसके कारण
0: है। और साथ ही एक चलते चलते, अब समय बहुत कम बचा है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम जिसे रेरा के नाम से हम जानते हैं, ये आने से भी घर खरीदने वालों का बड़ा फायदा हुआ है, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वरना कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं थी बिल्डर्स की।
1: नहीं, मुझे लगता है ये बिल्डर्स के लिए भी अच्छा हुआ है। कुल मिलाकर रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए रेरा आना, क्योंकि किसको क्या जमीन एलोकेट हुई है, ज्यादातर होता क्या था इसमें, क्योंकि उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है तो वो आधी प्रोजेक्ट करता था, क्रेडिटर्स के रूप में उसके ऊपर ये प्रेशर बढ़ जाता था, उसके आए हुए एडवांस के पैसे वो दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देता था। और इसमें कहीं पे भी, जिसको यूएस में 2008 में प्रसिद्ध रूप से कहा गया सब प्राइम क्राइसिस
0: जी,
1: तो सब प्राइम बेसिकली क्या
0: था? यही था,
1: तो क्रेडिट के ऊपर क्रेडिट लिया हुआ है तो उसका वो कहीं ना कहीं तो वो चेन ब्रेक होनी है, तो वो चेन ब्रेक होती थी और वो प्रोजेक्ट खटाई में पड़ जाता था। लेकिन जिसने उसमें घर बुक किया हुआ है वो सामान्य खरीदार, उसका क्या? अब उसके पास ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, तो रेरा एक ऐसी अथॉरिटी है जिसने लैंड अलॉटमेंट से लेकर फाइनल डिलीवरी तक उस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने का एक डिजिटाइज मैकेनिज्म भी बनाया है, और इसमें कहीं पे कुछ डिलीवरी में गड़बड़ी होती है तो वो जो घर खरीदने वाले हैं उनके लिए उसका एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी दिया है। 2-3 प्रोजेक्ट आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में ही, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बड़े बड़े बिल्डर्स के जो आधे अधूरे पड़े हुए थे वो दूसरे बिल्डर को हैंडओवर करके कंप्लीशन करने के ऑर्डर्स हुए हैं। ये कितनी बड़ी राहत है जो सर्वसामान्य व्यक्ति जीवन भर की पूंजी इकट्ठा करके 40-50 लाख जो भी है उसको इकट्ठा करके कोई घर बुक कर लेता है, एडवांस पहला 10-20 लाख का कर देता है और उसके बाद उसको लगता है 5 साल हो गए यार घर ही नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग जो है वो भी उसके कारण बढ़ा है,
0: और साथ ही टाइम लाइन आ जाने से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि तब तक तो हमारा घर मिल ही जाएगा। जन सेवा से देश सेवा, आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे व्यवस्था में बड़े बदलावों को लेकर, खासकर कानून और संस्थानों को लेकर। और आज की चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि किसी भी देश की प्रगति में कानूनों का आधुनिकीकरण, संस्थानों की मजबूती और प्रशासनिक

0: सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हमने शासन, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था और संस्थागत बदलावों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की अपने दो बेहद खास मेहमानों के साथ, प्रफुल्ल केतकर पॉलिटिकल एनालिस्ट और आशीष कुमार पांडे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 14वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आशीष कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

क्लासिकल दिल लगी शुरू हो गया है आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। नीतू के साथ हैं आप और आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस। बुजुर्गों के प्रति सम्मान व्यक्त करने और उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, और ऐसी ही है अटल वयो अभ्युदय योजना। भारत सरकार ने इसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया था और इसका उद्देश्य है बुजुर्गों के जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना के अंतर्गत बुजुर्गों के स्वास्थ्य, देखभाल, पोषण, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को सामुदायिक भागीदारी, देखभाल केंद्रों और वरिष्ठ नागरिक सहायता सेवाओं से भी जोड़ा जाता है ताकि वो समाज में सक्रिय और गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। हम सब की यही ख्वाहिश है ना कि हम सब एक ऐसा जीवन जिए जो कि बेहतरीन हो, गरिमापूर्ण हो, सम्मानजनक हो। तो ऐसी ही बातें हम करते रहेंगे। आज के दिन के साथ और भी बहुत कुछ जुड़ा है लेकिन गानों का सिलसिला भी चलते रहना चाहिए, है ना।

1 अक्टूबर 1926 को भारतीय सेना के भीतर एक स्थायी नर्सिंग जो सेवा है उसका गठन किया गया था। इसीलिए 1 अक्टूबर को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारतीय सशस्त्र बलों का एक अत्यंत प्रतिष्ठित और सिर्फ महिला अधिकारियों वाला कोर है, और इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि युद्ध, शांति और राष्ट्रीय आपातकाल के समय सैनिकों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल मिले। निस्वार्थ सेवा प्रदान करने वाली सैन्य नर्सों के साहस, समर्पण और बलिदान को सम्मानित किया जाए।

आज हम याद करें एक ऐसी ब्रिटिश समाजवादी थियोसोफिस्ट महिला अधिकार कार्यकर्ता को जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी नेताओं में से एक थी, एनी बेसेंट, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। 1 अक्टूबर 1847 में उनका जन्म हुआ और 1893 में वो भारत आई और फिर यहीं होकर रह गई। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई और एक और स्वतंत्रता संग्राम के महानायक को हम आज याद कर रहे हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जिन्हें पेशावर कांड के महानायक के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश भारतीय सेना की रॉयल गढ़वाल राइफल में हवलदार मेजर रहते हुए उन्होंने पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे निहत्ते पठानों पर गोली चलाने के अंग्रेजी अधिकारी के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया था और इस कदम के लिए अंग्रेजों ने उनका कोर्ट मार्शल किया और उन्हें 11 वर्ष से ज्यादा की कठोर की जेल की सजा सुनाई गई। और उनका जो देशभक्ति है, उनकी देशभक्ति एक बेमिसाल उन देशभक्ति की मिसाल थे वो, और उसको हम याद करते हैं। इसीलिए अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमें उस दौर को याद रखना भी बहुत ज़रूरी है जिस दौर में हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो आप भी इन ऐसे सेनानियों को, गुमनाम नायकों को याद रखिए और आगे बढ़ते रहिए अपनी स्वतंत्रता को कायम रखते हुए। नीतू के जाने का वक्त हो गया है, तो आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। म्यूजिकल दिल लगी यहीं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी अधिकारी और देशभर के अन्य हितधारकों की भागीदारी होगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग DAD के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग के विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकीय पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इससे व्यवस्थित अन्वेषण को प्रोत्साहन मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा और अपतटीय खनिज अन्वेषण तथा विकास के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए MSP में 390 रुपये प्रति क्विंटल, जौ के लिए 136 रुपये प्रति क्विंटल, चने के लिए 83 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। न्यायाधीश MM सुंदरेश और PB वराले की खंडपीठ ने संकेत दिया कि दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय की सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं और वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान

0: stabilized the plane. The flight was diverted and landed safely at Tabuk Regional Airport in northwestern Saudi Arabia. Prime Minister Narendra Modi, US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hailed Captain Smith Machar as a hero for fighting off a knife attack from the Omani co-pilot and saving the lives of 174 people on board. India began day 12 of the Asian Games 2026 with hopes of adding more medals to their tally today, with several key events lined up across disciplines. India bagged their first sailing medal at the 2026 Asian Games as Manu Francis and Prince Kurisinkal Nobel claimed silver in the men's skiff event, finishing just behind China. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। सऊदी अधिकारियों ने पायलट पर हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान स्मिथ मच्छार को सच्चा नायक बताया। सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। भारत के पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते तक पहुंचने के प्रयासों के तहत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि जैस्मिन ग्रीर से मुलाकात की। जापान में एशियाई खेलों में पुरुषों की स्किफ स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वर्तमान में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। प्रधानमंत्री ने उन्हें सच्चा नायक कहा और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल हुई फ्लाई दुबई फ्लाइट की घटना के दौरान कैप्टन स्मिथ मच्छार की असाधारण हिम्मत और मुश्किल समय में सूझबूझ दिखाने के लिए उनकी तारीफ की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि श्री मच्छार ने गंभीर खतरे के बावजूद कई लोगों की जान बचाई और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने ऐसी हिम्मत दिखाई जिससे कई लोगों की जान बचाई सकी। प्रवक्ता ने बताया कि कैप्टन मच्छार का इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि देश गर्व के साथ उनके और उनके परिवार के साथ खड़ा है। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि यह भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इससे व्यवस्थित अन्वेषण को प्रोत्साहन मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा और अपतटीय खनिज अन्वेषण तथा विकास के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि तकनीकी उन्नति

0: स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के संदर्भ में अपतटीय खनिज संसाधन महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि जैस्मिन ग्रीड से मुलाकात की। ये मुलाकात भारत और अमरीका द्वारा संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते तक पहुंचने के प्रयासों का हिस्सा है। अमरीका यात्रा से पहले वाणिज्य मंत्रालय ने कहा था कि श्री गोयल द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए श्री ग्रीर से चर्चा करेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात उस समय हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा के लिए टेलीफोन पर बातचीत की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिकी सैनिकों की अंतिम टुकड़ी इराक से वापस लौट रही है, जिससे ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा। मीडिया को संबोधित करते हुए श्री ट्रंप ने इस वापसी को ISIS पर निर्णायक जीत बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ इराक की भी जीत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इसके साथ इराक में दो दशकों से अधिक समय से चली आ रही अमेरिका की सैन्य भागीदारी का अंत हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: 2024 में बिडेन प्रशासन के दौरान अमेरिका और इराक के बीच सैनिकों की वापसी योजना पर बातचीत हुई थी, जिसकी अंतिम समय सीमा 30 सितंबर तय की गई थी। ट्रंप प्रशासन ने समझौते को लागू करना जारी रखा। अमेरिकी सैनिक 2003 में अमेरिका के आक्रमण के बाद शुरू हुई 8 साल की उपस्थिति के बाद पहली बार 2011 में इराक से चले गए थे। ISIS द्वारा इराक और सीरिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने और बगदाद के मार्गों को खतरा पैदा करने के बाद वे 2014 में वापस लौटे थे। हालांकि 2019 में अमेरिकी नेतृत्व वाले अभियान ने ISIS को सैन्य रूप से हरा दिया था, लेकिन समूह के पुनरुत्थान को रोकने में मदद करने के लिए अमेरिकी सेना इराक में बनी रही। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: अमेरिका के रक्षा विभाग ने फोर्ट्रेस अमेरिका नामक पहल शुरू की है। अमेरिका के रक्षा ढांचों को साइबर हमलों, तोड़फोड़ और भू राजनीतिक व्यवधानों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय बीमा योजना के रूप में शुरू किया गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि फेडरल ऑपरेशंस फॉर रेजिलियंस ट्रूप रिसोर्सेज एनर्जी सप्लाई एंड सर्वाइबिलिटी फोर्ट्रेस नामक यह पहल घरेलू सैन्य प्रतिष्ठानों को बाहरी खतरों और राष्ट्रीय आपात स्थितियों के प्रति मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई है। रूस ने कल यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड को निशाना बनाते हुए व्यापक हवाई अभियान शुरू किया। इस दौरान राजधानी कीव और कई अन्य क्षेत्रों में बिजली सुविधाओं तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले किए गए। ये हमले पिछले कई महीनों में यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर सबसे बड़ा संयुक्त हमला बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार रूस के इन हमलों में 7 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले कई दिनों तक ड्रोन हमलों में तेजी देखी गई थी, जिनमें मुख्य रूप से राजधानी कीव को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की सरकारी बिजली ग्रिड संचालन कंपनी उर्गनॉर्गो ने बताया कि कीव और आसपास के 3 क्षेत्रों में आपातकालीन बिजली कटौती लागू की गई है। इससे पहले भी रूस के हमलों से यूक्रेन की बिजली और हीटिंग व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा था। उस दौरान कम तापमान के बीच लाखों यूक्रेन वासियों को लंबे समय तक बिजली और अन्य आवश्यक सेवाओं में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। विश्व दर्पण के लिए अमीशा।
0: कुवैत में भारतीय दूतावास ने इंडिया कुवैत मीडिया कनेक्ट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कुवैत के मीडिया के साथ भारत के संबंध और बातचीत को बढ़ाना है। इस पहल का विषय है साझेदारी, विचार और संभावनाएं। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। भारत ने एशियाई खेलों में नौकायान के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता है। मनु फ्रांसिसी और प्रिंस कुरिसिंकल नोबेल ने आज पुरुषों की स्किफ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। हाल के दिनों में हुई 9 रेसों में फ्रांसिस और नोबेल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए कुल 23 अंक अर्जित किए और एक रेस जीतकर रजत पदक अपने नाम किया। पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज पाकिस्तान से होगा। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सऊदी

ये आवाज़ सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि ये गाना डेडिकेटेड किया गया एसजी बर्मन साहब को। उन्हीं की आवाज़ में, उन्हीं के संगीत से सजा ये गीत था और इसे सुनना चाहा था मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह ने, और इनके अलावा ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां और मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने। उम्मीद करते हैं आपने अपनी पसंद का गाना सुन लिया होगा। ये है दिल का मेल बॉक्स आकाशवाणी FM गोल्ड पर। मैं हूँ आपके साथ नीतू, और अगर आप भी अपनी पसंद हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो fmgoldairdelhi@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और अब बारी है अगले गाने की, जिसे सुनना चाहते हैं शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार पुडाना। सेहरा फिल्म का गीत है ये, बहुत ही खूबसूरत।

इस खूबसूरत से गाने के बाद एक और बहुत ही बढ़िया गाना आप तक पहुंच रहा है जिसे सुनना चाहा है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने। फिल्म है पेइंग गेस्ट।

0: सिद्धाना।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है दिल का मेल बॉक्स और अब ये गाना आ रहा है धरती फिल्म से। धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार की पसंद पर आप भी अपनी पसंद हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो fmgoldairdelhi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

रास्ते तो वही होते हैं और उन्हीं रास्तों में आपको कभी खूबसूरती दिखाई देती है, कभी नहीं दिखाई देती है। सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन ये ना हमारे मन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, हमारा मूड कैसा है उस मूड के हिसाब से आपको रास्ते अच्छे भी लगने लगते हैं और वही रास्ते ख़राब भी लगने लगते हैं। तो ये अपने मूड को संभालिए, बाकी सब चीज़ें ना अपने आप संभल जाएंगी। और अब जो अगला गाना आप तक पहुँच रहा है वो है अतर सिंह, राजकुमारी, अनुज, अंजलि, डॉक्टर पारुल और अद्विक की पसंद का, फिल्म है मिलन, सुनील दत्त और नूतन जिसमें हीरो हीरोइन थे उसी फिल्म का गीत है ये। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

हिंदी फिल्मों में अगर आप देखें ना तो बहुत सारे एक तो गीतों में इतना ज़्यादा बखान कर दिया जाता है कुछ चीज़ों का, लेकिन जो जन्म जन्मांतर की बातें हैं, युगों युगों की बातें हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा हैं। और ख़ास तौर पर ये जो अगले जन्म और पिछले जन्म की जो बातें हैं उन पे तो फिल्में इतनी सारी बन गई हैं। बहुत मशहूर फिल्मों की बात करें तो पहले तो मधुमती, मधुमती से जो एक सिलसिला शुरू हुआ वो कुछ ज्यादा ही बढ़ता ही चला गया और उसी बेस पर न जाने कितनी फिल्में बनी। मिलन भी ऐसी ही फिल्म थी जो पुनर्जन्म पर आधारित थी और इस फिल्म का गाना अभी आपने सुना। लेकिन अब बारी है इस प्रोग्राम के आखिरी गाने की, जो कि है बहुत ही प्यारा सा गाना। शाहजी वोडखे, नंदा हनुमान वोडखे, उत्तम जमदाड़े ने पसंद किया है इस फिल्म के गाने को। फिल्म है याराना और गाना है किशोर कुमार की आवाज में।

आज का आपका और हमारा साथ यहीं तक। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। वक्त हो गया है कि दिल का मेल बॉक्स यहीं पर समेट लिया जाए, तो नीतू को दीजिए इजाजत। सुनते रहिएगा क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई के फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनकी बहादुरी और मुश्किल समय में सूझबूझ दिखाने के हौसले ने सभी का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और तुरंत कार्रवाई से एक बड़ा खतरा टल गया और लोगों की जान बच गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार ने खतरे के समय असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। भारत को इस असाधारण नायक पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की सराहना की, जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि श्री मच्छार ने गंभीर खतरे के बावजूद सैकड़ों लोगों की जान बचाई और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार ने साबित कर दिया कि असली हीरो सबसे मुश्किल समय में ही सामने आते हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कैप्टन स्मिथ मच्छार की बहादुरी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी अधिकारी और देशभर के अन्य हितधारकों की भागीदारी होगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएडी के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग के विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकीय पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिन्दी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने सैन्य नर्सिंग सेवा के 101वें स्थापना दिवस पर उन सभी नर्सिंग कर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है जो एक सदी से भी अधिक समय से समर्पण, करुणा और सेवा की भावना के साथ बहादुर सैनिकों और उनके परिवारों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज नई दिल्ली में सफदरजंग मकबरे पर स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 में भाग लिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि स्वच्छता की शुरुआत घर से होनी चाहिए और इसका विस्तार कार्यालयों, आसपास के क्षेत्रों तथा सार्वजनिक स्थानों तक होना चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी के स्वच्छता के लिए किए गए योगदान का भी जिक्र किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान की थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। न्यायाधीश एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की खंडपीठ

0: पीठ ने संकेत दिया कि दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of the Union Public Service Commission UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. He will also address the gathering on the occasion. The program will mark the culmination of the year-long celebrations that commenced on the 1st of October last year, commemorating 100 years since the establishment of the UPSC in 1926. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi will release a UPSC centenary commemorative coin, a commemorative stamp and a book titled 100 Landmark Judgments, Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India. The Supreme Court has ruled out a complete ban on firecrackers ahead of Diwali and favoured a balanced approach. A bench of Justices M.M. Sundaresh and P.B. Varale indicated it will permit the use of certain firecrackers during Diwali but impose specified time limits, ruling out both a blanket ban and unrestricted bursting of crackers. The apex court said a complete ban could hurt the sentiments of people celebrating Diwali, while allowing firecrackers throughout the day will adversely affect the environment and vulnerable groups including children, the elderly and the sick. Union Commerce Minister Piyush Goyal met U.S. Trade Representative Jamison Greer on the sidelines of the G20 Trade Ministerial in Milwaukee as part of efforts by India and the U.S. to reach a balanced and mutually beneficial trade agreement. Ahead of his visit to the U.S., the Commerce Ministry had said that Goyal will hold discussions with Greer on advancing talks for the bilateral trade agreement. The two leaders met yesterday as Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump held a telephone conversation to review progress in bilateral cooperation across trade, defense, energy, critical technologies, and other areas of mutual interest. The Ministry of Mines will launch the auction of offshore mineral blocks today. The ministry said that this marks an important step towards unlocking India's offshore mineral potential and strengthening the country's long-term mineral resource security. The auction comprises two offshore mineral blocks in the Andaman Sea region, which will be offered for grant of composite license. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the CCEA has also approved the implementation of the Intelligent Traffic Management System project by the Delhi Police at an estimated cost of over 1,789 crore rupees, inclusive of taxes. Mr. Vaishnav said the Union Cabinet also approved the Green Energy Corridor Phase 3 scheme. India began Day 12 of the Asian Games 2026 with hopes of adding more medals to their tally today, with several key events lined up across disciplines. India bagged their first sailing medal at the 2026 Asian Games as Manu Francis and Prince Kurin Singhal Noble claimed silver in the men's skiff event, finishing just behind China. In men's hockey semi-final, India will take on arch-rivals Pakistan in a highly anticipated clash. The Indian team will be aiming for a win to secure its place in the final. Meanwhile, the Indian women's hockey team has already secured its place in the gold medal match against China. Indian athletes will also be competing across a wide range of sports including shooting, judo, track cycling, golf, canoe slalom, taekwondo, tennis, sepak takraw, rugby sevens and sport climbing. India's overall tally has reached 62, including 10 gold, 22 silver and 30 bronze. Saudi authorities have arrested an Omani co-pilot after he stabbed the captain and attempted to crash a Fly Dubai flight traveling from Dubai to Tel Aviv in Israel. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के शताब्दी समारोह में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें, यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोह का समापन होगा जो पिछले 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री यूपीएससी शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में यूपीएससी और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, भारत सरकार के विशिष्ट अधिकारी, शिक्षाविद और काफी लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस सब का विवरण देने के लिए मैं हूं शोएसियार खान, मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका।
3: नमस्कार एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल ब्रॉडकास्ट विच इज मार्किंग द सेंटिनरी ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दैट अपॉइंट्स इंडिया सिविल सर्वेंट्स। एंड नाउ श्री अजय कुमार, चेयरमैन यूपीएससी, इज एड्रेसिंग।
4: माननीय कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय कैबिनेट सचिव श्री सोमनाथन, संघ लोक सेवा आयोग के माननीय सदस्यगण, राज्य लोक सेवा आयोगों के सम्मान्य अध्यक्ष एवं सदस्यगण, संघ लोक सेवा आयोग के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष और सदस्यगण, वर्तमान और सेवानिवृत्त सम्मान्य अधिकारीगण, सम्मान्य वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, विशिष्ट अतिथिगण और मेरे प्रिय सहयोगियों, संघ लोक सेवा आयोग की शताब्दी के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य और सम्मान की बात है। मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे संस्थान की अध्यक्षता करता हूं जो सिविल सेवाओं और सशस्त्र बलों के लिए सुयोग्य अधिकारियों का चयन करता है। यह वे अधिकारी हैं जो दशकों से राष्ट्र के निर्माण एवं सुरक्षा में लगे रहे हैं और आने वाले समय में विकसित भारत के सपने को साकार करने की जिम्मेवारी भी इनके कंधों पर रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हम केवल आयोग के 100 वर्षों की का जश्न नहीं मना रहे हैं बल्कि लोक विश्वास के 100 वर्षों का महोत्सव भी मना रहे हैं। आजादी के बाद पीढ़ियों से देश के युवा देश सेवा के सपने लेकर आयोग के द्वार पर आते रहे हैं और आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि उन्हें केवल और केवल उनकी योग्यता की कसौटी पर ही कसा जाए, कोई भेदभाव नहीं, पूरी निष्पक्षता से उनका चयन हो। आयोग पर विश्वास केवल भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, ये भारत के संविधान द्वारा आयोग को सौंपी गई समस्त जिम्मेवारियों में झलकता है, चाहे वो अधिकारियों की नियुक्ति हो, पदोन्नति हो, डेपुटेशन या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का मामला हो। आयोग ये भली भांति समझता है कि विश्वास बनने में वर्षों लग जाते हैं और उसे बनाए रखना उससे भी बड़ी साधना है। इसलिए आयोग के लिए हर कार्य केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक नैतिक दायित्व है जिसे हम प्रतिबद्धता, प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा से निभाने का प्रयास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आयोग हर साल लगभग 250 भर्ती प्रक्रियाएं आयोजित करता है। इसका अर्थ है लगभग हर वर्किंग डे पर आयोग कोई ना कोई नया परिणाम घोषित करता है। सन 2013 में हमारी परीक्षाएं केवल 45 शहरों में आयोजित होती थी, आज देश के 86 शहरों में होती हैं। आज सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों में लगभग 30% महिलाएं हैं।

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से डुप्लीकेट एप्लीकेशंस की पहचान, उम्मीदवारों द्वारा अपलोड किए गए करोड़ों दस्तावेजों का ओसीआर द्वारा रियल टाइम इवैल्यूएशन और परीक्षा केंद्रों पर लाखों उम्मीदवारों का फेस ऑथेंटिकेशन कुछ ऐसे हालिया उपाय हैं जिन्हें आयोग ने निष्पक्षता और सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए अपनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हम शताब्दी का उत्सव मना रहे हैं तो हम कृतज्ञता पूर्वक उन सभी का भी स्मरण करते हैं जिनकी साधना से इस संस्थान को यह गरिमा मिली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस शताब्दी समारोह को हम सभी के लिए और भी स्मरणीय बना दिया है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और समस्त सम्मानित अतिथियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
1: यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से विनम्र निवेदन, अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय
1: और अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे।
3: परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामय उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि आज के दिन का क्या महत्व है, क्या अहमियत है, क्या इतिहास है। आज के दिन हम एक ऐसी संस्था के 100 साल मना रहे हैं जिसका जन्म हिंदुस्तान की आजादी से पहले हुआ था। Therefore, ladies and gentlemen, this is an institution which carries the legacy of pre-independence India and the flavor of post-independence India. 100 वर्षों के इस गौरवमय यात्रा में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस विशाल देश में अनेकों अनगिनत छिपी हुई विभूतियों को तलाशा, खोजा, फिर तराशा और तराश कर इस काबिल बनाया कि वो देश की प्रशासनिक जिम्मेवारियां निभा सके। एंड देयरफॉर यूपीएससी ट्रूली ट्रूली पर्सोनिफाइज सरदार पटेल्स विजन ऑफ स्ट्रांग, पावरफुल एंड प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज, द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि 100 साल के इस लंबे सफर में पिछले 10-12 साल एक खास मकाम रखते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा लाए गए गवर्नेंस रिफॉर्म्स के चलते इन 12-13 सालों में यूपीएससी ने कई आयाम हासिल किए, कई कीर्तिमान स्थापित किए। नतीजे के तौर पर जहां यूपीएससी के द्वारा होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई, वहीं साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता में इजाफा हुआ और लोगों का भरोसा भी बढ़ा। यदि बात करें संख्या की तो यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में यूपीएससी द्वारा की गई नियुक्तियों की संख्या रही 45,431 और इसकी तुलना में एनडीए के पहले 10 वर्षों में यह संख्या बढ़ करके हो गई 50,906 और अगर हिसाब लगाया जाए 12 साल का तो यह आंकड़ा 65,000 पार कर जाता है। अनेकों रिफॉर्म्स लाए गए जैसे यूनिफाइड वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इंटीग्रेटेड विद आधार एंड डिजी लॉकर, जैसे दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सेंटर ऑफ चॉइस, जैसे प्रोविजनल आंसर की ऑन दी वेबसाइट और प्रतिभा सेतु सिविल सर्विसेज एग्जाम के वो उम्मीदवार जो आखिरी चरण में किसी कारण असफल रह गए उनके लिए विकल्पित जॉब ऑप्शंस, और अभी हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट। आज यूपीएससी एक रोल मॉडल बन चुका है देश विदेश की हर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए। आज दुनिया भर से अनेकों मुल्कों से प्रतिनिधि मंडल यहां आकर के यूपीएससी की नियुक्ति प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं। आज यूपीएससी एक बेंचमार्क है, एक यार्डस्टिक है, एक मापदंड है जिसके ऊपर

0: हर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी पूरा उतरना चाहती है। और अंत में केवल इतना कहना है कि प्रधानमंत्री जी, आपने हमारे सामने सन 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की रचयिता है यूपीएससी। यूपीएससी इज इंडीड द आर्किटेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रूट टू डेस्टिनेशन 2047। विरासत और विकास का ये खूबसूरत मिश्रण इसी तरह बना रहे, इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was Dr. Jitendra Singh,
2: आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए हृदय से आभार माननीय मंत्री महोदय।
1: इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग पेंशंस एंड ग्रीवेंसेस and the honorable prime minister of india shri narendra modi is the guest of honor at the centenary celebrations of the union public service commission and a short film on upsc
3: karodon sapne aur ek atoot kasauti merit saal dar saal jan seva ke liye 200 se adhik parikshaon ke madhyam se सबसे योग्य प्रतिभा को चुनना, यूपीएससी द्वारा सटीकता का राष्ट्रीय स्तर पर अभ्यास है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसमें भाग लेती है भारत की विविधता, 48 विषय, 22 संवैधानिक भाषाएं, लाखों परीक्षक और अंत में सिर्फ एक मेरिट लिस्ट। इतनी विविधता को एक ही राष्ट्रीय कसौटी पर लाना, यही यूपीएससी की उपलब्धि है। 100 वर्षों में परीक्षा का आकार बढ़ा तो अवसर का दायरा भी। 1957-58 में लगभग 1000 अनुसूचित जाति कैंडिडेट से 450 गुना बढ़ना, 100 से भी कम अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट से आज 1500 गुना बढ़ना, दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए सेंटर ऑफ चॉइस, अतिरिक्त समय, स्क्राइब की सहायता मिलना, बदलते भारत के साथ महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी, 1952 में 3 से बढ़कर 2025 में लगभग 300 हुई, जिनमें टॉप 25 में 11 महिलाएं शामिल हैं। लाखों कैंडिडेट्स, हजारों परीक्षा केंद्र, निष्पक्षता की रक्षा कैसे हो? यूपीएससी ने चुनी न महंगी मशीनें, न भारी ढांचा, बस एक स्मार्टफोन। 2025 से सभी 2072 केंद्रों पर रियल टाइम फेस ऑथेंटिकेशन, 7 सेकंड में पहचान, हर मिनट 12,000 सत्यापन, एआई से एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स की जांच, प्रतिभा सेतु, अंतिम सूची से चूक गए प्रतिभाशाली कैंडिडेट्स को देता है एक और अवसर। तभी तो सर्वोच्च अदालत से लेकर लाखों युवाओं का यूपीएससी पर है अटूट भरोसा।
4: यूपीएससी एंड इट्स कंडक्ट इज ऑलवेज टॉप नॉच। देयर इज नो प्रॉब्लम इन कंडक्टिंग ऑफ पेपर्स, देयर इज नो लेट शेड्यूलिंग ऑफ पेपर्स, नो कैंसिलेशन ऑफ पेपर्स। आई थिंक दैट्स ऑलमोस्ट द बेस्ट बॉडी यू कैन गेट।
5: बहुत ही ज्यादा फेयर सिलेक्शन होता है कि आप आओगे, आप अपनी तैयारी करके आओ और आपको मौका दिया जाएगा और आपका इवेल्युएशन होगा।
3: 100 वर्षों में भारत बदला, यूपीएससी भी बदला, लेकिन लक्ष्य वही है, प्रतिभा की तलाश, निष्पक्षता का संकल्प और अडिग रहकर हर कर्तव्य का पालन।
6: कर्तव्य हमारे लिए विकल्प नहीं, संकल्प है। ये समय तेजी से बदलाव का समय है, आपकी भूमिका भी, आपके अधिकारों से नहीं, आपके कर्तव्य और उनके पालन से तय होगी।
3: यूपीएससी 100 years of selecting India.
7: संघ लोक सेवायोग के 100 वर्षों की यात्रा को दिखाती हुई है फिल्म का प्रदर्शन किया गया भारत मंडप।
8: देशवासियों की सेवा आराधना तभी प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ का गौरव पाता है, तभी गुलामी की मानसिकता को त्याग कर कर्तव्य पथ, कर्तव्य का बोध कराता है और हर
7: भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह का आयोजन किया जाए।

0: रहा है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री
1: शताब्दी स्मारक टिकट
0: हिस्सा ले रहे हैं।
1: शताब्दी स्मारक सिक्का एवं लोक सेवा
0: शताब्दी
1: संबंधित
0: टिकट
1: और सिक्का
0: माननीय प्रधानमंत्री
1: का विमोचन जारी किया जा रहा है। आपसे
2: ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल
1: प्रकल्पों का विमोचन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
2: रिलीज अ कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप, कमेमोरेटिव कॉइन एंड अ पब्लिकेशन टाइटल्ड 100 लैंडमार्क जजमेंट्स। And the postage stamp is priced at 5 rupees and it says 100 years of Union Public Service Commission. It's indeed a collector's item and the postage stamp and cover is a special commemorative postage stamp and cover that is available as a collector's item. And this also a beautiful coin which depicts the UPSC building from 1926 to 2026 and it is valued at 100 rupees and the publication 100 landmark judgments. The commemorative postage stamp, the commemorative coin and 100 landmark judgments publication have been released by the Honorable Prime Minister.
0: माननीय प्रधानमंत्री ने स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। आपको बता दें
1: 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का शंखनाद
0: यूपीएससी के 100 वर्ष के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया रहा है। अब समारोह
1: के उद्बोधन के लिए अपने आशीर्वाद।
2: एंड नाउ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द गैदरिंग हियर टू मार्क 100 इयर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
3: केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पीके मिश्रा जी, टीवी सोमनाथन जी, अजय कुमार जी, यूपीएससी के सभी माननीय सदस्यगण, अलग अलग राज्यों से आए सभी पीएससी के चेयरमैन, अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों, मैं आज इस बात करने से पहले कल जो एक घटना घटी और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है, आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें। साथियों, आज का ये दिन यूपीएससी के 100 वर्षों के उत्सव के साथ ही एक विरासत का भी उत्सव है। ये उत्सव उस आकांक्षा का है जिसे हर वर्ष लाखों लाख युवा उसे जीते हैं। ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, टेक्नोलॉजी बदली, सिलेबस बदले, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। और ये आप सभी की बहुत बड़ी पूंजी है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर अभी यहीं स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है। मैं 100 वर्ष की इस यात्रा से जुड़े सभी महानुभावों का वंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी मैं एक छोटी सी गैलरी बनाई है, उसका निरीक्षण कर रहा था और आप सबसे भी कहूंगा कि 10-15 मिनट लगेंगे, जरूर देखें। और मैंने उसमें 75 साल के कार्यक्रम का भी एक चित्र देखा, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्रनाथ दिखते हैं। आज 90 साल की आयु में हमारे बीच मौजूद है। साथियों, से कितने ही लोग हैं जिन्होंने इस यात्रा को विश्वास में बदला है, समयाकुल परिवर्तन किए हैं और संस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। जब मैं गैलरी देख रहा था तो 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने भी इसी प्रक्रिया से जब गुजरे थे, उसकी सारी जानकारी वहां है। और मेरा इस बात पर ध्यान गया कि उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी लेकिन संस्कृत का पेपर हुआ करता था और सुभाष बाबू ने संस्कृत में पेपर लिखा है। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी नमन करूंगा। आजादी के बाद उनके सामने केवल एक देश को आजाद रखने की चुनौती नहीं थी, उनके सामने एक राष्ट्र को चलाने की चुनौती भी थी। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए जिस स्टील फ्रेम की जरूरत थी, वो स्टील फ्रेम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। उन्होंने इस संस्था को आजाद भारत का एक प्रमुख स्तंभ बनाया, इसे सशक्त किया। साथियों, 1926 में जब इस संस्थान की नींव रखी गई थी, तब उस समय की प्राथमिकताएं अलग थी। उस समय व्यवस्था का फोकस और उसका समर्पण दोनों ही ब्रिटिश राज के प्रति था। देश आजाद हुआ तो आजाद भारत के सपने और भारत की व्यवस्था ये फोकस में रहे, केंद्र में रहे। बीते दशकों में यूपीएससी ने अपने दायित्वों को बेहतरीन तरीके से निभाया है और इस बारे में यहां मन से भी काफी बातें हुई है और इसलिए मैं न उसका पुनरावर्तन करना चाहता हूं न ही उसके विस्तार में जाना चाहता हूं। इतिहास से आगे बढ़कर अब हमारे सामने भारत का भविष्य इंतजार कर रहा है। 21वीं सदी का एक क्वार्टर 25 साल बीत चुके हैं। आने वाले 20-25 साल भारत के लिए, भारत के हर व्यक्ति, भारत की हर संस्था के लिए बहुत अहम है। इसलिए आज मैं अपनी चर्चा का फोकस इसी दिशा में रखूंगा। साथियों, विकसित भारत के लिए अब जिस तरह की गवर्नेंस देश को चाहिए उसका बहुत बड़ा माध्यम यूपीएससी और राज्यों के चयन आयोग भी है। आज आप जिन युवाओं की भर्ती कर रहे हैं वो विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे और वही विकसित भारत के सबसे बड़ी बेनिफिशियरी भी होने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें दो कसौटियों को हमेशा याद रखना है। पहली कसौटी है नेशन फर्स्ट और दूसरी कसौटी है सिटीजन फर्स्ट। यही दो कसौटियां हैं जिन पर हर सिलेक्शन को कसा जाना है और जब इस भाव से कैंडिडेट को परखा जाएगा, इस भाव से भरे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा तो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति उतनी ही सहज हो जाएगी, आसान हो जाएगी। साथियों, 2047 का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। भारत आज के मुकाबले और अधिक अर्बन होगा, गांव और शहरों का अंतर कम होगा और हमारे नागरिकों, खासकर युवाओं के एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस कहीं ज्यादा बड़ी होगी। आज ही इसका बदलाव दिखाई दे रहा है। इसलिए आज सवाल सिर्फ सर्विस डिलीवरी का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या पब्लिक सर्विसेज आज की इंस्टेंट डिलीवरी वाली दुनिया की गति उसको पकड़ पा रहे हैं क्या, उस हिसाब से चल पा रहे हैं क्या। आज नागरिक किसी सर्विस के लिए हफ्तों या महीनों का इंतजार नहीं करना चाहता। जब एआई हजारों डॉक्यूमेंट्स को कुछ ही क्षणों में प्रोसेस कर सकता है, जब सरकार के पास रियल टाइम डाटा उपलब्ध है तो नागरिक तेजी से समाधान चाहता है। यही बदलती हुई सोच हमारी सिविल सर्विसेज से भी नए बदलाव की मांग करती है। इसलिए हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी भविष्य की

आना क्यों चाहता है, क्योंकि जब मोटिवेशन सही होगा तो बदलती जन आकांक्षाओं के साथ चलना भी आसान होगा, ढलना भी आसान होगा। साथियों, आप में से काफी लोग इस बात से परिचित है कि मैं जब ट्रेनी ऑफिसर से मिलता हूं तो उनसे कहता हूं कि वे लिख कर रखे प्रारंभ में ही और खुद लिख करके उसको रखे, वे सिविल सर्विस में क्यों आए हैं, क्योंकि समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, नई चुनौतियां आती हैं। ऐसे समय में वही छोटा सा नोट उन्हें उनके मूल उद्देश्य की याद दिलाता है। यह उनके लिए एक सेल्फ अप्रेजल टूल भी बन जाता है। यूपीएससी और राज्यों के आयोग भी कुछ ऐसी व्यवस्था को विकसित करने के बारे में विचार कर सकते हैं। साथियों, हमने अतीत का वो दौर देखा है जब माना जाता था कि सरकार ही माई बाप है, लेकिन आज ये दौर है जिसमें हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। यानी देश का नागरिक हमारे लिए किसी देव से कम नहीं है, हमारे लिए नागरिक की सेवा सर्वोपरि है। इसलिए साथियों, आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका मूल सिद्धांत है प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस। प्रो पीपल यानी सरकार की सुविधा को देखते हुए नहीं, बल्कि नागरिक के हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम करना। प्रोएक्टिव यानी जब समस्या आए तब एक्शन के बजाय समस्या को पहले ही एंटीसिपेट करके उसके समाधान तैयार हो। गुड गवर्नेंस यानी सरकार का अभाव भी ना हो, दबाव भी ना हो और अनावश्यक प्रभाव भी ना हो। राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर दोनों ही जगह हमें अपने सिलेक्शन प्रोसेस को इसी स्पिरिट के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो देश की आवश्यकताओं को समझे, जो कानून का पालन कराए, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है। साथियों, आज जिस तेजी से युग बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, वो हम सब देख रहे हैं। इसके बाद जो आने वाला समय है उसमें नई तरह की चुनौतियां समाज के सामने आने जा रही है। एआई को लेकर इस समय विश्व में जो चर्चा छिड़ी हुई है उससे हम सब परिचित हैं। ऐसे में

0: हमारे सिविल सर्वेंट्स भी अलग तरह की परिस्थितियों में काम करेंगे। इंफॉर्मेशन वॉर की स्थिति होगी, डीप फेक्स होंगे, एल्गोरिथमिक बायस के चैलेंज होंगे, क्लाइमेट जस्टिस जैसे कॉम्प्लेक्स सवाल होंगे। ऐसे में हमें चयन प्रक्रिया में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और दूरदृष्टि को टेस्ट करने का भी उस प्रयासों को भी प्राथमिकता देनी होगी। साथियों, हम सभी जानते हैं देश आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से चल रहा है। ऐसे समय में हमारी परीक्षा कराने वाली एजेंसीज को उन रिफॉर्म पर तेजी से काम करना होगा जो आज के समय की मांग है। जैसे परीक्षाओं को कराने में लगने वाला समय एक बहुत अहम विषय है। परीक्षा को हमें केवल एक इवेंट की तरह नहीं देखना है, ये इवेंट से कहीं अधिक युवाओं के भविष्य उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। परीक्षाओं में कुछ महीनों की देरी युवाओं के लिए बड़ा संकट बन सकती है। कोचिंग की फीस, रेंट, ट्रांसपोर्ट का खर्च, ये बहुत बड़ा बोझ उस परिवार पर होता है। इसलिए हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम टाइम सर्टेनिटी के सिद्धांत को अपनाए, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए यूपीएससी को देश के सभी चयन आयोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि बार को लॉक किए बिना हमारी एग्जामिनेशन साइकिल छोटी कैसे हो। वैसे मैं अभी गैलरी में देख रहा था, करीब 100 दिन कम किए हैं, ये तो अब बधाई के पात्र है ही है और मैं आप सबको बधाई देता हूं। लेकिन साथियों, ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं है, यह एक इक्विटी रिफॉर्म भी होगा। साथियों, आप सभी चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस और डीजीपी कॉन्फ्रेंस के बारे में जानते हैं। पिछले 10 साल में एक अच्छा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप हुआ है जिसमें देश के सभी सीएस 3 दिन साथ बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। उसी प्रकार से 3 दिन के लिए डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश के सभी डीजीपी इकट्ठे होकर के बातचीत करते हैं। और इन कॉन्फ्रेंस में एक प्रयास होता है कि एक राज्य दूसरे राज्य की बेस्ट प्रैक्टिसेस को जाने, समझे, सीखे और उचित लगे तो उन्हें अपने राज्य में लागू करें। मुझे बताया गया है कि यूपीएससी हर वर्ष स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। अब उसको और विस्तार देकर के और अधिक प्रोडक्टिव बनाने के लिए और अधिक नए विचारों से भरने के लिए भी उसके रूप रंग व्यवस्था को कैसे नया आयाम दिया जाए, उस पर जरूर आप सोचते होंगे। ऐसे प्रयासों से अलग अलग संस्थानों की बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा होती है, लेकिन साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी स्टडी करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने प्रोसेस और प्रोसीजर्स की एफिशिएंसी ये कैसे बढ़े, इस पर भी फोकस चर्चा होनी चाहिए। क्लोज्ड लर्निंग के इस प्रयास से यूपीएससी को भी फायदा होगा और हर राज्य के चयन आयोग को भी जरूर लाभ होगा। हमें प्रोसेस और प्रोसीड्यूरल के मानकों को स्टैंडर्डाइज करने पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इससे युवाओं को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, एक और विषय, यूपीएससी और राज्यों के चयन आयोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग का भी है। ये काम भी निरंतर होते रहना चाहिए। मिशन कर्मयोगी के तहत जो आईगॉट प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसका उपयोग हमारी इन अंदरूनी व्यवस्थाओं के लिए भी, हमारे साथ काम करने वाली टीम के कैपेबिलिटी के लिए भी इन सारे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया जा सकता है। साथियों, आप सभी को हमेशा याद रखना है कि आपका काम युवा शक्ति के भविष्य से जुड़ा है, यानी युवा शक्ति से राष्ट्र शक्ति के निर्माण का जो मिशन है, आप उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। और बीते वर्षों में आपने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई भी है। जब यूपीएससी का गठन हुआ था, तब बड़े शहरों, समर्थ परिवारों और बड़े संस्थानों से पढ़े युवाओं को अवसरों का लाभ अधिक मिलता था, लेकिन आज गांवों और कस्बों के युवा भी पब्लिक सर्विस में पहुंच रहे हैं। हमारी बेटियों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। 1952 में सिविल सर्विसेज में विमेन कैंडिडेट की संख्या सिर्फ 3% थी, 3%। आज यह 30%, 30% से अधिक हो चुकी है। और यूपीएससी के पूरे इतिहास में 4 विमेन चेयरपर्सन रही है, पूरे यूपीएससी के इतिहास में। ताली बजने का समय अब आएगा। पूरे यूपीएससी के हिस्ट्री में 4, उसमें से 3 2014 के बाद बनी है। ये बदलाव केवल आंकड़े नहीं है, ये बताते हैं कि देश में अवसरों का दायरा कितना बढ़ा है। साथियों, 1976 में जब यूपीएससी को 50 साल हुए थे, उस समय की तुलना में परीक्षा देने वालों की संख्या में 45 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की जा चुकी है, 44.5 times। यानी आज हमारे सामने टैलेंट का एक बहुत बड़ा पूल है। ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है। अब हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है, क्योंकि जब इतना बड़ा टैलेंट पूल हो, पूरी दुनिया जिस पर ईर्ष्या करती है, जब सामने इतना बड़ा टैलेंट पूल है, तो आप सिर्फ एक कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति का चयन कर रहे हैं जो आगे चलकर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ग्राउंड लेवल पर लोग उसी को गवर्नमेंट मानेंगे। इसलिए आप सभी पर सही व्यक्ति के चयन का बहुत बड़ा दायित्व है। साथियों, यूपीएससी ने अपने पहले 100 साल में अपनी विश्वसनीयता को निरंतर मजबूत किया है। अभी संस्था को अपनी दूसरी सदी में नई संभावनाओं, नई चुनौतियों के हिसाब से विश्वसनीयता को और समृद्ध कर रहा है। जो वैल्यूज आज तक हमारी ताकत रही है, उन्हें बनाए रखते हुए भविष्य के अनुरूप अपग्रेड भी करना है। यूपीएससी की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, योग्यता, गोपनीयता और निष्पक्ष प्रक्रिया, यही उसकी पहचान है। ये मूल्य हमेशा बने रहना चाहिए। इसी आग्रह के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission said that he spoke to the parents and the spouse of Captain Smith Machar, who saved many lives in an aircraft that was on its way from Dubai to Israel yesterday. And he said that this displays India's commitment to peace and to fight terrorism. The Prime Minister said that he was pleased to see a photograph of Netaji Subhash Chandra Bose, who appeared and passed the 1920 UPSC examination, and he had appeared for the exams and wrote the paper in Sanskrit. The Prime Minister observed that the Union Public Service Commission played a pivotal role in shaping the roadmap of our bureaucrats and our police officers. He said that the coming two decades would be extremely significant for every citizen and every institution as India embarks on Viksit Bharat. During Viksit Bharat governance, UPSC and state PSCs will play a great role. He said that two touchstones should be remembered by the civil servants. The first is nation first and the other citizen first. 2047's India will be totally different from now. Nagrik Devo Bhava should be the mantra of every civil servant as it is the mantra of the government. Service to citizens should be the top priority of officers of the central and state governments. Citizens require quick solutions to their grievances. The examination cycle's timeline may be brought down further, observed the Prime Minister. He urged the Commission to standardize processes and procedures and said that UPSC is the link between Yuva Shakti and Rashtra Shakti.
2: Mananiya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi Lok Seva Aayog ke Shatabdi Samaroh ko sambodhit kar rahe the. Is avsar par Mananiya Pradhan Mantri ne UPSC ki aitihasik yatra, लोक सेवा की भूमिका और देश की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने इस समय युवाओं और लोक सेवा में उनकी भूमिका की चर्चा भी की। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक सेवा में प्रतिभा, जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण के महत्व को भी रेखांकित किया। श्रोताओं, 1 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम में आयोजित समारोह संघ लोक सेवा आयोग की 100 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा को एक साथ देखने का अवसर प्रदान करता है। 1 अक्टूबर 1926 को शुरू हुई यात्रा, फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चरण और स्वतंत्र भारत के संविधान के लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का संवैधानिक स्वरूप, इन सभी प्रयाणों से गुजरते हुए यूपीएससी ने आज अपना शताब्दी समारोह मनाया। आज का यह समारोह अतीत की विरासत को स्मरण करने के साथ साथ आने वाले समय के लिए नई सोच, नई दिशा पर विचार करने का एक अवसर भी है। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इस विशेष प्रसारण से मैं शहसियार खान, अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए प्रेरित हों।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। ये कार्यक्रम साल भर चलने वाले उन समारोहों का समापन है जो पिछले साल 1 अक्टूबर को शुरू हुए थे और 1926 में यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहे थे। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनके बहादुरी और मुश्किल समय में सूझबूझ दिखाने के हौसले ने सभी का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और तुरंत कार्रवाई से एक बड़ा खतरा टल गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार ने खतरे के समय असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया जो अत्यंत प्रशंसनीय है। भारत को इस असाधारण नायक पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की सराहना की जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन उन्हें हर संभव मदद पहुंचा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि श्री मच्छार ने गंभीर खतरे के बावजूद सैकड़ों लोगों की जान बचाई और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता में सुधार करना है, साथ ही आम जनता में स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: भारत एशियाई खेल 2026 के 12वें दिन पदक तालिका को बढ़ने की उम्मीद के साथ शुरुआत कर रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होनी हैं। भारत ने नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश ने आज मंगोलिया के गंखुयांग गनबातार को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

Responded. कुछ रिश्ते छांव की तरह होते हैं, कुछ यादें तुलसी की पौधी सी महकती हैं, कुछ बातें रसोई से उठती खुशबू की तरह मन में बस जाती हैं। घर इन्हीं से बनता है और आंगन इन्हीं से आबाद होता है। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर आंगन और इसी के साथ आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। और आज आपके साथ इस सफर में हम सफर रहूंगी मैं, आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। तो आइए जिंदगी की इसी गर्माहट को महसूस करते हैं घर आंगन में, क्योंकि घर में आपसे कोई कहे चाहे ना कहे कि उसे आपसे प्यार है, लेकिन हाँ प्यार तो है, क्योंकि ये सिर्फ कहने का मोहताज नहीं होता, ये महसूस करने का मोहताज होता है।

फिल्म खैरांदा, आवाज हिरुना लला, आप सुन रहे थे ये गाना। अच्छा दोस्तों, बस कुछ ही दिनों में हमारे त्योहारों का जो पूरा मौसम है वो शुरू हो जाएगा, तो बातें बस उसी से जुड़ी हुई थोड़ी आपसे करना चाहूंगी कि त्योहार आते हैं तो घर ना जैसे थोड़ा और घर हो जाता है, मानेंगे ना। और रसोई से आती खुशबू, दरवाजे पर सजावट, नए कपड़ों की तैयारी और सबसे बढ़कर अपनों के साथ बैठने का इंतजार। लेकिन आजकल त्योहार का ना एक हिस्सा हमारी मोबाइल की तस्वीरों में भी बसता है, मानेंगे ना। सजावट हुई तो तस्वीर, खाना बना तो तस्वीर, परिवार साथ बैठा तो तस्वीर। और कई बार तस्वीर लेने के चक्कर में हम उस पल को जीना ही भूल जाते हैं जिसे बाद में याद करना था। फिर जरा सोचिए, बचपन में मनाए गए त्योहारों की कितनी तस्वीरें हमें अभी भी सचमुच याद है, शायद बहुत कम। लेकिन यह जरूर याद है कि दादी के हाथ की मिठाई कैसी लगती थी, माँ सुबह से रसोई में क्या क्या बनाती थी, भाई बहनों के साथ कैसी शरारत होती थी, या त्योहार पर कौन दूर से चलकर हमारे घर आया था। याद रहती ना, बहुत सी ऐसी हमारी बचपने की यादें हमारे साथ ता उम्र चलती रहती हैं। यानी त्योहारों की असली याद शायद कैमरे में कम और एहसास में ज्यादा रहती है। तो देखिए, ये हम जरूर कहेंगे कि तस्वीर जरूर खींचिए, उन्हें सहेजिए भी, मगर कुछ पल कैमरे से दूर रहकर अपने लोगों के साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, अपनी सुनाइए, साथ खाना खाइए, हंसिए। क्योंकि कुछ तस्वीरें दीवार पर लग जाती हैं, कुछ मोबाइल में रह जाती हैं, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो तस्वीर बिना भी पूरी तरह हमारे भीतर रहते हैं। लेकिन देखिए, तस्वीर होती हैं तो यादें भी होती हैं। तो आज उसी से जुड़ा सवाल मैं आपके साथ करना चाहूंगी कि आपको अपनी कौन सी ऐसी तस्वीर याद है जिसके साथ आपकी कोई बहुत गहरी याद जुड़ी हुई है, बचपन की हो, जवानी की हो, अभी की हो, कोई भी हो सकती है। क्योंकि ना आपको वो तस्वीरें आपके जहन में पूरे समय बस जाती हैं, कुछ ऐसी खास तस्वीरें होती हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइए। और आप हमें कहाँ बताएंगे? जी हाँ, fmgoldga@gmail.com पर।

मोहम्मद रफी के साथ लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म माया का ये गीत। और देखिए, तस्वीर से जुड़ा हुआ सवाल हमने आपसे किया है कि आपके जहन में अभी भी कौन सी ऐसी तस्वीर है जिसके साथ आपकी बहुत बेशकीमती यादें जुड़ी हुई हैं। तो हमें बताइए fmgoldga@gmail.com पर। और आप सुन रहे हैं आपका प्रोग्राम घर आंगन। देखिए दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर अपने भीतर कई ऐसी स्मृतियां समेटे हुए हैं जो हमें सेवा, सम्मान और साहस के अलग अलग रूपों से परिचित कराती है। आज ही के दिन ना भारतीय सेना की मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का स्थापना दिवस मनाया जाता है और सैन्य नर्सिंग की परंपरा भारत में 1888 से जुड़ी है, जबकि इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की औपचारिक स्थापना आज ही के दिन यानी 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। युद्ध के कठिन समय से लेकर शांति के दिनों तक सैन्य नर्सों ने घायल और बीमार सैनिकों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सेवा की यही भावना हमें आज के अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की ओर भी ले जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने ना 1 अक्टूबर को यह दिवस उन वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और उनके अधिकारों, गरिमा और बेहतर जीवन के प्रति जागरूकता के लिए समर्पित किया है। उम्र बढ़ना जीवन की स्वाभाविक यात्रा है ना? और इसीलिए सवाल सिर्फ यह नहीं कि हम अपने बुजुर्गों की देखभाल कैसे करते हैं, बल्कि यह भी है कि उन्हें परिवार और समाज में कितना सम्मान और अपनापन।

करते हैं। इसी तारीख को हम डॉक्टर एनी बेसेंट को भी अपनी जयंती उनकी जयंती पर याद करते हैं। 1 अक्टूबर 1847 को जन्मी एनी बेसेंट ने भारत में शिक्षा, सामाजिक सुधार और स्वशासन के विचार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और फिर स्मरण आता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का, जिनकी पुण्यतिथि भी हम 1 अक्टूबर को ही मनाते हैं, मतलब आज ही उनकी पुण्यतिथि भी है। 1930 के पेशावर कांड में उन्होंने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। उनका यह निर्णय साहस और अंतरात्मा की आवाज का एक ऐतिहासिक उदाहरण बन गया था। 1 अक्टूबर 1989 को उनका निधन हुआ था। तो देखिए, एक ही दिन हमें 4 अलग अलग तस्वीरें दिखाई देती हैं, है ना? और किसी की वर्दी में सेवा, किसी के जीवन में उम्र का सम्मान, किसी के विचारों में बदलाव की चाह और किसी के निर्णय में अदम्य साहस। 1 अक्टूबर शायद हमें यही याद दिलाता है कि समाज सिर्फ बड़ी घटनाओं से नहीं बनता, बल्कि उन लोगों से बनता है जो अपने हिस्से की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते हैं।

फिल्म शोर में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में ये गीत। और देखिए हमारे सवाल के जवाब में हमारे साथ हमारे कौन कौन से दोस्त जुड़े हैं। तो ये है नवीन भाटिया जी मोतीनगर नई दिल्ली से, लिखते हैं स्कूल डेज की फोटो आज है जो आज तक संभाल के रखी है 10th क्लास की। हाँ वो वाले समय की ना फोटो सच में सबको दिन में और दिल में हमेशा रहती है। फिर हमारे साथ कौन जुड़े हैं, ये उमेश कुमार जी खयाला से, लिखते हैं नमस्ते मैडम जी, हमारी बचपन की तस्वीर हम सब बहन भाई की साथ में वो आज तक है और हमारे माताजी पिताजी की वो तस्वीर भी अच्छी लगती और याद आती है जब हम छोटे छोटे दिखते थे। हाँ ये सारी बातें ना हम सभी को बहुत याद आती हैं, बचपन की कुछ तस्वीर सच में हमारे दिमाग में हमारे ख्याल में हमेशा रह जाती है। फिर अच्छा चरणदास जी लिखते हैं अच्छा राजू अग्रवाल जी केशव विनोद टेलर साहिल चौधरीवास हिसार हरियाणा से लिखते हैं कि आपके नमस्कार कहती आवाज़ पहचान गया। क्या बात है, शुक्रिया, मतलब आप हमारे साथ में इतने दिल से जुड़े हैं कि आप हमारे लहजे से पहचान जाते हैं कि कौन बोल रहा है, धन्यवाद। ये लिखते हैं कि मैं 3 साल का बच्चा था तब से लेकर आज तक सब कुछ मेरे दिमाग में मौजूद है, लेकिन एक तस्वीर कभी नहीं भूलूंगा, मेरी बेटी का लड़का। ओहो ये ना देखिए मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनका लिख रहे हैं कि उनके 7 साल का मासूम हम छोड़कर चला गया। देखिए मतलब ये मेरी संवेदनाएं आपके परिवार के साथ और आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर इसके बाद में हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन मुखी जी, इनके साथ अनिता मुखी सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से, लिखते हैं आदरणीय सोनाली जी स्वस्थ सादर प्रणाम, आपको भी हमारा प्रणाम सर। फिर लिखते हैं कि बचपन की बहन और भाइयों की ब्लैक एंड वाइट ग्रुप फोटो जो आज भी हमारे दिल में बहुत बड़ी याद है और हमेशा रहेगी। आपका दिवस और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन मुखी जी, आप सभी दोस्त हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगातार कहीं ना कहीं एक प्यार जैसी कौंधती रहती हैं, एक लहर उठाती रहती हैं, कुछ तस्वीर दिमाग में हमेशा बनी रहती हैं। जी हाँ दोस्तों 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं आपका और हमारा प्यारा कार्यक्रम घर आंगन, साथ ही आप हमें आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी सुन पा रहे हैं और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो हमसफर सोनाली। देखिए हम अक्सर चाहते हैं कि हमारा शहर साफ सुथरा हो, है ना, आप भी यही चाहते हैं, तो सड़कें चमकती रहें, गलियों में कूड़ा ना हो, नालियां साफ रहें और सार्वजनिक जगहों पर गंदगी ना दिखाई दे। वाह वाह कितना अच्छा लगता है ना, ऐसा हम सभी चाहते हैं कि हमारा शहर हमारी गली हमारा मोहल्ला इतना ही साफ सुथरा हो। लेकिन एक सवाल है, क्या साफ सुथरा शहर सिर्फ सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी है? देखिए सुबह जब सफाई कर्मी सड़क पर झाड़ू लगाता है तो उसके कुछ घंटे बाद उसी सड़क पर कचरे का टुकड़ा कौन छोड़ जाता है? कूड़ेदान सामने होते हुए भी उसके बाहर कचरा कौन रख देता है? और घर से निकला छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा जब नाली में पहुंचता है तो वह आखिर वहां तक आता कैसे है, सोचा है कभी? सोचा तो होगा क्योंकि सफाई कर्मी अपना काम कर रहे हैं लेकिन शहर हमारा भी तो है। फिर साफ सफाई को सिर्फ झाड़ू और कूड़ा उठाने तक सीमित कर देना शायद ठीक नहीं, यह हमारी रोजमर्रा की आदतों से भी तो जुड़ा हुआ है। घर का कचरा सही जगह पर डालना, गीले और सूखे कचरे को अलग रखना, सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा न फैलाना और किसी दूसरे की मेहनत का सम्मान करना, ये छोटी छोटी बातें मिलकर शहर की तस्वीर बदलती हैं। और शायद सफाई कर्मी के लिए सबसे बड़ा सम्मान यही होगा कि वह जिस जगह को साफ करके जाए हम उसे दोबारा गंदा

ना करें, क्योंकि शहर की सफाई में झाड़ू किसी एक के हाथ में हो सकती है, लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक समावेशी इसमें योगदान जरूरी है ना। फिर आप जहां जाएंगे हर जगह आपको खूबसूरत निगाहें और खूबसूरत चीजों का दर्शन होगा, है ना।

फिल्म प्रेम पर्वत में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। देखिए हमारे साथ हमारे एक और श्रोता जुड़ी है, लिखते हैं सोनाली बेटा राम राम, राम राम सर। फिर ये लिख रहे हैं कौन, ये है गौरी शंकर जी नांगलोई से। ये लिखते हैं बचपन में जो दीवार पर तस्वीर बनाया करते थे दिवाली के टाइम पर, वह आज भी याद है। उस दौरान घर में कैमरे का साधन भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, लेकिन रेडियो सुनते थे। वह यादें दिमाग में फिट रहती हैं। जो मन में खुशी उस टाइम पर महसूस होती थी वह आज नहीं है। अब तो अपनी सोच बदलकर खुश रहने की कोशिश करते हैं, सब अच्छा ही होगा। सच बात है, और आपकी यही पॉजिटिव जो बातें हैं, जो सकारात्मक सोच है, ये हमेशा बनाकर रखिएगा। फिर हमारे साथ ये जुड़े हैं चौधरी वास जी, जी पंकज बिंदल जी हैं। ये लिखते हैं कि उनके पिताजी को तस्वीरों से बहुत प्रेम है और वो पूरे समय अपने घर में अपने पसंदीदा लोगों की तस्वीरें लगा के रखते हैं। क्या बात है। देखिए ऐसी ही चीज़ें जो होती है ना, वो हमें अपने उन बीते दिनों की याद दिलाती है जब हमारे पास वो जो समय था वो शायद उन्हीं में कैद होकर रह गया, तो उन तस्वीरों को देख कर हम लगातार उन्हीं सारी बातों को दोबारा से याद करते हैं। चलिए जब हम बात करते हैं पुराने समय की तस्वीरों की, तो ऐसे में हम आपको कुछ ऐसी बातें भी बताना जरूरी समझते हैं जो हमारी धरोहर से जुड़ी हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बात मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। यह है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का भूसरा गांव, की ना अपनी एक ऐसी पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है जिसमें सुई और धागे के सहारे कपड़े पर सिर्फ आकृतियां ही नहीं बल्कि जीवन के रंग भी उकेरे जाते हैं। यह कला, पता है आपको क्या नाम है इसका? ये है सुजनी कढ़ाई। सुजनी की परंपरा बहुत पुरानी है और पहले पुराने कपड़ों की कई परतों को सिलकर उन पर रंगीन धागों से कढ़ाई की जाती थी। इनका इस्तेमाल खास तौर पर नवजात शिशुओं के लिए बिछावन या ओढ़ने के कपड़े के रूप में किया जाता था, और धीरे धीरे इस कढ़ाई में रोजमर्रा के जीवन, प्रकृति और सामाजिक अनुभवों से जुड़े चित्र भी दिखाई देने लगे। फिर आपको पता है दोस्तों, भूसरा की जो महिला कारीगरों ने ना इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। खास बात यह है कि सुजनी कढ़ाई सिर्फ सजावट नहीं रही बल्कि ग्रामीण महिलाओं के अनुभवों और उनकी कल्पना को अभिव्यक्ति देने का माध्यम भी बन गई। इस पारंपरिक कला को 2006 में भौगोलिक संकेत यानी GI मान्यता मिली। सोचिए, एक सुई, कुछ धागे और कपड़ों का एक साधारण सा टुकड़ा और उससे बनती ऐसी कहानी जो पीढ़ियों का सफर तय कर लेती है। यही तो हमारी लोककला की खूबसूरती है ना। हाथों का हुनर जब परंपरा से मिलता है तो साधारण कपड़ा भी एक विरासत बन जाता है, और इसी तरह विरासत है क्या हमारे लोकगीत भी। तो आइए सुनते हैं लोकगीत की मिठास लिए ये एक गाना जो फिल्म हीरा मोती से है।

फिल्म हीरा मोती में आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और सुधा मल्होत्रा की आवाज में ये एक बहुत प्यारा सा गीत। अच्छा देखिए, बातों बातों से बातें निकलती हैं तो यादें भी आपको बार बार आती है, तो ऐसे ही हमारे जो श्रोता है उमेश कुमार जी, वो एक और हमें मेल करते हैं और फिर उसमें अपनी यादें सहेज रहे हैं। कह रहे हैं, नमस्ते मैडम जी, मेरे पिताजी ने दीवार पर लक्ष्मी माता जी की तस्वीर बनाई हुई थी जब हम छोटे थे, वो तस्वीर भी आज तक बहुत याद है। अरे वाह, देखिए फिर ऐसी ही तो चीजें हैं जो हमेशा याद रहती हैं। तो बस आप भी हमारे साथ अपनी यादों को संजोइए, हमें बताइए आपकी कौन सी तस्वीर आपकी सबसे ज्यादा करीब है। दोस्तों, हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी सुरक्षित रहे, वह घर से बाहर निकले तो मन में डर न हो, रास्ते सुरक्षित हों और उसे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन बेटी की सुरक्षा की बात करते हुए क्या हम कभी यह भी सोचते हैं कि उसे खुद अपने लिए खड़े होने के काबिल कैसे बनाया जाए? बेटी को न सिर्फ यह बताना काफी नहीं है कि किन रास्तों से बचना है, किससे सावधान रहना है, बल्कि उसे यह भी पता होना चाहिए कि मुश्किल परिस्थिति में अपनी बात कैसे रखनी है, मदद कैसे मांगनी है, अपने फैसले कैसे लेने हैं और अपने अधिकारों को कैसे समझना है। और आत्मनिर्भरता सिर्फ नौकरी करने या पैसा कमाने तक सीमित नहीं है। अपने छोटे बड़े फैसले खुद लेने का भरोसा, पैसों को समझने की आदत, घर और बाहर के जरूरी काम संभाल पाने का आत्मविश्वास, ये सब उसकी आत्मनिर्भरता का ही हिस्सा है। कई बार ना प्यार में हम बेटियों के लिए हर मुश्किल आसान कर देते हैं और करना कर देना चाहते हैं, लेकिन हर मुश्किल को उनसे दूर कर देना शायद उन्हें मजबूत बनाने का तरीका नहीं है। देखिए, प्यार कीजिए, लाड़ कीजिए, लेकिन ना उन्हें रास्ते खुद तय करने दीजिए, कुछ फैसले खुद लेने दीजिए और कभी कभी गलती करने की गुंजाइश भी दीजिए, है ना? क्योंकि बेटियों के साथ हमेशा कोई और खड़ा रहे यह जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि जब कभी उसे अकेले खड़ा होना पड़े तब उसे अपने भीतर की ताकत पर भरोसा हो। सुरक्षित बेटी जरूरी है, लेकिन सुरक्षित होने के साथ अपने फैसले खुद लेने वाली, अपने पैरों पर खड़ी और अपने जीवन की दिशा तय करने वाली बेटी, शायद यही उसकी असली मजबूती है।

फिल्म खामोशी द म्यूजिकल, इसमें आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति के साथ कुमार शानू की आवाज में ये गीत। अच्छा दोस्तों, आप मुझे बताइए, आप भी मानेंगे कि कभी कभी समझ शब्दों की बहुत मोहताज नहीं होती, है ना। सामने वाला कुछ भी कहे या कुछ कहे भी नहीं, फिर भी उसकी आंखों का ठहराव, आवाज की हल्की सी थरथराहट या अचानक आई खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। रिश्तों की असली खूबसूरती शायद इसी में है कि हर बात कहनी ना पड़े, कुछ बातें इशारों में ही पढ़ ली जाए। किसी के मैं ठीक हूँ कि पीछे जो छिपी उदासी है उसको पहचान लेना, किसी की हंसी में थकान सुन लेना या बिना पूछे उसके पास चुपचाप बैठ जाना, यही तो वह समझ है जो कभी शब्दों से कहीं आगे होती है, है ना। और जिन्हें समझना आता है उन्हें हर बात बतानी नहीं पड़ती, और जिन्हें नहीं समझना उनके सामने पूरी कहानी कह देने के बाद भी कुछ अधूरा ही रह जाता है। इसलिए आप भी समझने की कोशिश कीजिए, बहुत बार बहुत सी बातें अनकही भी होती हैं लेकिन बहुत कुछ कह जाती हैं।

0: फिल्म आंगन की कली, इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। और दोस्तों, अब घड़ी हमें यही इशारा कर रही है और आप भी समझ गए कि अब हम इस कार्यक्रम को आगे और नहीं बढ़ा सकते। ये कार्यक्रम का जो सफ़र आपने तय किया, वो किया आपके रेडियो हम सफ़र सोनाली के साथ। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें, बहुत अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खूब खुश रहें। इन्हीं मनोकामनाओं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: घर आंगन, आपके अस्तित्व, आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जन सेवा के लिए प्रेरित हों।
1: हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे।

0: कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवो भव है और नागरिकों की सेवा करना सबसे जरूरी है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सशस्त्र बलों के बीच आपसी तालमेल और एकीकरण पर बहुत जोर दे रही है। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर श्री सिंह ने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत कर दिया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर और कुशल हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने का आग्रह किया।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
1: दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। भारत जापान एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराया। फाइनल शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। एशियाई खेल 2026 में भारत ने नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने पुरुषों के स्किफ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश ने आज मंगोलिया के गंखो यांग गनबातार को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को सेमीफाइनल में कांस्य पदक मिला। भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। गणेश ने कांस्य पदक के प्लेऑफ में वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149-144 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ऐसे मकबूल शायर और गीतकार जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत चिकित्सक के रूप में की थी, लेकिन किस्मत उन्हें फिल्मों में ले आई। आज का कलाकार बेमिसाल केंद्रित है जाने माने गीतकार मजरू सुल्तानपुरी पर, और आपके साथ रहूंगी मैं रजनी।

अभिमान फिल्म से गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाजों में। आज ही के दिन 1 अक्टूबर 1919 को इसरार हसन खां के रूप में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म हुआ। बचपन में उर्दू, अरबी और फारसी की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने लखनऊ से यूनानी चिकित्सा की डिग्री ली। फैजाबाद में उन्होंने अपना क्लिनिक भी खोला था, लेकिन कुछ ही समय बाद वो सुल्तानपुर वापस लौट आए। इसके बाद क्या हुआ बताएंगे आपको सुजाता फिल्म के इस गीत के बाद, जिसमें आवाज दी है आशा भोंसले और गीता दत्त ने।

मजरू को बचपन से ही शायरी और संगीत में रुचि थी। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक म्यूजिकल कॉलेज में दाखिला भी लिया था, लेकिन ये बात जब उनके पिता मोहम्मद हसन खां को पता चली तो उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी का संगीत छुड़वा दिया, लेकिन वो उनसे शायरी नहीं छुड़वा पाए। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म कारवां से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की।

मजरू जब 16 बरस के थे तभी से उन्होंने शायरी करना शुरू कर दिया था और अपनी पहली गजल उन्होंने सुल्तानपुर के एक मुशायरे में पढ़ी। जाने माने शायर जिगर मुरादाबादी का मजरूह पे काफी असर था। जिगर मुरादाबादी भी उनसे काफी प्रभावित थे। वो मजरूह को अपने साथ मुशायरों में ले जाया करते। ऐसे ही एक मुशायरे में शिरकत करने मजरूह मुंबई पहुंचे, जहां मशहूर फिल्म डायरेक्टर एआर कारदार भी मौजूद थे। वो उनकी शायरी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बहुत ऊंची तनख्वाह उन्हें ऑफर की, लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी ने मना कर दिया। इसके बाद क्या हुआ बताएंगे आपको इस गीत के बाद, जो हमने चुना है फिल्म तीसरी मंजिल से। आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की।

जब कारदार साहब के ऑफर के बाद जिगर मुरादाबादी को पता चली तो उन्होंने मजरूह को ये ऑफर एक्सेप्ट करने की सलाह दी। उनकी पहली फिल्म थी शाहजहां और पहली ही फिल्म में उनके लिखे गीतों ने सफलता के रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसका एक गीत तो इतना पॉपुलर हुआ था कि केएल सहगल ने ये वसीयत कर दी थी कि उनके निधन के बाद उनकी आखिरी यात्रा में यही गीत बजेगा।

शाहजहां के बाद मजरूह सुल्तानपुरी ने 40 के दशक में डोली और अंदाज, 50 के दशक में फुटपाथ, वारिस, मिस्टर एंड मिसेस 55, सीआईडी, तुमसा नहीं देखा, पेइंग गेस्ट, 9-2-11, 16 साल, दिल्ली का ठग, काला पानी, सुजाता और दिल देखो देखो जैसी लोकप्रिय फिल्मों के गीत लिखे। 60 के दशक में बम्बई का बाबू, माया, झुमरू, चाइना टाउन, आरती, फिर वही दिल आया हूं, दोस्ती, मेरे सनम, ममता, तीसरी मंजिल, पत्थर के सनम, शागिर्द, साथी, मेरे हमदम मेरे दोस्त, प्यार का मौसम, धरती कहे पुकार के, चिराग, दस्तक और जूल थीफ जैसी फिल्मों के गीत लिखे। जूल थीफ से अगला गीत आप तक पहुंच रहा है, फिल्म जूल थीफ से ही, और आवाज है आशा भोसले की।

70 के दशक में मेला, कारवा, बुढ़ा मिल गया, पाकीजा, मेरे जीवन साथी, समाधि, अनामिका, अभिमान, यादों की बारात, कुंवारा बाप, 10 नंबरी, हम किसी से कम नहीं और नौकर जैसी फिल्मों के लोकप्रिय गीत मजरूह सुल्तानपुरी की कलम से निकले। 80 के दशक की लोकप्रिय फिल्में जैसे कालिया, जमाने को दिखाना है, बड़े दिलवाला, खुद्दार, बाबू और कयामत से कयामत तक जैसी सफल फिल्मों में उन्होंने शब्दों का जादू बिखेरा। 90 के दशक में भी लव, जो जीता वही सिकंदर, कभी हां कभी ना, अंदाज अपना अपना, अकेले हम, अकेले तुम, खामोशी, पुकार और क्या कहना जैसी फिल्मों के गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे। फिलहाल उनकी कलम से निकला कयामत से कयामत तक फिल्म का बेहद पॉपुलर गीत उदित नारायण की आवाज में।

मजरू सुल्तानपुरी वो पहले गीतकार थे जिन्हें फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा गालिब अवार्ड और इकबाल अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किए। 1965 में उन्होंने फिल्म दोस्ती के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल किया।

मजरू सुल्तानपुरी फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थे और इसी कारण 24 मई 2000 को 80 बरस की उम्र में उनका देहांत हो गया। अपने आखिरी दिनों तक भी वो फिल्मी दुनिया से जुड़े रहे। फिल्मों के साथ साथ साहित्य से भी उनका गहरा रिश्ता रहा। उनकी किताबें कुल्लते मजरू सुल्तानपुरी और मशाले जहां पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय रही। आज का आखिरी गीत फिल्म पाकीजा से, आवाज है लता मंगेशकर की।

इसी के साथ कलाकार बेमिसाल का आज का सफर पूरा होता है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। कुछ ही देर में आप सुन सकते हैं उर्दू में खबरें।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का 21वीं सदी का काम करने का माहौल अवाम नवाज, पहले से सरगर्म और अच्छी हुक्मरानी के उसूल पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने यूपीएससी के 100 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत की। सरकार ने डीलरों के लिए शक्कर का स्टॉक रखने की मुद्दत कम करके 15 दिन कर दी है, ताकि जखीरा अंदोजी की रोकथाम की जा सके और त्यौहार के दिनों में सारिफिन के लिए शक्कर की बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वसाइल को मुअस्सर अंदाज से भरुए कार्ड लाने की खातिर दिफाई बंदोबस्त के लिए मरबूत माली निजाम पर जोर दिया है। कॉमर्स और सनत महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने G20 के वज़राए तिजारत की मीटिंग में खुराक की यकीनी फराहमी और इश्तराक की जरूरत उजागर की है। उन्होंने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारत के समझौते की पेशरफ्त का जायजा लिया। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद सूबों में पाकिस्तान के फजाई हमलों में 9 आम शहरी मारे गए हैं और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कश्तीरानी में चांदी का पहला तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के 100 साल के सफर के

0: दौरान नस्लें, हुकूमतें, टेक्नोलॉजी और निसाब तब्दील हुए हैं, लेकिन इस इदारे पर लोगों का एतमाद आज भी उसी तरह कायम है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी की सदसाला तकरीबात से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने सरकारी सर्विसेज में ऐसे नौजवानों को लाए जाने पर जोर दिया जो सरकारी ओहदों के हुसूल के बजाय अवाम की खिदमत के जज्बे से सरकारी मुलाजिमत इख्तियार करें।
1: हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
0: उन्होंने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत काम के एक नए कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसका बुनियादी उसूल अवाम दोस्त, निहायत सरगर्म और बेहतर हुक्मरानी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: वजीर आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत का मंत्र है नागरिक देवो भवा, यानी शहरी ही सबसे अहम है और शहरियों की खिदमत सरकार की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस तर्ज हुक्मरानी की जरूरत है, उसे बड़ी हद तक यूपीएससी और रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे इदारों के जरिए यकीनी बनाया जा सकेगा। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर मुमलिकत डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 बरस के दौरान कई अहम संगे मील तय किए हैं और इसमें कई नए पहलू शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए की जाने वाली सरकारी तकर्ररियों में इजाफा हुआ है, जबकि भर्ती के निजाम में शफाफियत भी बेहतर हुई है, जिसके नतीजे में अवाम का एतमाद मजीद मजबूत हुआ है। यूपीएससी के चेयरपर्सन डॉ अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से मुल्क की नौजवान नस्लें मुल्क की खिदमत के ख्वाब लेकर कमीशन के पास आती रही हैं और यूपीएससी ने इस बात को यकीनी बनाया है कि उम्मीदवारों को सिर्फ काबिलियत की बुनियाद पर ही परखा जाए। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी के 100 साल मुकम्मल होने पर यादगारी सिक्का और यादगारी डाक टिकट जारी किया और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया किताब का भी इजरा किया। सरकार ने डीलरों के लिए शक्कर का स्टॉक रखने की मुद्दत कम करके 15 दिन कर दी है और स्टॉक रखने की हद 1000 क्विंटल मुकर्रर की है। इसका इतलाक इस महीने की 15 तारीख से होगा और ये नवंबर तक नाफिज रहेगी। सारिफिन के उमूर की वजारत ने कहा है कि सरकार ने शक्कर का स्टॉक रखने के जाब्तों पर नजरसानी की है ताकि जखीरा अंदोजी की रोकथाम की जा सके और त्यौहार के दिनों में सारिफिन के लिए शक्कर की बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत मुसल्ला अफवाज को मजबूत करने पर मखसूस तवज्जो दे रही है। आज नई दिल्ली में दिफाई अकाउंट्स के दिन के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि अगर मुआशी निजाम को भी मजबूत कर दिया जाए तो इससे पूरा दिफाई इंतजाम और भी मुअसर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिफाई अकाउंट्स का महकमा पूरी वजारत दिफा को जोड़ता है और ये दिफाई निजाम की बुनियाद है। जनाब सिंह ने महकमे से अपील की कि कौमी और बैनुल अक्वामी सतह पर मियारी ऑडिटिंग में बेहतरीन इकदामात को अपनाया जाए। जनाब सिंह ने बताया कि गुज़श्ता माली साल में अखराजात का इंदिराज तकरीबन 100% रहा। उन्होंने मजीद कहा कि ये हुसूलियाबी एक संगे मील की हैसियत रखती है। भारत ने खुराक की यकीनी फराहमी के लिए खुराक को आलाए कार के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ खबरदार किया है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने यह बात अमरीका के मिलवॉकी में G20 वजराए तिजारत की मीटिंग के इजलास के दौरान कही। जनाब गोयल ने उजागर किया कि मुश्तरका मकसद ये होना चाहिए कि खुराक की यकीनी फराहमी इस्तेहकाम और तआवुन का जरिया बनी रहे। वजीर तिजारत ने भारत यूरोप यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत और इसके निफाज की जानिब पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने G20 वजराए तिजारत की मीटिंग के मौके पर तिजारत और इक्तिसादी सिक्योरिटी के यूरोपीय कमिश्नर के साथ बातचीत की। सऊदी अरब के हुकाम ने ओमान से ताल्लुक रखने वाले उस कोपायलट को गिरफ्तार कर लिया है जिसने दुबई से इसराइल के शहर तेल अबीब जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज के कैप्टन को चाकू मारकर

0: में करने के बाद हवाई जहाज को गिराने की कोशिश की थी। ओमान के कोपायलट ने जहाज के कैप्टन पर चाकू से हमला कर दिया। दो मिनट में यह तैयारा तकरीबन 17,400 फीट नीचे आ गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कैप्टन स्मिट माछर की तारीफ की और कहा कि मुल्क को उन पर बेहद फख्र है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर मुर्मू ने कहा कि मुश्किल वक्त में उनके गैर मामूली हौसले और हाजिर दिमागी ने सभी को मुतासिर किया है। उन्होंने उनकी जल्द सेहतयाबी और अच्छी सेहत के लिए दुआ की और उनके गैर मामूली जज्बे को सलाम पेश किया। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि शदीद खतरे के दौरान कैप्टन स्मिट की गैर मामूली बहादुरी और हाजिर दिमागी तारीफ और तहसीन की मुस्तहिक है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंतहाई संगीन खतरे और शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद कैप्टन स्मिट ने दूसरों की जान बचाने के लिए बेपनाह हौसले और गैर मामूली अज़्म का मुजाहिरा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये मुसलसल आज भी जारी है। आज हम इस खसूसी सीरीज में इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि कैसे असम में ब्रह्मपुत्र दरिया पर बोगीबील पुल की तकमील से लोगों की जिंदगी में तब्दीली आई है।
1: ब्रह्मपुत्र दरिया पर तामीर शुदा बोगीबील दरिया शुमाली किनारे को जनूबी किनारे से जोड़ता है। साल 2018 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से इस पुल के इफ्तिताह के बाद आसाम के नकलो हमल के निजाम को नई तहरीक मिली। 2018 में इस पुल का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने इसे खित्ते के अवाम के लिए लाइफ लाइन से ताबीर किया था। आसाम से राकेश डोली की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असदुल्ला।
0: तालिबान के तर्जुमान जबीउल्ला मुजाहिद के मुताबिक अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद सूबों में पाकिस्तान के फजाई हमलों में कम से कम 9 अफगान शहरियों की मौत हो गई जबकि 11 दीगर जख्मी हो गए। इनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कल हुए हमलों में कुनार के शल्तान जिले और हेलमंद के गार्मसेर जिले में 3 मकान तबाह हो गए। ये ताजा हमले अफगानिस्तान के मुतअद्दिद सूबों में पाकिस्तान के फजाई हमलों में तेजी आने के दौरान किए गए। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कश्तीरानी में चांदी का पहला तमगा जीता है। मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरीसिनकल नोबल ने छोटी कश्ती के मुकाबले में आज चांदी का तमगा जीता। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का 21वीं सदी का काम करने का माहौल अवाम नवाज पहले से सरगर्म और अच्छी हुक्मरानी के उसूल पर मबनी है। वजीर आजम ने यूपीएससी के 100 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत की। सरकार ने डीलरों के लिए शक्कर का स्टॉक रखने की मुद्दत कम करके 15 दिन कर दी है ताकि जखीरा अंदोजी की रोकथाम की जा सके और त्यौहार के दिनों में सारिफिन के लिए शक्कर की बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वसाइल को मुअस्सर अंदाज से बरूए कार लाने की खातिर दिफाई बंदोबस्त के लिए मरबूत माली निजाम पर जोर दिया है। कॉमर्स और सनत महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने G20 के वज़राए तिजारत की मीटिंग में खुराक की यकीनी फराहमी और इश्तराक की जरूरत उजागर की है। और जापान में जारी एशिया खेलों में भारत ने कश्तीरानी में चांदी का पहला तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's 21st century work culture rooted in pro-people, proactive and good governance. Addresses UPSC centenary celebrations in New Delhi. Government cuts sugar stock holding period of dealers to 15 days to check hoarding and other malpractices. Defence Minister Rajnath Singh emphasizes integrated financial systems for defence management and resource utilization. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal calls for food security and cooperation at G20 Trade Ministers meeting, reviews India-EU FTA progress. Pakistan's airstrikes kill 9 civilians in Afghanistan's Kunar and Helmand provinces. And in Asian Games 2026, India bags first sailing silver medal, taking the overall tally to 63, including 10 gold. Prime Minister Narendra Modi has said the country is moving rapidly on the reform express, and the institutions that conduct examinations

0: Minister Amit Shah to resolve the long-pending Mahanadi water dispute between Chhattisgarh and Odisha. More from our correspondent.
1: The dispute over sharing of Mahanadi waters between Chhattisgarh and Odisha has remained unresolved for several years. Odisha had requested the central government in November 2016 to set up a tribunal to resolve the dispute. After talks failed to resolve the issue, the Mahanadi Water Disputes Tribunal was constituted in March 2018. Odisha says that water projects being built in the upper reaches of the Mahanadi in Chhattisgarh affect the flow of water to Odisha during the non-monsoon season. Chhattisgarh, on the other hand, has maintained that it needs to use its share of water for irrigation, industrial and domestic needs. Both states have given a written assurance to the Central Water Commission that any decision taken by the commission in the larger interest of both states will be acceptable to them. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
0: At least 9 Afghan civilians, including women and children, were killed and 11 others injured in Pakistani airstrikes on civilian homes in Afghanistan's Kunar and Helmand provinces. According to Taliban spokesperson Zabiullah Mujahid, the strikes also destroyed 3 residences in Sultan district of Kunar and Garmsir district of Helmand. Condemning the latest strikes as an act of aggression, Mujahid accused Pakistan of using attacks on Afghanistan to divert attention from domestic political and economic problems. At the Asian Games 2026, today India opened its sailing medal account as Manu Francis and Prince Kurisinkal Noble secured silver in the men's skiff competition today, finishing behind China after 9 races. Indian compound archer Ganesh Maniratnam Tirumuru produced a commanding performance to win the men's individual bronze medal. Ganesh, who was a part of the gold-winning men's team yesterday, defeated Vietnam's Khong Duc Thanh in the bronze medal playoff after bowling out of individual gold contention with a semi-final loss. In squash, India settled for a bronze medal after losing 1-2 to Hong Kong in the women's team semi-final. India were assured of a medal in the Asian Games Sepak Takraw men's quadrant competition after the team entered the semi-finals with a 2-1 win over Myanmar. India's overall tally has reached 63, including 10 gold, 22 silver and 31 bronze. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's 21st century work culture rooted in pro-people, proactive and good governance addresses UPSC centenary celebrations in New Delhi. Government cuts sugar stock holding period of dealers to 15 days to check hoarding and other malpractices. Defence Minister Rajnath Singh emphasises integrated financial systems for defence management and resource utilisation. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal calls for food security and cooperation at G20 Trade Ministers meeting, reviews India-EU FTA progress, and in Asian Games 2026, India bags first sailing silver medal, taking overall tally to 63, including 10 gold. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा सहयोग का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की। पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता, 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
3: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
3: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवभव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने ये पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
4: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए। यह तभी संभव है।
2: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद

0: बाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
3: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
1: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
4: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा और और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद

0: में एनडीए सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करार दिया था।
1: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाई और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
0: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में 2 दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसेर जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता। जापान में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों की चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

फिल्म श्री 420 का ये बेहद लोकप्रिय गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। इस फिल्म का जो एक इस गीत का जो एक सीन था, आखिरी जो पैरा है, हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियां, इस सीन में तीन बच्चे दिखाए गए हैं जो कि रेनकोट पकड़ के और पहन के और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बारिश में चल रहे हैं। और ये बच्चे जो थे ये और कोई नहीं, राज कपूर के खुद के बच्चे थे। 7 साल के रणधीर कपूर, 6 साल की रितु नंदा और सबसे छोटे 2 साल के ऋषि कपूर। राज कपूर इस सीन को बहुत खास तरीके से फिल्माना चाहते थे, लेकिन छोटे से चिंटू यानी ऋषि कपूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते थे। तब नरगिस ने स्थिति को संभाला। उन्होंने ऋषि कपूर से कहा कि अगर वो अपने भाई बहन का हाथ पकड़कर सीधे चलते जाएंगे तो वो उन्हें एक बड़ी सी चॉकलेट देंगी। और इस तरह ये कहने के बाद ये जो सीन था ये एक ही शॉट में ओके हो गया। ऋषि कपूर पर फिल्माया अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म ये वादा रहा से। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की।

1974 में जब ऋषि कपूर की फिल्म जहरीला इंसान बन रही थी तो आर डी बर्मन इस फिल्म के संगीतकार थे और मुख्य गायक थे पंचम दा के फेवरेट किशोर कुमार। जहरीला इंसान मुख्य नायक के तौर पर ऋषि कपूर की दूसरी फिल्म थी। उनकी जो पहली फिल्म थी बॉबी, उसके जितने भी गाने थे वो शैलेंद्र सिंह ने गाए थे और सभी गाने बहुत पॉपुलर हुए थे, इसलिए ऋषि कपूर चाहते थे कि उनकी जो दूसरी फिल्म है उसमें जो उनके गीत हैं वो भी या तो शैलेंद्र सिंह या कोई भी नया कोई यंग गायक गाए जो कि उनके उनके फेस पे सूट करे जिसकी आवाज़। तो ये बात लेकर वो गए प्रोड्यूसर के पास, जहरीला इंसान फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने प्रोड्यूसर ने कहा कि नहीं भाई ये तो पंचम दा का डिपार्टमेंट है, तो उनका जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा। और इस तरह ऋषि कपूर की कई कोशिशों के बावजूद इस फिल्म के जो मुख्य गायक थे वो किशोर कुमार ही रहे। और जब इस फिल्म के गीत रिलीज हुए तो इस फिल्म के गीत बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए, खासकर एक गीत ओ हंसिनी। और उसके बाद भी ऋषि कपूर के लिए किशोर कुमार ने बहुत सारे लोकप्रिय गीत गाए। अगर काउंट करें तो शायद उनके जो सबसे लोकप्रिय गीत हैं ऋषि कपूर के सबसे ज़्यादा, उनमें सबसे ज़्यादा गीत किशोर कुमार ने ही गाए हैं। तो फिलहाल अगला गीत आपको इसी फिल्म से यानी जहरीला इंसान से सुनाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने गीत सुना देवानंद की बेहद लोकप्रिय फिल्म जूल थीफ से। और अब बात करते हैं देवानंद की एक और कल्ट क्लासिक गाइड की। जिन दिनों ये फिल्म बन रही थी तब डायरेक्टर विजय आनंद ने एसडी बर्मन और शैलेंद्र को गाने की सिचुएशन समझाई और अपने घर आ गए। कुछ घंटे बाद एसडी बर्मन का फोन आया कि आप आ जाइए, मुखड़ा तैयार हो गया है। ये मुखड़ा विजय आनंद को बहुत पसंद आया। अब बात आई अंतरा लिखने की। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरे, कई दिन गुजर गए, लेकिन गीत आगे ही नहीं बढ़ पाया। जब विजय आनंद ने शैलेंद्र से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये गीत आगे क्या लिखूं, कैसे इसको आगे बढ़ाऊं। तब विजय आनंद ने उनसे कहा कि आपको बस ये देखना है, ये लिखना है कि नायिका को एक साथ ही जीने की तमन्ना और मरने का इरादा क्यों है। बस ये कहते ही शैलेंद्र को आगे के बोल सूझ गए और ये गीत पूरा हो गया। लेकिन इस गीत के लिए अभी लंबा सफर तय करना था। एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने कहा था कि उन्हें ये गीत कुछ खास पसंद नहीं था और देवानंद भी इस गीत को फिल्म में रखने के पक्षधर नहीं थे। लेकिन विजय आनंद ने देव साहब से कहा कि आप एक बार इसकी शूटिंग हो जाने दीजिए, अगर उसके बाद भी आपको ये गीत नहीं पसंद आएगा तो आप इसे हटा दीजिएगा। लेकिन जब ये गीत पूरा हुआ, इसकी शूटिंग पूरी हुई, तो देवानंद साहब को भी ये गीत बहुत पसंद आया और ये गीत फाइनली फिल्म में रहा। और न सिर्फ रहा, आगे चलकर यही गीत इस फिल्म का सबसे ज्यादा पॉपुलर गीत बन गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बल के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश

0: और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने रक्षा लेखा विभाग की कई सूचना प्रौद्योगिकी पहलों की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य रक्षा मंत्रालय के भीतर वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल प्रणालियों को मजबूत करना है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है और इनके और कम होने की उम्मीद है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है, साथ ही आम जनता में स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान 17 सितंबर से शुरू हुआ, जो 17 अक्टूबर तक चलेगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजधानी के सफदरजंग मकबरे में आयोजित अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि इसे प्रतिदिन की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
1: 2017 से पहले भी रेलवे स्टेशन देखते थे, आज बहुत से लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे घूमने जाते हैं। तो ये जो वातावरण चेंज हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, साफ सफाई की प्रति सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान रखता है भारत में, तो ये भारत के बच्चे ध्यान रखते हैं।
0: भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। जापान एशियाई खेलों में भारत पाकिस्तान को हराकर हॉकी के फाइनल में पहुंच गया है। आखिरी मिनट में अभिषेक के गोल की मदद से भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से शिकस्त दी। भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन के क्षेत्र में आज अपना पहला पदक जीता। इन खेलों में भारत पुरुष क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. Addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today, Mr. Modi stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service. He said today, 21st century India is moving forward with a new work culture and its core principle is pro-people, proactive, good governance.
3: हमारी सिविल सर्विसेज से भी नए बदलाव की मांग करती है, इसलिए हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
2: The government has reduced the stock holding period for sugar dealers to 15 days and fixed the stock holding limit at 1,000 quintals with effect from the 15th of this month. It will remain effective till November this year. The Consumer Affairs Ministry said the government has revised the sugar stock holding norms to prevent hoarding and ensure smooth supply to consumers during the festive season. Under the revised provisions, the stock holding limit for Kolkata and its extended metropolitan areas and Assam have been fixed at 2,000 quintals. Defence Minister Rajnath Singh has said the same spirit of synergy and integration currently being emphasized

खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, 1st of October 2026। मन भावन सुन रहे हैं आप फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें जल्दी से ईमेल कीजिए fmgoldairdelhi@gmail.com पर। करते हैं ना हमको प्यार, तो प्यार का प्रूफ है इंतजार। हाँ जी, इस गीत के उस पार आपकी अटेंडेंस ली जाएगी, आपके नाम बोले जाएंगे और सबसे ज्यादा जरूरी, आपके पसंदीदा गाने सुनाए जाएंगे। तो आइए आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का। आज आपके साथ मन भावन में है हम रूमी मलिक।

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल एक ऐसा मंच जहां आज भी हमारे पुराने लिस्टनर्स के नाम लिए जाते हैं, उनकी पसंद के गीत सुनाए जाते हैं. क्यों नहीं, ओल्ड इज गोल्ड. देखो अब हम ये कह सकते हैं वी ग्रू ओल्ड टुगेदर, पर ये हमें ये कहना चाहिए वी ग्रू गोल्ड टुगेदर, है ना. आपकी बारी आ गई अटेंडेंस की. आफ्ताब अंसारी ये सुनना चाहते हैं, खानदान फिल्म का गाना ओ बल्लो सोच के मिल जाना के मिले जाना. अच्छा जी, आफ्ताब जी के साथ कौन है, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना, आलिया, रियाज और आफ्ताब. पर अंसारी साहब मैं बाकी सबके नाम ले लूँ, अटेंडेंस तो लेनी बनती है ना, सबके नाम ले लेती हूँ. सतीश अनेजा जी साथ में, नवी हसन, मूसा शेख जी, हरजिंदर सिंह भाटिया, मास्टर खिल्लू परवेज, ताज मोहम्मद, प्रवीण रानपरा, पांडू चंदन, आगे बढ़ो, नीटू मल्होत्रा जी, अक्रम हुसैन प्रिंस, मोहम्मद सईद अब्बासी साहब, आगे बढ़े देखें, अफरोज शेख जी, हरजिंदर शिंडा, ताज मोहम्मद, रिपीट मेल्स मत भेजा करो यार. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, और इतने बोधराज खोरवाल जी, हाँ सारे के सारे है ना, दो द रिपीट ऑफेंडर्स, गोविंद वैष्णव जी, मोहिन मोहसिन रजा, बोधराज खोरवाल जी. आगे देखें, गोविंद वैष्णव अपने ना फ्रेंड्स को भी एनकरेज किया कीजिए, बाकी लोगों को भी. मोहसिन रजा साहब ठीक है, शेख मूसा, शमसुल कमर राही जी भी साथ में हैं, हीरा मणि वर्मा जी, चंदू कुलकर्णी, शेख मूसा, और देखते हैं, एक मिनट देखें आगे. So many of you have messaged, which is very nice, very very nice. Anas Rehan, Sudhakar Jadhav, ठीक है. तो अब आगे बढ़ते हैं, अनिल कुमार गभांकर, जय, सुधाकर जाधव, गोविंद वैष्णव जी ने तो खैर बहुत सारे मेल्स भेजे हैं, आरहान अहमद, अब ना नंबर कटेंगे. अब जितने ज्यादा मेल्स भेजे ना, ये रिपीट मेल्स भेजे उनके नाम नहीं पढ़ूंगी, ठीक है ना, पनिशमेंट इनफ. राजकुमार डूडी, धर्मेंद्र छीपा जी, हु एल्स देखिए, भाई मूसा शेख हो गए, निसार अली ठीक है, सुरेश राठौड़.

देखो क्या होता है, जो लोग एक एक मेल भेजते हैं ना, वो बेचारे उनके नाम फिर रह जाते हैं अक्रम हुसैन प्रिंस. ऐसा हमको नहीं करना चाहिए ना, टू इंक्लूड एवरीबडी. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आखिरकार हमारा नारा है. दिग्दर्शन गौर जी भी साथ में हैं, शेख मूसा, मुकेश कश्यप, दिलीप मालाकर. सच ए लॉन्ग लिस्ट. ठीक है, तो अब क्या कह रहे थे आप, ओ बल्लो सोच के आपका गाना सुनाया अंसारी साहब ने जो फरमाइश की थी. ठीक है,

FM Gold. ओ बल्लू हो आई बल्लू मेले में. मुझे तो मेले बहुत अच्छे लगते हैं सचमुच में. दिल्ली हाट जाना इतना अच्छा लगता है, जितनी प्रदर्शनियां लगती हैं इतनी सारी. कनॉट प्लेस में भी जहाँ पे हनुमान मंदिर है हमारे दिल्ली में, वहाँ पे इतने सारे वीवर्स, ट्रेडर्स और पॉटरी मेकर, क्या क्या कहाँ कहाँ से लोग पूरे भारतवर्ष से आते हैं. और इतना प्रोत्साहन दिया है मोदी जी ने इन सभी कलाकारों को.

शिल्पियों को इतने ज्यादा मेले लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मेले में जाना। अच्छा लगा मेले वाला गाना। अब अनिल कुमार गवांकर जी क्या कह रहे हैं, आदरणीय आपको प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। ये मेहरनगर उमर खेड़ महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। अभिजीत गवांकर, सरिता, प्रणीता, टुक टुक, एकांत, सुमित और कुमारी ध्वनि, ये सब सुनना चाहते हैं फिल्म अभिमान का गीत, तेरी बिंदिया रे रे आए हाय, सुन ले।

0: FM Gold. जिन्होंने खाए होंगे पूरी छोले नाश्ते खाने में लंच में, वो तो सो रहे होंगे इस गीत को सुन के. नहीं नहीं, इसीलिए तो मैं कभी भी जब कार्यक्रम करना होता तो खाना नहीं खाती. सच्ची में सच्ची 4:30 बजे जो है लंच करती हूँ. तुमसे अच्छा कौन है? आप ये कहना चाह रहे हो, आप कहना चाह रहे हो, आप कहना चाह रहे हो, तो कह डालो. धर्मेंद्र छिपा जी ने ये गीत सुनना है. तुमसे अच्छा कौन है? भोपाल का राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, ईशान और पूजा परिहार सुनना चाहते हैं ये गीत. तुमसे अच्छा कौन है? सुनो जिगर ये जान लो.
1: कभी हमने नहीं

होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा। कितना बढ़िया गाना, नाचने गाने को दिल करेगा। होली चौक उत्तम नगर से कौन लिख रहे हैं? जयराम खोरवाल जी। सचिन अमन दीपांशु ये सुनना चाहते हैं गीत, चांद सी महबूबा हो मेरी, हाय ये कैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। क्या हिमालय की गोद में का गीत बोला है जयराम जी है? वो वाला गीत नहीं कह सकते थे, कंकरिया मार के जगाया, कल तू मेरे सपने में आया, बाल माँ तू बड़ा वो है, श्रोताओं तुम बड़े वो हो। आओ जी आप ही के पसंद का गीत सुनते हैं, चांद सी महबूबा। कहाँ गया लगाया था, ये रहा गया, आ गया गीत, सुनो जी।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड आप सुन रहे हैं मन भावन रिक्वेस्ट शो फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। चंदू कुलकर्णी जी, आपने मुझे कहा जीवन ज्योति फिल्म से गीत सुनना है, आपने तो बड़ा मौज मस्ती वाला गीत मांगा, लेकिन पता है मेरे सिस्टम में इस फिल्म का सिर्फ एक ही गीत है, और पता है इस गीत का नाम क्या है? सो जा रे सो जा। नहीं, मुझे सुनाना नहीं है, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा चुनौती भरा शो है, जी हाँ, जिसका कार्यक्रम 3 से 4 बजे के बीच में हो, उस आरजे की सबसे बड़ी चुनौती है आपको जगाए रखना, आपको हंसाए रखना, आपको फंसाए रखना। मन भावन सुन रहे हैं आप, आपके साथ है हम रूमी मलिक, और हमारे साथ कौन है? हमारे साथ स्टेशन रोड जमशेदपुर से है हरजिंदर सिंह भाटिया जी, और ये हमें बोल रहे हैं कि आज एसटी बर्मन साहब की जन्म जयंती है। हाँ बिल्कुल है, हैप्पी बर्थडे टू द ग्रेट ग्रेट द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट्स एसटी बर्मन साहब, और ये सुनना चाहते हैं गीत जुल्दी फिल्म से, होठों में ऐसी बात मैं चुरा के चली आई।

नमस्ते, आप सुन रहे हैं मन भावन आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपके साथ हैं हम रूमी मलिक, हमारे साथ हैं बबलेश पवार, जो हमें बबलेश जी कहाँ से लिख रहे हो आप? बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी मनीष खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा और रामदेवड़ा से दिनेश चौहान, सारे के सारे साथ में सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने लिखा है, प्रस्तुत करता रूमी मलिक जी नमस्कार, आपको भी हमें शामिल नहीं करती हो, आप इतने प्यारे आरजे हो, आप इतना प्यारा प्रोग्राम पेश करते हो, फिर भी हम उदास हैं। नहीं बबलेश जी, ऐसे मत बोलिए, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर किसी के चेहरे पे मैं खुशी नहीं ला सकती तो मैं कभी किसी को डेलिबरेटली तंग नहीं करती। बबलेश जी ऐसा बिल्कुल मत कहिए मेरे लिए। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? बन फूल फिल्म का, 1971 में बनी थी। अच्छा गीत कौन सा है? मैं जहां चला जाऊं बाहर चली आए, आइए सुनते हैं ये गीत। हैप्पी बबलेश जी, गीत कहाँ गया? हाय गीत कहाँ गया? मैं जहाँ चला जाऊँ गीत ही चला गया, नहीं गीत आ गया।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिव्येंदु संस्कृति और पौरुष सुनना चाहते हैं सदाबहार गीत आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं फ्रॉम फिल्म किस्मत। आइए सुनते हैं ये गीत।

ये हमें बबलू गजनेजा जी ने बोला है कि गीत सुनाइए आप हमें, कौन सा करवटे बदलते रहे सारी रात हम, अभी दोपहर में कैसे सुना दूं बताओ ये गीत है। और दिग्दर्शन गौर जी और कविता गौर जी ने और मास्टर खिल्लू परवेज जी ने एक ही गीत कहा है कि प्रेम रोग से कोई गीत सुना दीजिए, तो हम सुनाते हैं वो गीत रहेगा इस बार के मन भावन के अंक का आखिरी गीत। जुड़े रहिए आकाशवाणी FM गोल 100.1 MHz, आपके साथ हम रूमी मलिक और गाते गुनगुनाते भी साथ रहेंगे आपके, तो सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल 100.1 MHz खरा सोना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बल के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में आज रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने रक्षा लेखा विभाग की कई सूचना प्रौद्योगिकी पहलों की शुरूआत की। इसका उद्देश्य रक्षा मंत्रालय के भीतर वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल प्रणालियों को मजबूत करना है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है।

0: भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली के सफदरजंग मकबरे में आयोजित अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं बल्कि प्रतिदिन की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
1: 2017 से पहले भी रेलवे स्टेशन देखते थे, आज बहुत से लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे घूमने जाते हैं। तो ये जो वातावरण चेंज हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, साफ सफाई के प्रति सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान रखता है भारत में, तो ये भारत के बच्चे ध्यान रखते हैं।
0: राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 2026 आज नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मनाया गया। इस अवसर पर नियमित, स्वैच्छिक और बिना किसी पारिश्रमिक के रक्तदान की संस्कृति को मजबूत करने पर जोर दिया गया। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉ एम श्रीनिवास ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन में आज अपना पहला पदक जीता। पुरुषों की स्क्विफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत पदक जीता। नौ रेसों में फ्रांसिस और नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत पदक तालिका में 63 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. The Prime Minister was addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. He said today 21st century India is moving forward with a new work culture and its core principle is pro-people, proactive, good governance. He stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service.
3: हमारी सिविल सर्विसेज से भी नए बदलाव की मांग करती है, इसलिए हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
2: The government has reduced the stock holding period for sugar dealers to 15 days and fixed the stock holding limit at 1,000 quintals with effect from 15th of this month. It will remain effective till November this year. Under the revised provisions, the stock holding limit for Kolkata and its extended metropolitan areas and Assam have been fixed at 2,000 quintals. Indian security agencies have secured the deportation of Harvinder Kumar alias Sonu Barnala, who is linked to the murder of Vishwa Hindu Parishad leader Vikas Prabhakar in Nangal, Punjab. The Home Affairs Ministry informed that the VHP leader was killed by operatives of the terror organization Babbar Khalsa International in an attempt to create communal unrest at the behest of his Pakistan-based chief Wadhwa Singh alias Babbar. UAE-based Sonu Barnala was a fugitive against whom a red notice was issued. Following a request from Indian agencies, the UAE authorities handed him over to India. Defence Minister Rajnath Singh has said that the same spirit of synergy and integration currently been emphasised among the three armed forces needs to be implemented within the financial framework of the Defence Accounts Department. Speaking on Defence Accounts Day in New Delhi today, Mr. Singh said if the financial system

0: 12 technical officers in various disciplines including science communication, civil engineering, chemical engineering, MBA, biochemistry, microbiology, chemistry, geology and geoinformatics. The posts are in pay level 6 and level 7 as per the 7th CPC with approximate monthly emoluments of 69,480 to 86,580. The maximum age is 18 years with upper age limit of 28 years for technical assistant and 30 years for technical officer subject to applicable relaxations. Online applications closes on 15th October 2026. Detailed advertisement and online applications available under the HRD Recruitment Permanent Staff at www.neri.res.in. The Department of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, invites applications from eligible candidates for one post of Plant Protection Advisor, a General Central Service Group A gazetted non-ministerial post in the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad. The post is to be filled on deputation including short-term contract basis and carries pay level 13A as per the 7 CPC. Eligible applicants may belong to offices under the central or state governments, union territories, universities, recognized research institutions, public sector undertakings, semi-government, autonomous or statutory organizations. The appointment is being made on urgent basis. Applications in duplicate in the prescribed pro forma must be sent through proper channel and should be forwarded to the Under Secretary, PP Establishment. Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhavan, New Delhi, within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Candidates can obtain complete details regarding eligibility, qualifications, experience and the application format from the Department of Agriculture and Farmers Welfare and Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage. For details, kindly look up www.agriwelfare.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड में उप प्रबंधक का एक, सहायक प्रबंधक बीआईएस ग्रेड M2 का एक और सहायक प्रबंधक फायर एवं सेफ्टी ग्रेड M2 का एक पद रिक्त है। इसे भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.tngclonline.com। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के स्वायत्त निकाय दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में ये पद रिक्त हैं उपनिदेशक प्रशासनिक एवं लेखा, उपनिदेशक कार्यक्रम, सहायक निदेशक कार्यक्रम, सहायक निदेशक प्रशासनिक एवं लेखा, आशुलिपिक ग्रेड 1, कार्यक्रम अधिशासी, सहायक, सहायक इंजीनियर सिविल, सहायक इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, प्रलेखन अधिकारी, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, सहायक कार्यक्रम अधिशासी, प्रदर्शनी सहायक, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक ग्रेड 2। विवरण और आवेदन पत्र वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। वेबसाइट का पता है szccindia.org। वेबसाइट का पता फिर से सुनिए szccindia.org। इसके अलावा 19 से 25 सितंबर 2026 के रोजगार समाचार पत्र में भी आप आवश्यक जानकारी देख सकते हैं। श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कृषि विज्ञान केंद्र सूर्यपेट जिला तेलंगाना में वरिष्ठ वैज्ञानिक और विषय मामला विशेषज्ञ पशुधन उत्पादन का एक एक पद रिक्त है। इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट www.saird.org।

0: इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इंजीनियर रिक्तियों की संख्या 12, उपप्रबंधक रिक्तियों की संख्या 38, प्रबंधक रिक्तियों की संख्या 9 और वरिष्ठ प्रबंधक रिक्तियों की संख्या 2। विस्तृत विज्ञापन के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट देख सकते हैं आप। वेबसाइट का पता है www.engineersindia.com। engineersindia.com पर जाकर आप करियर्स और उसके बाद ओवरव्यू और फिर अपॉर्चुनिटीज को क्लिक करें तो आपको आवश्यक जानकारी मिल जाएगी। महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन में सचिव का एक पद रिक्त है। इस पद को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.dohe-education.gov.in। सैनिक स्कूल मैनपुरी उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक अंग्रेजी, टीजीटी अंग्रेजी और काउंसलर के पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं सैनिक स्कूल मैनपुरी की आधिकारिक वेबसाइट अथवा आवश्यक जानकारी हासिल करने के लिए आप लिख सकते हैं इस पते पर recruitmentcells@gmail.com। रोजगार समाचार पत्र के 19 से 25 सितंबर 2026 के अंक में भी उपलब्ध है। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार श्रोताओं, जिंदगी की एक नई शाम में हम आ गए हैं न्यूज मैगजीन परिक्रमा का एक नया अंक लेकर। मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है आज हमारे लिए उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और करेंगे उन खास व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
4: Hello, Sarfarozi. Hello and a very warm welcome to all those tuned into the news magazine program Parikrama on 100.1 FM Gold. I'm Abhishek Mukhopadhyay and with me today is, of course, my co-host Sarfarozi. Well, listeners, he's considered as one of the greatest American authors simply because of his mastery of clear, plain style. His writing style was simple, precise and free of affectation. Secondly, he successfully bridged the gap between sophisticated adult literature and beloved children's classics. He was also a brilliant, sharp essayist for The New Yorker. And lastly, he had a rare gift of tackling heavy universal themes such as mortality, friendship, change, and the passage of time in a way that was gentle and deeply moving. Yes, and his iconic book, The Elements of Style, of which he was a co-author, is known for its brevity and directness, timeless practical advice, and a masterful final chapter penned by him. Yes, is none other than E.B. White, the great American children's author, essayist and humorist. And today we observe his death anniversary and we shall talk about him later in the program. But first of all, we begin with the news headlines at this hour.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया।
4: गवर्नमेंट कट शुगर स्टॉक होल्डिंग पीरियड ऑफ डीलर्स टू 15 डेज टू चेक होल्डिंग एंड अदर मैलप्रैक्टिसेस।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर।
4: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal calls for food security and cooperation at G20 Trade Ministers Meeting, reviews India-EU FTA progress.
3: और पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए।
4: Yes, and now listeners, it's time for a segment Dateline India, in which we take a look at the development.

0: developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about International Coffee Day and International Day of Older Persons. So to start off with the first topic of the day, that is the International Coffee Day. Well, Sir Ferozi, every cup of coffee has a story.
1: Ji.
0: A story that begins not in a cafe, not in a coffee machine, but deep in the soil. It begins with a farmer, a seed, the rain, the shade of a tree, and years of knowledge passed from one generation to another. From the plantations of the Western Ghats to cafes in Delhi, Bengaluru, Paris, and New York, coffee connects farms with markets and people with people. Coffee is one of the world's most widely traded tropical agricultural products and among the most consumed beverages. As many as 25 million farming households, largely in developing countries, are involved in coffee production, producing around 80% of the world's coffee. Brazil, Vietnam, and Colombia are the leading producers, while the European Union and the United States are among the largest importing and consuming markets. So, Sir Ferozi, let me ask you a question here. Did you have your cup of coffee today?
1: बिल्कुल अभिषेक, प्रोग्राम से जस्ट पहले ही मैंने कंज्यूम की ताकि एनर्जी रहे प्रोग्राम को करने के लिए. तो अभिषेक, इस ग्लोबल कॉफी की ग्लोबल कहानी में अपने श्रोताओं को बताते हैं कि भारत कहाँ आता है. हो सकता है कि भारत दुनिया भर में चावल, गेहूं, दालों, मसालों, चाय और कपास के लिए ज्यादा जाना जाता हो, लेकिन देश की खेतीबाड़ी में कॉफी की भी एक खास जगह है. भारतीय कॉफी मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी घाटों में, खासकर कर्नाटक, केरलम और तमिलनाडु में उगाई जाती है. इस इलाके के ऊंची पहाड़ी इलाके, बारिश, उपजाऊ मिट्टी और प्राकृतिक छाया कॉफी की खेती के लिए अच्छे हालात बनाते हैं. कर्नाटक देश का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है और इसके बाद नंबर आता है केरलम और तमिलनाडु का.
0: एंड कॉफी इज ट्रेडिशनली ग्रोन अंडर द शेड ऑफ ट्रीज विद अदर क्रॉप्स सच एज पेपर, कार्डमम, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस ग्रोन अलोंगसाइड और अराउंड द कॉफी प्लांट्स. एंड दिस मेक्स कॉफी कल्टीवेशन क्लोजली कनेक्टेड विद इंडियाज ब्रॉडर एग्रीकल्चरल पैटर्न, वेयर फार्मर्स ऑफन कंबाइन क्रॉप्स, डाइवर्सिफाई इनकम एंड मेक यूज ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लैंडस्केप. In many coffee growing areas, the plantation itself becomes an ecosystem. Tall shade trees protect coffee plants from excessive sunlight. The coffee plant grows beneath them. Pepper vines climb the trees, and other crops may occupy the surrounding land. But for the farmer, this is not just a method of cultivation. It is accumulated knowledge of soil, rainfall, shade, seasons, and markets.
1: और बात करें भारत में उगने वाली कॉफी की, तो यहाँ दो मुख्य कमर्शियल किस्में होती हैं, अरेबिका और रोबस्टा. अरेबिका आमतौर पर ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में होती है और अपने खास स्वाद और खुशबू के लिए जानी जाती है. रोबस्टा गर्म मौसम को बेहतर तरीके से झेल सकती है और इसका इस्तेमाल होता है बड़े पैमाने पर ब्लेंड और इंस्टेंट कॉफी बनाने में. भारतीय कॉफी अपनी खास प्रोसेसिंग परंपराओं के लिए भी जानी जाती है. इसका एक बेहतरीन उदाहरण है मॉनसून मालाबार, जो भारत के पश्चिमी तट से जुड़ी एक खास तरह की कॉफी है. इसमें हरे कॉफी बीन्स को मॉनसून की नमी के संपर्क में रखा जाता है और इससे इसमें खास तरह का स्वाद आ जाता है.
0: बट प्रोड्यूसिंग कॉफी इज ओनली द बिगिनिंग. आफ्टर हार्वेस्टिंग द कॉफी चेरीज हैव टू बी प्रोसेस्ड, ड्राइड, ग्रेडेड एंड ट्रांसपोर्टेड. फ्रॉम प्लांटेशंस कॉफी मूव्स थ्रू प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउसेस एंड पोर्ट्स बिफोर रीचिंग इंटरनेशनल मार्केट्स. एंड इंडियाज कॉफी इज कंज्यूम्ड बोथ एट होम एंड अब्रॉड. Indian coffee has established a presence in international markets, while a growing domestic cafe culture is bringing coffee to a new generation of Indian consumers. And there's an interesting contrast here. For generations, coffee has been an important part of everyday life in southern India. Today, coffee culture is spreading far beyond its traditional geography, from metropolitan cafes to small town coffee shops and home brewing.
1: बिल्कुल अभिषेक, कॉफी का एक कप देखने में बहुत ही साधारण लग सकता है, लेकिन इसके पीछे खेती, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, व्यापार और लोगों की मेहनत जुड़ी होती है. कॉफी असल में लोगों से जुड़ी हुई चीज है. दुनिया भर में लाखों किसान परिवार अपनी आजीविका के लिए कॉफी पर निर्भर होते हैं. उनके लिए बारिश में बदलाव, तापमान, कीड़े मकौड़े, बीमारियां, खेती की लागत और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव सीधे उनके परिवार की कमाई पर असर डाल सकता है. और भारत में भी कॉफी उगाने वाले किसान खेती के बदलते माहौल में काम करते हैं. इस वजह से टिकाऊ खेती, खेती के बेहतर तरीके, उत्पादकता, क्वालिटी में सुधार और बाजार तक पहुंच बहुत जरूरी हो गई है. ग्राहकों के लिए ये कहानी कॉफी चुनने से शुरू हो सकती है, लेकिन बात करें किसानों की तो ये कहानी उनके लिए बहुत पहले ही शुरू हो जाती है. जमीन तैयार करने, पौधों की देखभाल करने और फसल के कटने के इंतजार के साथ.
0: So the next time you hold a cup of coffee, think beyond the aroma.

0: Think of the hills of Karnataka, think of the plantations of Kerala and Tamil Nadu. Think of the shade trees, the monsoon rains, the workers who harvest the cherries and the farmers who cultivate them. And think of how an agricultural product grown in India's western ghats can travel across oceans and become part of someone's morning ritual thousands of kilometers away. So that concludes our first segment of in a Dateline section, and moving on to a second topic of the day, that is the International Day of Older Persons, Sir Firozi. Today the world is living longer, but the question before society is not simply how many years we live, it is how well we live those additional years. The United Nations is observing the 2026 International Day of Older Persons with the theme, The Age of Longevity, Rethinking Systems for Longer Lives. The theme calls for a fresh look at healthcare, social security, employment, housing, education, and human rights, so that longer lives can also mean healthier, more secure, and dignified lives.
1: बिल्कुल अभिषेक, और भारत में भी बुजुर्गों की बढ़ती आबादी कई चुनौतियां लेकर आ रही है. पीढ़ियों से परिवार ही बुजुर्गों के लिए सहारे का मुख्य जरिया रहा है, लेकिन शहरीकरण, पलायन, छोटे परिवार और बदलती जीवन शैली इस पारंपरिक सिस्टम को बदल रहे हैं, और इसके कारण कुछ बुजुर्ग आर्थिक असुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जबकि दूसरों के लिए इसका मतलब कुछ ऐसा हो सकता है जो आसानी से दिखाई नहीं देता. हम बात कर रहे हैं अकेलेपन की चुनौती की. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अकेलापन एक परेशान करने वाली भावना है. WHO का अनुमान है कि लगभग हर 10 में से एक बुजुर्ग अकेलापन महसूस करता है, जबकि लगभग हर 4 में से एक सामाजिक रूप से अलग थलग रहता है, और भारत में भी इस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है.
0: So imagine an older person living in a city. The children may be working in another city or another country. Neighbors may have changed. The workplace that once provided daily interaction is now a memory. Retirement may bring financial adjustments, but can also remove an important source of identity, routine and companionship. A phone may be in the hand, but meaningful conversation may be missing. And this is why combating loneliness requires more than telling older people to stay busy. It requires communities where older persons can meet people, participate, learn, work, volunteer, and remain connected.
1: और अभिषेक, बुढ़ापे का एक और अहम पहलू भी है. यह है सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार. भारत में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 लागू है. यह कानून माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण के लिए एक ढांचा तैयार करता है. सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में इस कानून के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुरक्षा की समीक्षा की है.
0: एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम नेग्लेक्ट. In cases concerning the Senior Citizens Act, the court has recognized that the statutory framework can empower authorities to protect the life and property of senior citizens. In a 2020 judgment, the Supreme Court considered the power of a tribunal under the Act to order eviction in appropriate circumstances where protection of a senior citizen's life and property required it. More recently, in September 2025, the Supreme Court reiterated that the law is a welfare legislation, and that its provisions should be interpreted to advance its protective purpose. These judgments highlight an important principle. The protection of older persons is not merely a matter of family goodwill, it is also supported by law.
1: और अभिषेक, आज का जो दिन है ये हमें ये समझने का अवसर देता है कि वृद्ध व्यक्ति परिवार पर बोझ नहीं, बल्कि परिवार और समाज की जीवित पूंजी है. इसलिए उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें उम्र बढ़ने का अर्थ निर्भरता और अकेलापन नहीं, बल्कि गरिमा, सुरक्षा, सक्रियता और अनुभव के सम्मान के साथ लंबा जीवन हो. यही बढ़ती हुई वैश्विक वृद्ध आबादी के लिए स्वस्थ और समावेशी समाज की दिशा है.
0: Loneliness and social isolation can affect both physical and mental health, quality of life and longevity. The United Nations message for 2026 is therefore especially relevant. Longer lives should not simply mean more years added to life. They should mean more healthy, productive, dignified and equitable years.
1: अभिषेक, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि आज के अंक में उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है.
0: The Union Public Service Commission UPSC today completed 100 years of its journey, marking a century of recruiting personnel for public service in the country. We have a report.
2: 100 साल, करोड़ों सपने,

0: वही है प्रतिभा की तलाश, निष्पक्षता का संकल्प और अडिग रहकर हर कर्तव्य का पालन।
1: कर्तव्य हमारे लिए विकल्प नहीं, संकल्प है। ये समय तेजी से बदलाव का समय है। आपकी भूमिका भी आपके अधिकारों से नहीं, आपके कर्तव्य और उनके पालन से तय होगी।
0: यूपीएससी 100 years of selecting India.
2: Addressing the centenary celebrations at Bharat Mandapam in New Delhi, Prime Minister Narendra Modi said that despite changes in the generations, governments, technology and examination syllabi, public trust in UPSC has remained unwavering. He stressed that examinations should follow the principle of time certainty, noting that even a delay of few months can cause difficulties for young aspirants. Prime Minister also added that India in 2047 will be very different from India of today. He said India will be more urban, the gap between villages and cities will be smaller, and the aspiration and expectations of citizens, especially youth, will be much higher. He said, the next 25 years will be extremely important for every Indian and for every institution in the country. He further added, the next generation of recruits will play an important role in building Vikasit Bharat, and emphasized the need to bring into public service young people that are driven by spirit of service rather than public office. The program marks the culmination of year-long celebrations that commenced on 1st of October last year, commemorating 100 years since the establishment of UPSC in 1926. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi released the UPSC Centenary Commemorative Coin and a commemorative stamp and a book titled 100 Landmark Judgments Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India. This is Jigyasa Pandey for Parikrama.
3: श्रोताओं, परभड़ी के वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय ने आधुनिक कृषि तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के नागर विमानन महानिदेशालय ने विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत हाल ही में 2036 तक दो प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता प्रदान की है।
4: ये इस विश्वविद्यालय का दूसरा ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। फसल संरक्षण में दवा का छिड़काव, उर्वरक प्रबंधन, फसल निरीक्षण, सर्वेक्षण, मैपिंग और प्रिसीजन फार्मिंग जैसे कार्यों में ड्रोन उपयोगी साबित हो रहे हैं। विश्वविद्यालय ने देश में पहला 180 दिन का कृषि ड्रोन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस पाठ्यक्रम की अब तक दो बैच पूरी हो चुकी है और दोनों बैच के विद्यार्थियों को 100% प्लेसमेंट मिला है। इसके साथ ही नया प्रशिक्षण केंद्र मराठवाड़ा के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में कृषि तकनीक और कुशल ड्रोन पायलट तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से मैं वैभवी जोशी।
3: भारत की ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन और समुद्री परिवहन को डी कार्बोनाइज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में शनिवार को गुजरात के कच्छ स्थित दीनदयाल पोर्ट पर 2300 करोड़ की लागत से 150 टन प्रतिदिन क्षमता वाले देश के पहले पोर्ट आधारित ई मेथनॉल प्लांट की आधारशिला रखी गई। आइए सुनते हैं भुज से हमारे संवाददाता परेश मारू की ये रिपोर्ट।
5: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने कच्छ के गांधीधाम स्थित दीनदयाल पोर्ट पर 2300 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाले 150 टीपीडी क्षमता के ई मिथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला और असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम से विकसित होने वाला यह संयंत्र भारत के ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन और ग्रीन शिपिंग की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय बंदरगाह, पोत वन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी उपस्थित रहे। प्रस्तावित प्लांट में प्रतिदिन 150 टन ग्रीन ईंधन का उत्पादन होगा। इससे समुद्री परिवहन में कार्बन उत्सर्जन कम करने और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है। परियोजना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 3500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है, जिससे स्थानीय युवाओं, तकनीकी विशेषज्ञों, लॉजिस्टिक्स, परिवहन और सप्लाई चेन से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यह परियोजना गुजरात की समुद्री क्षमता और असम की औद्योगिक विशेषज्ञता के समन्वय का उदाहरण है तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह परियोजना गुजरात और असम के औद्योगिक सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ग्रीन मिथेनॉल का उपयोग जहाजों के लिए स्वच्छ ईंधन के रूप में बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत को मैरीटाइम सेक्टर में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार

0: सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2047 तक भारत को दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग देशों में शामिल करने का रोड मैप तैयार किया गया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिप बिल्डिंग सिलसिले में हम चाहते हैं 2047 तक टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशन भारत बने, और इसके लिए हमारा जहाज निर्माण करने का लक्ष्य है 419 वेसल विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया।
0: यह परियोजना भारत को 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य तथा ग्रीन पोर्ट्स और टिकाऊ समुद्री परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक पहल के रूप में देखी जा रही है। परिक्रमा के लिए भुज से परेश मारू।
2: अभिषेक, आप अपने श्रोताओं को खेल के मैदान की भी हलचल दे देते हैं।
3: यस, एब्सोल्युटली। एंड एशियन गेम्स 2026 इन जापान, इंडिया ओपन इज सेलिंग मेडल अकाउंट एज मानु फ्रांसिस एंड प्रिंस कुरिसिन कार्ल नोबल सिक्योर्ड सिल्वर इन द मेन्स स्कीफ कॉम्पिटिशन टुडे, फिनिशिंग बिहाइंड चाइना आफ्टर 9 रेसेस। In hockey, Indian men's team defeated arch rivals Pakistan 4-3 to enter the final. Captain Harmanpreet converted 2 perfectly executed penalty corners in the 5th and 13th minutes, while Sukhjit Singh scored a field goal in the 23rd minute. Abhishek scored the winning goal for India from a field play in the final minute of the game. And the Greco-Roman wrestler Nitish Sivaj today bagged a silver medal in the men's 97kg at the Asian Games in Japan. Nitish lost to Japan's Yuri Nakazato 0-4 in the final. And on to some business news. Benchmark domestic equity indices extended the losing streak for the fourth straight day today. The Sensex plunged 571 points or 0.8% to close at 71,910. The Nifty shed 199 points or 0.9% to settle at 22,422. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 as well as the small-cap 100 indices tumbled 1% each.
2: श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है।
4: एनी बेसेंट वाज बोर्न ऑन द 1st ऑफ अक्टूबर 1847 इन लंदन।
5: शी एडवोकेटेड आइडियाज व्हिच वर अहेड ऑफ द टाइम, सच एज ट्रेड यूनियंस, नेशनल एजुकेशन, राइट फॉर वुमेन टू वोट एंड बर्थ कंट्रोल। इन 1889 एनी बेसेंट जॉइंड The Theosophical Society, a religious movement based on Hindu ideas of karma and reincarnation. In 1893, she represented the Theosophical Society at the World Parliament of Religions in Chicago.
4: She came to India in 1893 and fell in love with the land. She was associated with various causes, including the emancipation of women, education, and most notably, took part in the Indian freedom struggle. Once, Mahatma Gandhi said about her that she awakened Indian people from their deep slumber.
5: Along with Lokmanya Tilak, she co-founded the Home Rule League in 1916, which aimed to campaign for democracy in India and dominion status within the empire. Raghupati Venkataratnam Naidu was born on 1st of October 1862 in Machilipatnam in Andhra Pradesh. As his father, Raghupati Appaya Naidu worked as subedar in the army. He lived in Chandrapur. This helped him gain knowledge of Hindi, Urdu and Persian languages.
4: He graduated from Madras Christian College. He founded the Social Purity Association in 1891 to train people as honest citizens.
5: He worked for the eradication of untouchability and uplift of scheduled castes and founded an orphanage and a hostel for them. He strived for the abolition of the Devadasi system in Andhra and succeeded to a considerable extent. He promoted widow remarriages and encouraged women's education. On this day, Hridaynath Kunzru was born in the year 1887. He was an Indian freedom fighter and public figure. He was also a seasoned parliamentarian, serving in various legislative bodies at the provincial and central level for nearly 4 decades.
4: He was a member of the Constituent Assembly of India from 1946 to 1950.
2: आज चंद्र सिंह गढ़वाली की भी पुण्यतिथि है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से रहे। ये गढ़वाल रेजिमेंट के

0: सैनिक थे। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चल रहा था। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश मिलने के बावजूद चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपने सैनिकों के साथ गोली चलाने से इनकार कर दिया। इसके लिए उन्हें कोर्ट मार्शल कर दंडित किया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
1: Thomas Leo Clancy Jr. passed on this day in 2013. He was also known, better known as Tom Clancy. He was an American writer. He was best known for his techno thrillers, which featured technical details in espionage and military science settings. Originally an insurance agent, Clancy published his first novel, The Hunt for the Red October, in 1984. 18 novels followed between 1986 and 2013. Clancy's Ryanverse series features the character Jack Ryan, an analyst working for the Central Intelligence Agency. It ranks among the best-selling series of fictional books of all time, with more than 100 million copies in print. Clancy also wrote non-fiction books on military subjects and has created other techno-thriller series of novels bearing his name. And also, like we were mentioning at the beginning of our program, Elwin Brooks White passed away on this day in 1985. He was an American writer, essayist, and contributing editor for the New Yorker magazine. He was also the author of highly popular books for children, Stuart Little in 1945, Charlotte's Web 1952, and The Trumpet of the Swan 1970. In a 2012 survey of school library journal readers, Charlotte's Web was ranked first in the poll of the top 100 children's novels. White was a co-author of The Elements of Style, an English language style guide, and Kurt Vonnegut called White one of the most admirable prose stylists our country has so far produced.
0: उर्दू शायरी की दुनिया से हिंदी सिनेमा के गीतों तक का सफर तय करने वाले मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म आज ही के दिन 1919 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। मजरूह ने लगभग 6 दशकों के अपने लंबे फिल्मी सफर में 2000 से अधिक गीत लिखे। शाहजहां, अंदाज, आराधना, तीसरी मंजिल, यादों की बारात और कयामत से कयामत तक जैसी फिल्मों के गीत उनके लंबे सफर का हिस्सा रहे। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए उन्हें 1965 में फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार मिला। वर्ष 1993 में वे दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले गीतकार बने।

0: भारतीय फिल्म संगीत में लोक धुनों और शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय सिनेमा की धुनों के साथ खूबसूरती से पिरोने वाले सचिन देव बर्मन यानी एसडी बर्मन की भी आज जयंती है। इन्होंने हिंदी और बंगाली सिनेमा में संगीतकार के साथ साथ गायक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई।
1: यस एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग

0: information here, Sir Firozi. The Indian cricketer Sachin Tendulkar was named after the composer by Sachin's father, who was an ardent fan of S.D. Barman. So let's go ahead and listen.
1: हाँ, इनके कुछ गीत सुनेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें श्रोताओं को कि इन्हें फिल्म जिंदगी के लिए 1974 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन की श्रेणी में मिला।

श्रोताओं, इन खूबसूरत से गीतों के साथ अनुमति दीजिए सरफिरोजी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बल के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होना चाहिए। नई दिल्ली में आज रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने रक्षा लेखा विभाग की कई सूचना प्रौद्योगिकी पहलों की शुरुआत की जिनका उद्देश्य रक्षा मंत्रालय के भीतर वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल प्रणालियों को मजबूत करना है। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तक कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का 5वां संस्करण इस शनिवार से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय बदलाव के दौर में लचीलापन रखा गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महामंथन में 180 से अधिक नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वित्तीय विशेषज्ञ और वैश्विक विचारक एक मंच पर जुटेंगे। इनमें करीब 30 देशों के 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी शामिल हैं। समारोह के पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उद्घाटन भाषण देंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली के सफदरजंग मकबरे में आयोजित अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं बल्कि प्रतिदिन की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
1: 2017 से पहले भी रेलवे स्टेशन देखते थे, आज बहुत से लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे घूमने जाते हैं। तो ये जो वातावरण चेंज हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साफ

0: सफाई की प्रति सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान रखता है भारत में, तो ये भारत के बच्चे ध्यान रखते हैं।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बाल योगी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि जीएमसी बाल योगी संसदीय गरिमा, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रेरणादायक विरासत हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। श्री मांडविया ने देशभर के सभी शारीरिक शिक्षा पेशेवरों से इस पोर्टल पर पंजीकरण करने का आग्रह किया। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों के स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबेल ने रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांस्य पदक हासिल किया। कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। उधर स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने श्रीलंका को और हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 22 रजत और 32 कांस्य सहित 64 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल, गाते गुनगुनाते आपके साथ है हम रूमी मलिक। और अगर कोई आपसे ये कहे कि जैसे आप हैं मुझे वो पूरी तरह से स्वीकार हैं, तो आपको कैसा लगेगा? मेरे ख्याल से वो आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा। और ऐसा तभी हो पाता है जब हमें किसी से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, जब हमारा दिल किसी पे आ जाता है, तो फिर क्या बात, फिर तो सारी दुनिया लगती है गुलाबी गुलाबी और हमें विश्वास होता है अपने ऊपर, मैं भी कुछ हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि तुम्हारा दिल मुझ पर आ गया। हे यू स्वागत है आपका गाते गुनगुनाते में हमारे साथ।

यारे बेबी ये दिल तुम पे आ गया। पर दिल जो है ना वो बिल्कुल सही कारण से किसी पे आना चाहिए। दिल इसलिए किसी पे नहीं आना चाहिए कि ये मेरे बिल पे करेगा, और आजकल तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और नहीं तो क्या, अपने पैरों पे खड़ी हो, स्वावलंबी बनो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाली बात कि एक इंसान को सही वजह से चुना जाए अपना लाइफ पार्टनर, और वो चीज होनी चाहिए शेयर्ड वैल्यूज, म्यूचुअल लव, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, और हाँ ये भी जरूरी है थोड़ी सी केमिस्ट्री।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सब के लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

गाते गुनगुनाते जीवन का सफर चलेगा अगर जीवन के कुछ फलसफे हमारे बिल्कुल सही होंगे। जो दूसरों से चाहिए वही दूसरों को दो। इज्जत चाहिए इज्जत दो पहले, प्यार चाहिए प्यार दो पहले, मोहब्बत से पेश आओ। आपको लगता है हर कोई विनम्रता से आपसे बात करे? सबसे पहले आप तो विनम्रता से बात करो, सॉफ्टली बात करो, स्वीटली बात करो और छोड़ दो सारा दंभ। हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे खून में रचे बसे हैं संस्कार हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के, तो हम सब ये बात जानते हैं कि जो चीज़ स्थायी ही नहीं है उसका क्या मोह करना। हंस हंस के आपके भी फ्रेंड्स कहते होंगे, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स कहते हैं, सब मोह माया है। तो फिर रहो हंसते हंसते और सबको करते चलो सलाम नमस्ते। गाते गुनगुनाते का सफर यहीं तक जारी रहेगा। रूमी मलिक भी आपको कहती है सलाम नमस्ते। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट डायरी सुनेंगे आप, फिर समाचार, गाते गुनगुनाते और आकाशवाणी FM गोल्ड का सफर रहेगा जारी। सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड, खरा सोना। सलाम नमस्ते।

0: News Services Division of Akashwani presents Northeast Diary.
1: Good evening and a warm welcome to another episode of Northeast Diary, your window into the vibrant cultures, inspiring stories and unfolding events from the age jewels of India's Northeast. I'm Vinita Thakur, and in today's episode, we embark on a journey into the rich cultural heritage of Arunachal Pradesh's indigenous Tagin tribe. We'll also bring you a report on Sikkim's folk instrumental band Nad Fusion, which secured the second runner-up position at NE Star, the ultimate music talent hunt held in Guwahati. But first, let's listen to a report on Hindi Pakhwara 2026 organized by Akashwani Kohima. Promoting Hindi while preserving Nagaland's indigenous languages can go hand in hand. This was the message from Governor Nandkishore Yadav at the prize distribution ceremony of the Hindi Film Song Competition organized by Akashwani Kohima as part of Hindi Pakhwara 2026. Here is a report from our Kohima correspondent Asuno.
2: Language, music and cultural diversity came together at Akashwani Kohima as officers and staff from central government offices participated in the Hindi Film Songs competition. Addressing the gathering, Governor Nandkishore Yadav said, India's linguistic diversity is one of its greatest cultural strengths. He said, Hindi can help people communicate across different parts of the country, while indigenous languages preserve the history, traditional knowledge and identity of communities.
3: Nagaland jaise rajya mein, jahan kai sthaniya bhashaen boliyan, hamari sanskritik virasat का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. हिंदी का उत्सव हमें हर भारतीय भाषा के महत्व को समझने का अवसर भी देता है. हिंदी को बढ़ावा देना हमारी स्थानीय भाषाओं का संरक्षण एक साथ हो सकता है और होना भी चाहिए. वास्तव में यह भारत की अनूठी शक्तियों में से एक है. हमें भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता में किसी एक को चुनने की आवश्यकता नहीं है. हमारी विविधता स्वयं बेहतर समझ और एकता के लिए एक सेतु बन सकती है. नागालैंड में हम इसे विशेष रूप से अच्छी तरह समझते हैं. हमारा राज्य विभिन्न जनजातियों, भाषाओं, बोलियों, परंपराओं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का घर है, जहां भाषा किसी समुदाय की स्मृतियां, उसके इतिहास, पारंपरिक ज्ञान, मूल्यों, गीतों और लोक कथाओं को अपने भीतर संजोए रखती है. इसलिए जब हम हिंदी को बढ़ावा देते हैं तो हमें अपने समुदायों की भाषाओं के प्रति सम्मान और सराहना की उसी भावना के साथ ऐसा करना चाहिए.
2: The governor said music has the ability to transcend linguistic boundaries and bring people together.
3: संगीत में भाषाएं सीमाओं से परे जाने की उल्लेखनीय क्षमता होती है. हम भले ही किसी गीत का हर शब्द न समझें, लेकिन हम उसकी भावना को समझ सकते हैं. बोल समझने से पहले हम संगीत के माध्यम

0: हमसे खुशी, प्यार, पुरानी यादें, आशा, देशभक्ति और दोस्ती महसूस कर सकते हैं। यह संगीत की सुंदरता है।
1: You also appreciated Akashvani for providing a platform for local voices, languages, music and cultural traditions.
0: Akashvani Kohima ne sthaniya awazon, bhashaon, sangeet, paramparaon aur janhit ke muddon ko ek manch pradan kiya hai. Isne rajya mein ke bhitar samudaya ko jodne mein madad ki hai aur Nagaland ko baki Bharat se bhi joda hai. Mera manna hai ki vartman yug mein yah bhumika aur bhi adhik mahatvapurna ho jati hai. Hum tez takniki badlav ke yug mein ji rahe hain. डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया ने लोगों के संवाद करने और सूचना प्राप्त करने के तरीकों को बदल दिया है। फिर भी सार्वजनिक प्रसारण का मूल उद्देश्य आज भी प्रासंगिक, लोगों को सूचित करना, शिक्षित करना और आपस में जोड़ना। माइक्रोफोन समुदायों के बीच एक सेतु बन सकता है और वह सेतु तब और मजबूत होता है जब उसमें कई तरह की आवाजें शामिल होती हैं। इसलिए मैं आकाशवाणी कोहिमा को प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि वह नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को उचित स्थान देना जारी रखें और साथ ही उन कार्यक्रमों को भी मजबूत करें जो हमारे लोगों को व्यापक रूप में राष्ट्र से जोड़ते हैं।
1: On the occasion, the governor gave away the prizes of the winners of Hindi film competitions for Hindi speaking and non-Hindi speaking category, including other competitions.

0: While speaking to All India Radio, Shyam Pradhan, State Coordinator Northeast Star Ultimate Music Talent Hunt, Sikkim Chapter, said that NAAP Fusion Achievement is a significant recognition of Sikkim folk and instrumental music talent.
1: So, Northeast, you know that band, especially Western band, or then singing, in all of them, बहुत ही प्रचुर मात्रा में वहाँ पर ऐसे बैंड हैं, ऐसे कलाकार हैं और जो मंच में अपने परफॉर्म करते रहते हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड मैं कहना चाहूंगा। और सिक्किम से ये जो नाद ग्रुप बनकर गया, तो आप शायद ये पूछना चाहते हैं मुझसे कि नाद की उपलब्धि क्या है और इनका भविष्य क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जितने भी कलाकार हैं, प्रीतम हो, नरेन हो, या फिर घतानी हो, या फिर विनोद हो, निमेश हो, है ना, घर में तो ये बजा रहे थे, स्टूडियो में बजा रहे थे, लेकिन गुवाहाटी में जाकर ग्रैंड फिनाले में बजाना और सेकंड रनर या टॉप थ्री में अपनी जगह बनाना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि ये घर से निकले हैं, घर से बाहर निकलकर इन्होंने अपनी भूख को जगाया है। कुछ पाने की ललक, कुछ पाने की भूख, कुछ पा लेने की, जीत लेने की जिद, कुछ जगाया है इन्होंने और टॉप थ्री में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। और जब मैंने फोन आया और बधाइयां दी, तो उन्होंने कहा कि सर, हम लोग तो अब इंडियाज गॉट टैलेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये होता है किसी भूख का जगना। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ के कलाकारों का, नाद के कलाकारों का, नाद फ्यूजन बैंड का थर्ड प्लेस में आना एनी स्टार अल्टीमेट म्यूजिक टैलेंट हंट में और इंडियाज गॉट टैलेंट की तैयारी करना या वहां जाने की इच्छा उनमें जागना, इसका मतलब है कि इन्होंने अपने पंखों को खोल लिया है और पंखों में इन्होंने हवा को भर लिया है। क्योंकि देखते हैं, जब बड़े पंख वाले जो पंछी होते हैं, पहले वो पंखों को फड़फड़ाते हैं, फड़फड़ाकर फड़फड़ाते हुए बहुत सारी हवा वो पंखों में भर लेते हैं, उसके बाद वो बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं। तो मेरे ख्याल से नाद फ्यूजन बैंड के कलाकारों का गुवाहाटी के ग्रैंड फिनाले में जाना, टॉप थ्री में अपनी जगह बनाना, शायद इन्होंने अपने पंखों को फैलाकर हवा को भर लिया है, अब तो शायद ऊंची उड़ान है और सामने आसमान है। तो बहुत कुछ ये कर सकते हैं और भविष्य इनका उज्जवल है।
0: He added that the band's success highlight the potential of emerging musicians from the state to use regional platform to showcase their creativity and take Sikkim's distinctive musical tradition to wider Northeast and national audience. With Mainak Chatterjee, Dhiran Dulal, Akashvani News Gangtok for Northeast Diary.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि 2047 तक का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देश भर के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विद्यार्थी दायित्वपूर्ण नागरिकता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने और स्वच्छ, हरित तथा स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विमान यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ मच्छर के असाधारण साहस और सूझबूझ पर देश को अत्यधिक गर्व है। श्री नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है। सरकार ने पात्र दिव्यांगजनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण से जुड़े दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से बनाए गए वाहनों और दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों को छूट वाला फास्टैग जारी किया जाएगा। ये सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID कार्ड या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 571 अंक कम होकर 71,910 पर बंद हुआ। निफ्टी 199 अंकों की गिरावट से 22,422 पर दर्ज हुआ। खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने और कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांस्य पदक हासिल किया। स्क्वाश में महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 32 कांस्य पदकों के साथ 65 पदक लेकर 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. The Prime Minister was addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission, UPSC, at Bharat Mandapam in New Delhi today. He said today, 21st century India is moving forward with a new work culture and its core principle is pro-people, proactive, good governance. He stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service.
1: हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा. हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो. इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है बल्कि वो यह भी देखे युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है.
2: Special Gram Sabhas will convene across the country tomorrow on the occasion of Gandhi Jayanti to discuss key rural governance reforms. The meetings will discuss transformative governance aimed at strengthening panchayats, improving public services and boosting the overall quality of life in rural India. Officials say these discussions will pave the way for transformative community-led development across villages nationwide. Rural Development Ministry said these special Gram Sabhas will also mark the launch of the People's Plan Campaign 2026-27, Sabki Yojana Sabka Vikas, under which Gram Panchayats will prepare their development plans for financial year 2027-28 through participatory and evidence-based planning. The government has extended the last date for submission of applications under the National Means Cum Merit Scholarship Scheme until 31st of this month. The Ministry of Education said the extension will provide eligible students additional time to complete their applications on the National Scholarship Portal and facilitate timely verification by the concerned authorities. The Ministry informed that students who have already submitted their applications should ensure that the applications are verified by the concerned institute nodal officer L1 by November 15 and district nodal officer L2 by November 30 this year. The National Means Cum Merit Scholarship Scheme is aimed at supporting meritorious students from economically weaker sections and encouraging them to continue their education beyond class 8 up to class 12. The government has revised the guidelines for issuance and renewal of exempted fast tags for eligible Divyangjan beneficiaries. Under the guidelines, exempted fast tags for vehicles specially designed and constructed for use by persons with physical disabilities as well as vehicles registered under the ownership type Divyangjan will be issued exempted fast tag. It will be based on the percentage of disability recorded in a valid disability certificate, unique disability identity card, or other applicable records. The guidelines will come into effect from tomorrow. At the Asian Games 2026 in Japan, Greco-Roman wrestler Nitesh Sivaj bagged silver medal in men's 97kg category after losing to Japan's Yuri Nakazato 0-4 in the final.

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण की नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। श्रोताओं, खेल केवल प्रतियोगिता और पदक जीतने का माध्यम नहीं है। खेलों के जरिए देश के युवा अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। एशियाई खेल इसी भावना का एक महत्वपूर्ण मंच है। एशियाई खेल एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन है, जिसमें एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी अनेक खेलों में हिस्सा लेते हैं। इन खेलों का आयोजन एशियाई ओलंपिक परिषद यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अंतर्गत होता है। एशियाई खेलों की शुरुआत वर्ष 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुई थी। पहले एशियाई खेलों का आयोजन 4 से 11 मार्च 1951 तक नई दिल्ली में किया गया। उस समय 11 देशों के लगभग 500 खिलाड़ियों ने 12 खेलों में हिस्सा लिया था। भारत ने पहले एशियाई खेलों में 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक सहित कुल 51 पदक जीते थे। तब से लेकर अब तक एशियाई खेलों की यात्रा काफी लंबी रही है। शुरुआती वर्षों में जहां सीमित संख्या में देश शामिल होते थे, वहीं आज एशिया के 45 राष्ट्रीय ओलंपिक संघ इन खेलों में हिस्सा लेते हैं और खेलों का दायरा भी काफी बढ़ गया है। 2023 में हांगशो एशियाई खेलों में 40 खेल, 61 डिसिप्लिन और 482 स्पर्धाओं का आयोजन हुआ था। भारत ने भी इस यात्रा में लगातार अपनी स्थिति काफी मजबूत की है। वर्ष 2018 में भारत ने 70 पदक जीते थे। इसके बाद हांगशो एशियाई खेलों में भारत ने अपने पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 107 पदक जीते। इनमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल थे। ये उस समय एशियाई खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। जापान के नगोया में वर्ष 2026 के एशियाई खेल चल रहे हैं। इस वर्ष एशियाई खेल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि एशियाई खेलों का भारत के लिए क्या महत्व है। 2026 के खेलों में भारतीय दल का अब तक प्रदर्शन कैसा रहा और 30 सितंबर भारत के लिए इतना खास क्यों रहा? तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एशियाई खेलों में इस वर्ष अब तक भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है और भारतीय खिलाड़ियों ने किन किन खेलों में पदक हासिल किए हैं।
2: श्रोताओं, आईची नागोया एशियाई खेल 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार चर्चा में बना हुआ है। 30 सितंबर के मुकाबलों से पहले भारत ने एथलेटिक्स, शूटिंग, तीरंदाजी, कुश्ती, मुक्केबाजी, वुशू, बैडमिंटन, कबड्डी, क्रिकेट और अन्य खेलों में पदक हासिल किए हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं के साथ साथ टीम स्पर्धाओं में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे भारतीय दल में अलग अलग खेलों और अलग अलग क्षेत्रों के खिलाड़ियों की भागीदारी दिखाई देती है। श्रोताओं, एशियाई खेलों में भारत के लिए एथलेटिक्स हमेशा महत्वपूर्ण खेलों में रहा है। हांगझो में भारत ने एथलेटिक्स में 29 पदक हासिल किए थे, शूटिंग से 22 और तीरंदाजी से 9 पदक मिले थे। 2026 के एशियाई खेलों में भी शूटिंग और तीरंदाजी भारतीय पदक अभियान के महत्वपूर्ण हिस्से बने हुए हैं। कबड्डी और क्रिकेट में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। कबड्डी में महिला और पुरुष दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीते हैं, जबकि क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। श्रोताओं, भारत के प्रदर्शन को समझने के लिए पिछले एशियाई खेलों से इसकी तुलना भी महत्वपूर्ण है। 2018 के एशियाई खेलों में भारत ने 70 पदक जीते थे। इसके 5 वर्ष बाद हांगझो 2023 में भारत ने 107 पदक जीतकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इस उपलब्धि ने भारत के एशियाई खेलों के प्रदर्शन में एक नया स्तर स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हांगझो में भारत के 107 पदक जीतने को पिछले 60 वर्षों में देश का सर्वश्रेष्ठ एशियाई खेल प्रदर्शन बताया था।
1: श्रोताओं, इस वर्ष नगोया में भारत का अभियान अभी पूरा नहीं हुआ है। 30 सितंबर तक भारतीय खिलाड़ियों ने कई खेलों में पदक जीतकर अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाया है। तो अब बात करते हैं 30 सितंबर की, जो भारत के लिए इस एशियाई खेल अभियान का अब तक का सबसे सफल दिन में से एक रहा है।
3: श्रोताओं, 30 सितंबर 2026 भारतीय खेलों के लिए एक बेहद सफल दिन रहा। इस दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीते। 4 स्वर्ण पदकों में कंपाउंड तीरंदाजी की महिला टीम, पुरुष टीम और मिक्स टीम तथा शूटिंग की ट्रैप मिक्स टीम के स्वर्ण पदक शामिल हैं। इसके अलावा मुक्केबाजी और कुश्ती में भारत को कांस्य पदक भी मिले। तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रतिका प्रदीप और चिकित्सा तनी पर्थी ने महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम के प्रदर्शन ने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। इसके बाद कुशल दलाल, साहिल राजेश यादव और गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने पुरुष कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके शानदार प्रदर्शन, सटीकता और टीम वर्क की सराहना की। कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में चिकिता दनीपर्थी और साहिल राजेश यादव ने भी स्वर्ण पदक जीता। इस मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया को शूट ऑफ में हराया। शूटिंग में नीरू और कायन चेनाई ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने एशियाई रिकॉर्ड बनाया। इस स्पर्धा में एशियाई खेलों का भारत का पहला स्वर्ण पदक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों निशानेबाजों को बधाई देते हुए इसे भारतीय शूटिंग की यादगार उपलब्धि बताया। श्रोताओं, 30 सितंबर के इन परिणामों के बाद भारत की कुल पदक संख्या 60 हो गई। इसमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य पदक शामिल हैं। इस तरह भारत ने 30 सितंबर को 4 स्वर्ण सहित 7 पदक हासिल किए और पदक तालिका में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों के इन उपलब्धियों पर अलग अलग संदेश जारी कर उन्हें बधाई दी। महिला कंपाउंड टीम, पुरुष कंपाउंड टीम और ट्रैप मिक्स टीम के स्वर्ण पदक विजेताओं को प्रधानमंत्री ने उनके प्रदर्शन और उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी। श्रोताओं, अब एशियाई खेल अपने अंतिम चरण में पहुँच चुके हैं और भारत का जीत का सिलसिला आज भी जारी है। आज पुरुष क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराकर फाइनल में जगह बनाई। उधर पुरुष हॉकी टीम ने भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल के लिए प्रवेश किया। आने वाले मुकाबलों में क्रिकेट, हॉकी और अन्य खेलों में भारतीय खिलाड़ियों से पदक की उम्मीदें बनी हुई हैं। श्रोताओं, एशियाई खेलों की 7 दशक से अधिक लंबी यात्रा में भारत ने भी लगातार अपनी उपलब्धियों का विस्तार किया है। वर्ष 1951 में नई दिल्ली से शुरू हुए इन खेलों में भारत ने 51 पदक जीते थे। 2018 में ये संख्या 70 हुई और 2023 में भारत ने 107 पदकों के साथ नया रिकॉर्ड बनाया। अब आईची नागोया में 30 सितंबर तक भारत 60 पदक हासिल कर चुका है। खेलों के अंतिम दिनों में भारतीय खिलाड़ियों के पास इस संख्या को और आगे बढ़ाने का अवसर है। एशियाई खेल केवल पदकों की संख्या का आयोजन नहीं है, ये एशिया के देशों के खिलाड़ियों को एक साझा मंच देते हैं, युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव प्रदान करते हैं और खेलों के प्रति रुचि को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के लिए भी ये खेल नई प्रतिभाओं को सामने लाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का अनुभव देने और विभिन्न खेलों में अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर है।
1: श्रोताओं, नगोया एशियाई खेल 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का अभियान जारी है। 30 सितंबर भारत के लिए विशेष रूप से सफल रहा, जब भारतीय दल ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। 1951 में नई दिल्ली से शुरू हुई एशियाई खेलों की यात्रा में भारत ने लंबा सफर तय किया है।

हांगझो 2023 में 107 पदकों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के बाद अब नागोया में भारतीय खिलाड़ी लगातार अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले मुकाबलों में क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल और अन्य खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की नजरें पदकों पर होंगी। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक हरमनप्रीत सिंह। नमस्कार।

0: 6:30 पर आप सुन सकेंगे मार्केट मंत्र और अब से कुछ ही देर में सुनिए संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् संघलोकसेवायोगस्य शतवार्षिकी यात्रायां जनविश्वासः अक्षुण्णः अस्ति। जनसहभागितायाः संवर्धनाय श्वः देशव्यापी विशेष ग्रामसभाः समाहूयन्ते। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन रक्षाप्रबन्धाय एकीकृत वित्तीय व्यवस्थायाः आवश्यकता प्रोदीरिता। नागरिक विमानयन मन्त्रिणा वैमानिकस्य कैप्टन स्मिथ मच्छारस्य शौर्यस्य भूरिशः प्रशंसा विहिता। अपि च क्रीडा वार्तासु एशियाई क्रीडासु भारत पुरुष हॉकी दलेन पाकिस्तानं पराभूय अन्तिम स्पर्धायां प्रवेशः समधिगतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य नवदिल्ल्याः भारतमण्डपे संघलोकसेवायोगस्य शताब्दी समारोहं सम्बोध्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी व्यजिज्ञापत् यत् राष्ट्रं परिष्कारार्थं द्रुतगत्या त्वरितम् अग्रे सरति। अतः परीक्षा सञ्चालिकाः संस्थाः अपि राष्ट्रानुकूल परिष्कृत कार्याणि कुर्युः। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् लोकसेवासु तादृशः एव युवानः समागच्छेयुः येषां लक्ष्यं न तु केवलं पदप्राप्तिः प्रत्युत निष्काम भावेन लोकसेवा वर्तते। असौ व्याहरत् यत् एकविंशति शतकस्य भारतं नवीन कार्य संस्कृत्या सह अग्रे याति। श्रीमोदिना प्रतिपादितं यत् परीक्षा न तु काचित् सामान्यम् अनुष्ठानम् अपितु यूनां भावि जीवन प्रवाहेन सह सम्बद्धा अस्ति। परीक्षासु कतिपयानां मासानाम् अपि विलम्बः यूनां कृते अतीव कष्टकरो भवति। अतः परीक्षा व्यवस्था समय निश्चयता सिद्धांतं दृढ़तया अनुसरेत।
2: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
1: श्री मोदिना प्रतिपादितं यत् संघ लोक सेवा आयोगस्य शतवर्षीयायां यात्रायां युगानि प्रशासनानि तंत्राणि पाठ्यक्रमाः च परिवर्तिताः। तथापि अस्यां संस्थायां जनसाधारणानां श्रद्धा विश्वासः अद्य यावत् तथैव अविचलः अक्षुण्णश्च वर्तते। श्वः गांधी जयन्त्यावसरे अशेषे हि देशे विशेष ग्राम सभाः समाहूयन्ते। पंचायतानां सुदृढीकरणाय सार्वजनिक सेवानां परिष्कारार्थं ग्रामीण भारते जीवनस्य गुणवत्तां परिष्कारार्थं च लक्ष्यीकृतानां परिवर्तनशील शासन परिष्काराणां तथा उपक्रमाणां विषये च ते चर्चां विधास्यन्ति। ग्रामीणाभिवृद्धि मन्त्रालयः अवोचत् यत् एताः विशेष ग्राम सभाः 26,000-27,000 वर्षयोः पीपल्स प्लान कैंपेन पीपीसी सबकी योजना सबका विकास इत्यस्यापि आरंभं विधास्यन्ति। अद्य नवदिल्ल्यां रक्षा लेखा दिवस समारोहम् अधिकृत्य भाषमाणः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहः अब्रवीत् यत् तिसृषु सैन्य शाखासु या समवाय समन्वय भावना प्रवर्त्यते सा एव रक्षा लेखा विभागस्य वित्तीय तंत्रे अपि समन्वेतव्या। मन्त्री प्रवरेण प्रोक्तं यत् यदि वित्तीय प्रणाल्यः अपि एकीकृत रूपं भजेरन् तर्हि समग्रं रक्षा प्रबन्धनं सुतरां कुशलं समर्थं च सेत्स्यति। असौ राष्ट्रिय अन्ताराष्ट्रिय स्तरयोः गुणवत्तायुक्त लेखा परीक्षणस्य सर्वोत्तमाः रीतिः अंगीकर्तुं जगति च एधमानानां मानदण्डैः सह समन्वयं रक्षितुं रक्षालेखा विभागं सप्रश्रयम् अबोधयत्।
3: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
1: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
4: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स पटले HAIR न्यूज अलर्ट्स इत्यनुसरन्तु। आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ताम्।
1: स्वच्छता ही सेवा अभियानस्यान्तर्गतम् अद्य देशव्यापी एकः दिवसः एका होरा एकीभूय इति स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रमः सोत्साहम् आयोजितः। अस्मिन् अभियाने बहुभिः केन्द्रीय मन्त्रिभिः मुख्यमन्त्रिभिः वरिष्ठाधिकारिभिश्च भागः गृहीतः। विगत मासस्य 17 दिनांकात् आरब्धम् इदम् अभियानम् आगामी अक्टूबर मासस्य 17 दिनांकं यावत् प्रवर्तयिष्यते। अस्य वर्षस्य मुख्य ध्येय वाक्यं स्वच्छतायां सहभागः, स्वच्छ भारतं विकसित भारतं इत्यस्ति। नवदिल्ल्याः सफदरजंग समाधि स्थानके विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः स्वच्छता कार्ये सहभागम् अकरोत्। असौ अब्रवीत् यत् स्वच्छता न तु केवलं एकदिवसीयम् अभियानम् प्रत्युत अस्माकं दैनन्दिनं दायित्वं भवेत्। अपरं च जलशक्ति मंत्री CR पाटीलः अपि नवदिल्ल्याः कालिंदी कुंज घट्टे श्रमदान कार्ये सक्रियं योगदानम् अयच्छत्। अद्य नवदिल्ल्याः लेडी हार्डिंग चिकित्सा महाविद्यालये 26th-2000 राष्ट्रिय ऐच्छिक रक्तदान दिवसः आचरितः। अस्मिन् अवसरे नीति आयोगस्य स्वास्थ्य सदस्यः डॉ. M. श्रीनिवासः ऐच्छिक रक्तदान शिबिरस्य उद्घाटनम् अकरोत्। नागरिक विमानयन मंत्री राममोहन नायडूः अब्रवीत् यत् देशः वैमानिकस्य कैप्टन स्मिथ मच्छारस्य असाधारण साहसेन उपस्थित बुद्ध्या च अतीव गौरवान्वितः अस्ति, येन विमानस्थ सर्वेषां यात्रिणां प्राणाः सुरक्षिताः। मंत्री प्रवरेण निगदितं यत् भारतीय वैमानिकाः स्वकीयेन कौशलेन अनुशासनेन निष्ठापूर्ण सुरक्षा प्रतिबद्धतया च जगति प्रतिष्ठां लब्धवन्तः। पाकिस्तानेन अफगानिस्तानस्य कुनार हेलमंद मण्डलयोः नागरिक गृहेषु कृत वैमानिक आक्रमणेषु स्त्री शिशून् समादाय न्यूनातिन्यूनं 10 अफगान नागरिकाः मृताः, 11 अन्ये च व्रणिताः। तालिबान प्रवक्त्रा जबीहुल्लाह मुजाहिद इत्यसौ अकथयत् यत् अस्मिन् आक्रमणे कुनार मण्डलस्य शुल्तान क्षेत्रे हेलमंद मण्डले त्रीणि भवनानि विनष्टानि। अस्य वैमानिक प्रहारस्य तीव्रं विगर्हणं कुर्वन् मुजाहिद इत्यसौ प्रत्यारोपितवान् यत् पाकिस्तान देशः स्वकीय राजनैतिक आर्थिक संकटेभ्यः जनध्यानम् अपसारयितुं अफगानिस्तान विरोधी नीतिं समाश्रयति। भारतीय नौसैन्य बलानां प्रमुखः पोतः INS तर्कशः स्वस्य यात्राक्रमे केन्या देशस्य मोम्बासा नगरस्य पोताश्रयं प्राप्नोत्। रक्षामन्त्रालयेन प्रोदीरितं यत् अयं प्रवासः

ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्बन्धैः सम्बद्धयोः भारत केन्या समुद्र राष्ट्रयोः प्रगाढ सम्बन्धान् दृढयति। अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय पेंशन प्रणाली दिवसस्य प्रसंगे आभासीय माध्यमेन भाषमाणः मुख्य आर्थिक उपदेष्टा वी अनंत नागेश्वरन समावोचत यत् कौटुंबिक संचयानां विशालः अंशः दीर्घकालिक पेंशन योजनासु विनियोक्तुं नागरिक प्रोत्साहनं शासनस्य महती आवश्यकता वर्तते। जापानस्य काकामिगाहारा नगरे आयोजितायां एशियाई क्रीडायां भारतीय पुरुष हॉकी दलेन चिर प्रतिद्वन्द्विनं पाकिस्तान देशं 4-3 इति चक्रैः पराभूय अन्तिम स्पर्धायां प्रवेशो लब्धः। इति वार्ताः।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आज की आर्थिक खबरों की बारीकियों पर चर्चा के लिए आज वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे स्टूडियो में आमंत्रित हैं. नमस्कार उदयन, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद सोनू.
1: और अब हेडलाइंस के साथ निहारिका भुवानिया.
0: The headlines for this evening are as follows. Benchmark domestic indices shed nearly 1%. Sensex falls over 550 points. Nifty settles below 22,450. Finance Ministry expects country's economy to grow by 7.3% in second quarter of current financial year. And government needs to encourage households to shift more savings to long-term pension products, says Chief Economic Advisor V. Anant Nageswaran.
1: प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक लगभग 1% की गिरावट पर हुए बंद. सेंसेक्स 550 अंकों से अधिक गिर गया. निफ्टी 22,450 के नीचे आ गया. वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ेगी. और सरकार को परिवारों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि वे अपनी बचत की ज्यादा राशि लंबे समय के पेंशन उत्पादों में हस्तांतरित करें, कहा प्रमुख आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने.

0: And before we move forward, a small disclaimer for all our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. And we further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक लगातार चौथे सत्र आज गिरावट में रहे। सेंसेक्स 0.8% की मंदी से 571 अंक कम होकर 71,910 पर बंद हुआ। निफ्टी 0.9% टूटकर 199 अंकों की गिरावट दर्ज करता हुआ 22,422 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 दोनों सूचकांक लगभग 1% की भारी गिरावट पर बंद।
0: Benchmark domestic equity indices extended their losing streak for the fourth straight session today. The Sensex plunged 571 points or 0.8% to close at 71,910. The Nifty shed 199 points or 0.9% to settle at 22,422. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 as well as the small-cap 100 indices tumbled around 1% each.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 24 गिरावट में रहीं। सबसे अधिक गिरने वाली कंपनियां रहीं मारुति 4.6%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.3% और 3% गिरावट के साथ टाटा स्टील। इसके विपरीत सबसे अधिक बढ़ने वाली कंपनियां थीं 4% उछाल के साथ इन्फोसिस और 1.4% बढ़त के साथ टीसीएस और एचसीएल टेक।
0: इन द सेक्टोरल इंडेक्सेस ऑन द बीएससी 22 out of 28 sectors edged lower while capital goods remained unchanged. Among the top losers, auto shed 3.1%, metal fell 2.2% and consumer discretionary dropped 2.1%. In contrast, IT jumped 1.8%, focused IT rose over 1.6% and insurance added 0.6%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,056 companies declined, 1,367 advanced and 229 remained unchanged.
1: रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 48 पैसे कमजोर होकर 96.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। क्या कहेंगे उदयन, ये सप्ताह काफी दबाव में रहा है बाजार। चारों ही दिन छोटा सप्ताह है, छोटा कारोबारी सप्ताह है। आज भी बाजार जब गिरावट के साथ खुले, बॉन्ड यील्ड्स मल्टी ईयर हाईज तक पहुंच गई थी, क्रूड ऑयल प्राइसेस की कीमतें बढ़ी हुई थी, इस बीच पूरा टाइम दबाव में रहे और आफ्टरनून ट्रेड तक आते आते लगभग 1280 अंक गिर गया था सेंसेक्स। लेकिन अगर एक ऑप्टिमिस्टिक की तरह हम उसके बाद देखें, जो 700 अंकों से अधिक की बढ़त आई, ये आपको क्या सिग्निफिकेंट लगती है? कैसे देखते हैं आप बाजार की स्थिति को?
2: देखिए, जब से हम पिछले कुछ सप्ताह में जो हमने गिरावट देखी है बाजार में और सिक्वेंशियली वो गिरावट हम देखते आ रहे हैं, ये अगर आप गिरते हुए बाजार के की इतिहास को देखें, ये कौन कौन से ऐसे वक्त रहे हैं जहां पे बाजार में गिरावट आई है और इस पैमाने इस लेवल में इस स्तर में गिरावट हुई, तो सबसे 6 बड़े गिरावट के जो पीरियड्स हैं 2000-2008 उसमें आ जाएंगे ये तो ये वाला पीरियड है। पर अभी भी जो गिरावट हुई है, क्योंकि हम इतने ऊंचे स्तर पे थे, उतना नहीं हुआ है जितना वो जिन सालों के बारे में बात किया 2008-2010 उन टाइम्स में ऐसा नहीं हुआ। 2000 में जब .com बबल कहा जाता था, तो
1: 2013 में
2: हाँ जी, तो जी। वो अभी वो टॉप 6 में हम आ गए हैं, जो काउंटडाउन होता है गानों गीतों का होता है, रेडियोज में आते हैं, तो उसमें तो आ गया है। पर ये एक पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है। पर दूसरी बात ये है कि अब अगर हम आप इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली देखा जाए जी। तो हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि स्टॉक्स जो हैं ज्यादातर शेयर बाजारों में दबाव में हैं, तो रिस्क हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स को अगर या शेयर्स को अगर आप हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो रिस्क लेने की जो एपेटाइट है, जो भूख है, जो आपका अर्ज है वो पीरियोडिकली कम होता जा रहा है। हाँ, कई लोग हम इमीडिएटली कहेंगे कि आप देखिए अमेरिका में बढ़ रहा है और दूसरी जगह में बढ़ रहा है, वहां पे कारण है, फंडामेंटल रीजंस हैं, वहां पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल्स आ रहे हैं वो काफी मजबूत फाइनेंशियल्स हैं, तो फिर आपके एआई रिलेटेड बातें। पर ये हमें देखना पड़ेगा, अगर बॉन्ड मार्केट यील्ड्स के बारे में बात की, दुनिया के सारे बॉन्ड बाजारों में बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं, तो कई जगह में कई
1: जो स्टॉक मार्केट के बजाय अभी बॉन्ड मार्केट्स में ज्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं इन्वेस्टर्स।
2: बिल्कुल नहीं, वो क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि यील्ड अगर बढ़ेगा तो आपका प्राइस घट रहा है, इसका मतलब आपको उससे भी ज्यादा यील्ड वाले बॉन्ड चाहिए होंगे, तो अगर आप बेचना चाहेंगे तो फिर मुश्किल है। अगर आपके होल्डिंग्स में आपके फंड मैनेजर ने बॉन्ड्स ले रखे हैं, या तो आपने डेट फंड लिया है या किसी और में लिया है, तो उसके तो वैल्यू नीचे जा रहा होगा। पर अगर आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, बिल्कुल मतलब मान लीजिए 30, जैसे मान लीजिए अमेरिका के जो है वो ऑल टाइम हाईस में चल रहे हैं, तो 30 साल होल्ड करना पड़ेगा, तो जो 30 साल का व्यक्ति है वो 60 साल की उम्र तक वो होल्ड करेगा, ऐसा होता तो नहीं है, ठीक है ना। तो जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो बाजार में ट्रेडेड होते हैं वहां पे दबाव है।

0: तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये दबाव तब तक रहेगा जो एक फंडामेंटल जो बिल्डिंग ब्लॉक है या जो इस्तेमाल होता है कच्चे तेल के दाम, जब तक उसमें निश्चितता नहीं आएगी तब तक दबाव में रहेगा। कुछ देशों में कम रहेगा जो लोग खुद आयात पे निर्भर नहीं करते और उनमें कम रहेगा। हम भारत जैसे अर्थव्यवस्था जहां पर हम ज्यादातर अमाउंट में हम लोग आयात करते हैं, हम लोग हमारे ऊपर प्रेशर पड़ा रहेगा। तो वो आप कॉर्पोरेट फाइनेंशियल्स में उसका इम्पैक्ट हमें उसकी आशंका रहेगी और आप पाएंगे कि
1: अब जब रिजल्ट्स आने शुरू होंगे
0: थोड़ा बहुत इफेक्ट तो जरूर जरूर होगा। तो ये स्टॉक मार्केट क्योंकि उसे लीड इंडिकेटर बोला जाता है, वो आगे से ही भापने की कोशिश करते हैं, आपको सिग्नल देते हैं, संकेत देते हैं कि कैसा आगे चल के होगा। उसको लीड इंडिकेटर, कई ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो लीड इंडिकेटर्स माने जाते हैं, तो स्टॉक मार्केट को बोला जाता है। तो ये आप देखेंगे, ये जब तक तेल कच्चे तेल के दाम जो है सब, अगर आप एक चीज की तरफ अगर जी, आपको जी. उंगली डालनी है, टू पॉइंट योर फिंगर एट वन, पुट योर फिंगर एट वन, तो वो कच्चे तेल के दाम अगर ये कल स्थिर हो जाता है, आपको आइडिया हो जाता है,
1: जो ज्यादा इंपोर्टर नेशंस हैं उनको ज्यादा इंपैक्ट करता है,
0: कल अगर ये सॉर्ट आउट हो जाएगा ना, मैं आपको पूरे मतलब वैसे तो आपने प्रोग्राम से पहले डिस्क्लेमर दे ही दिया है, तो फिर भी मैं कहने के लिए, और मेरे से बहुत ज्यादा लोग डिसएग्री नहीं करेंगे कि ऑटोमेटिकली आप दे पाएंगे कि पूरे माहौल में काफी परिवर्तन और फर्क आ जाएगा। तो ये बना रहे जब तक रहेगा तो ये शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली पिवर्ट वगैरह वगैरह, पर जो छोटे निवेशक हैं जो इस प्रोग्राम के सुनने वाले हैं उनको वही काम करना है जो वो हमेशा करता है, नियमित रूप से निवेश करना, कोई नई चीजें नहीं करनी। जब मार्केट सीधी वर्टिकली ऊपर जा रही थी तब भी कुछ अलग नहीं करना था। एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि क्योंकि हम किताबें पढ़ते हैं प्रोग्राम देखते हैं, हमें लगता है निवेश जो है कुछ उसमें कुछ खास करना पड़ता है। तो निवेश एक व्यायाम की तरह है, आपके डेली जो आप खाना खाते हैं हेल्दी खाना खाते हैं उसकी तरह है। वो बोरिंग होना होता है उसको, ये नहीं कि उसमें कुछ खास चमत्कारी कुछ होता है, चमत्कारी नहीं होता, चमत्कारी लोग बोलते हैं, हम जैसे एक्सपर्ट आके हो सकते हैं
2: एक्सरसाइजिंग या
0: जी, तो लोग ऐसी बात करेंगे
1: जैसे वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज भी हैं निचले दामों पर।
0: हाँ, पर वो उसके लिए आपके आप में वो मतलब जिगरा चाहिए जिसे कहते हैं कोलोकियल टर्म्स में, सो यू नीड टू हैव एन एपेटाइट फॉर दैट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस ऐसे, और जाते जाते मैं इस बात को खत्म करते करते एक बात और बात कहूं कि ये हमने हमारे देश में शोध हुआ है कि आप मार्केट में जो ऐसी गिरावट आती है उसमें उसके बाद जब रिबाउंड होता है सबसे ज्यादा वेल्थ जो क्रिएट होते हैं, जो आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो इस रिबाउंड में होता है। क्योंकि आप और हम जैसे लोग, इवन सबसे ज्ञानी गुनी लोग भी पता नहीं कर सकते कि कौन सा कब जाके बॉटम मार्केट रीच करता है, इसलिए आपको इन्वेस्टेड होना पड़ता है। तो जैसे एक वोल्टेज स्टेबलाइजर वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, जितनी देर तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे बाजार में निवेशित रहेंगे वो एक साल में ऊपर नीचे ज्यादा होगा, दो साल में थोड़ा कम होगा, आगे चल के बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज की तरह हो जाता है
2: जी। And with that, let's also move towards the next story for this evening. India's economy is expected to grow by 7.3% in the second quarter of financial year 2027, supported by resilient domestic demand and investment. According to the Finance Ministry's monthly economic review for September, the economy entered the second quarter of current fiscal from a position of strength after recording 7.8% growth in the first quarter. However, it cautioned that India cannot take its growth performance for granted as geopolitical polarization and disruptions across global supply chains intensify. Higher oil prices, tightening global financial conditions and trade uncertainty pose challenges to sustaining the growth momentum. The review highlighted that high-frequency indicators for July to August suggest growth has continued into the second quarter, although at a more measured pace. So very quickly on this, Udin, this projection has also said that at the current run rate of nearly $400 billion in total exports achieved in the first 5 months of 2026, the country's overall export value for the full financial year could reach approximately $1 trillion. So what could be driving this kind of growth? And also we've been able to

0: Number two is we have been diversifying our basket.
1: Mm-hmm.
0: Okay, and lot of some our products have become high value added, like mobile phones and stuff like that, electronics. So they are very high value added. Second is things like petroleum related stuff, where the prices are going up. So these would have added a kicker out there. Last but not the least would be these trade agreements. Some of these things must be coming into play. So they haven't come into play all that much in the level at levels that we would like. But in the next 6-7 maybe 8 months, we will see those benefits coming in, and you know, smart entrepreneurs catching in.
1: It's kind of laying the groundwork for future prosperity.
2: उदित, आपको लगता है कि करंट स्थिति में ब्रीफली क्या लगता है आपको, जो ग्रोथ पर भी जैसा कि इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि काफी है, चुनौतियां हैं. एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन के लिए भी चुनौतियां, जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि आरबीआई के लिए जो अब मंडे से वेंसडे तक उनकी पॉलिसी मीटिंग होने वाली है, एक बहुत मुश्किल फैसला है?
0: मुश्किल फैसला तो है, क्योंकि आपने FCNR के जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं वहां से जबरदस्त अपने कलेक्शन किया, तो इसका मतलब बहुत लिक्विडिटी थी. आपने गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन करके वो लिक्विडिटी सक आउट किया है, पर फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि सिचुएशन कहाँ पे है.
2: तो इंटरेस्ट रेट्स के लिए क्या आपको लगता है कि किस तरह का डिसीजन?
0: देखिए, ज्यादातर लोगों का मानना है कि जैसे फेड है वैसे ही आरबीआई रेट हाइक करेगी. अब वो कब करेगी और हमारे उसपे कितना प्रेशर है, ये तो आरबीआई वो कर पाएंगी. पर मुझे लगता है कि, और ज्यादातर लोगों का मानना है कि, एक या दो रेट हाइक्स शायद ऑन द कार्ड्स है. वो कब आएगा नोबडी नोज, बट हम उम्मीद कर सकते हैं.
2: अब अगली खबर लेते हैं. सितंबर में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में तेजी आई है. नए ऑर्डर और उत्पादन में वृद्धि के चलते इस क्षेत्र का क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI 7 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. HSBC इंडिया विनिर्माण PMI अगस्त के 52.8 से बढ़कर सितंबर में 55.1 हो गया. वहीं दूसरी तिमाही का औसत PMI 53.8 रहा. रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत घरेलू और वैश्विक मांग से बिक्री और उत्पादन बढ़ने के बल पर भारत का फैक्ट्री क्षेत्र बीती तिमाही में मजबूती पर बंद हुआ. मांग में बढ़त व्यापक थी. इलेक्ट्रॉनिक, खाद्य, दवा और कपड़ा उत्पादों में तेजी से नए व्यापार में वृद्धि आई. बहुत ही उत्साहजनक आंकड़े हैं ये. सेल्स और प्रोडक्शन दोनों में इतनी जो मजबूती बनी हुई है, आपको लगता है कि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं बाजार में, वो भी इन जो आंकड़े हैं उनका संज्ञान लेते हैं?
0: बिल्कुल लेना चाहिए. और देखिए, अगर 7% से अगर देखिए, एक और आर्ग्यूमेंट है
2: जो,
0: अगर 7% से अगर आपकी GDP ग्रो करती है, आप ये मान के चलते हैं, और 4 या 4.5% इन्फ्लेशन करते हैं, तो आपके जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके तो 11.5% तो वैसे ही ग्रोथ नॉमिनल टर्म्स में आप देख रहे हैं
2: जी.
0: ये ग्रोथ आपको कहाँ पे, कौन सा दूसरा इन्वेस्टमेंट सोर्स आपको देगा? तो आपको कई बार ना इस तरीके से थंब रूल्स, ऑल्दो दिस इज नॉट अ वेरी कल्चर्ड और वेरी इवॉल्व्ड आर्ग्यूमेंट, पर अगर आप थंब रूल से देखें, मतलब बैक ऑफ द एनवेलप करें, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे पोटेंशियल है. क्योंकि जो अगर आपके सबसे बेहतरीन जो कंपनीज हैं वो इकोनॉमी के उनकी वृद्धि दर के को मैच तो करेंगी
2: जी.
0: और अगर ऐसा होता है, टैक्स के बाद आपका जो रिटर्न आता है, इन्फ्लेशन के बाद जो रिटर्न आता है, वो तो नेट पॉजिटिव जा रहा है और वेरी हेल्दी पॉजिटिव आ रहा है.
2: इनफैक्ट जो आप बोल रहे हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक मजबूती दिखाई दे रही है धरातल पर, उसका एक और प्रमाण है वस्तु और सेवा कर GST संग्रह में. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सितंबर माह में कुल 14.7% की वृद्धि दर्ज की गई और ये 2,03,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा. एकीकृत GST संग्रह 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा. घरेलू गतिविधियों से प्राप्त सकल GST राजस्व में 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई और ये लगभग 1,38,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. वहीं आयात से प्राप्त संग्रह में लगभग 26% की वृद्धि दर्ज की गई और ये 65,525 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. और आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का. एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 225.3% के उछाल में रहा और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 2% की बढ़त दर्ज हुई. यूरोपीय बाजारों में समाचार तैयार किए जाने तक लंदन का फुटसी 1% के नुकसान पर था और जर्मनी के डैक्स में 0.1% की मंदी थी. तो बहुत डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रही है वर्ल्ड मार्केट्स में.

0: the country's economy to grow by 7.3% in second quarter of current financial year, and government needs to encourage households to shift more savings to long-term pension products, says Chief Economic Advisor V. Anant Nageshwaran. And with that, it's a wrap on today's Market Mantra. Take care and see you in the next one.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिस्क।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
3: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
2: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देश भर के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विद्यार्थी दायित्वपूर्ण नागरिकता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने और स्वच्छ हरित तथा स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विमान यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ मच्छर के असाधारण साहस और सूझबूझ पर देश को अत्यधिक गर्व है। श्री नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है। सरकार ने पात्र दिव्यांगजनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण से जुड़े दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से बनाए गए वाहनों और दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों को छूट वाला फास्टैग जारी किया जाएगा। ये सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र UDID कार्ड या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 571 अंक लुढ़ककर 71,910 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 199 अंकों की गिरावट से 22,422 दर्ज हुआ। खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों की स्किफ स्पर्धा में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने और कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांस्य पदक हासिल किया।

0: Team settled for a bronze medal each. In men's hockey, India defeated arch rivals Pakistan 4-3 to enter the final. India's overall tally is 65, including 10 gold, 23 silver and 32 bronze. Benchmark domestic equity indices extended the losing streak for the fourth straight day today. The Sensex plunged 571 points to close at 71,910. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 15वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी और वरिष्ठ पर्यावरणविद आनंद कुमार शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
2: नमस्कार। विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में आप सभी का स्वागत। विकास की दौड़ में आज दुनिया के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक ओर ऊर्जा की बढ़ती मांग और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, तो दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से पर्यावरण और मानव जीवन की रक्षा करना। भारत ने इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, सौर शक्ति, जैव ईंधन, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और जलवायु अनुकूल विकास को अपनी नीतियों में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों के दौरान गुजरात में जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थापना से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस और मिशन लाइफ जैसी पहलों तक हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव सामने आए हैं। गुजरात का चारण का सोलर पार्क देश में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से घरों की छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जरिए भारत वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विस्तार में सहयोग कर रहा है। और आज हम चर्चा करेंगे कि भारत की सौर क्रांति किस दिशा में आगे बढ़ रही है, कहां तक पहुंची है, ऊर्जा सुरक्षा में स्वच्छ ऊर्जा की क्या भूमिका है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विज्ञान तकनीक नीतियों और जन भागीदारी का किस प्रकार समन्वय किया जा रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक श्री अरुण त्रिपाठी और भारत मौसम विज्ञान विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक श्री आनंद शर्मा। आप दोनों मेहमानों का आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार।
2: और आइए सुनते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत क्या कुछ कर रहा है और अभी तक क्या कुछ किया जा रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से।
5: भारत में सौर ऊर्जा देश के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। बड़े सोलर पार्क से लेकर घरों की छतों तक सौर ऊर्जा का विस्तार लगातार हो रहा है। भारत की इस यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत और फ्रांस की पहल पर 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान शुरू किया गया आईएसए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक सहयोग मंच है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा की तैनाती को गति देना और तकनीक, निवेश, क्षमता निर्माण तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। देश के भीतर सौर ऊर्जा को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ी पहल है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को इसे मंजूरी दी। योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है। इसके लिए 75,021 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में भी पिछले एक दशक में बड़ी वृद्धि हुई है। 31 जुलाई 2026 तक देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 164.59 गीगावाट हो चुकी थी। वर्ष 2014 में ये क्षमता लगभग 2.8 गीगावाट थी। सौर ऊर्जा का विस्तार केवल अधिक बिजली पैदा करने तक सीमित नहीं है, इसका संबंध ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने से भी है। साथ ही रूफटॉप सोलर के विस्तार से परिवार बिजली की लागत कम करने और कुछ मामलों में अतिरिक्त बिजली से आय अर्जित करने में भी सक्षम हो रहे हैं।
2: आनंद शर्मा जी, आपसे ही शुरू करते हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थापना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की पहलें बहुत चर्चा में रही हैं। गुजरात के इस अनुभव ने देश की जलवायु और ऊर्जा नीतियों को किस प्रकार प्रभावित किया है? क्या गुजरात का जो ये मॉडल था, ये देश के दूसरे राज्यों के लिए भी उपयोगी साबित हो रहा है?
3: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है ये विजनरी स्टेप था, और वो भी 2009 में, जब शायद इतनी ज्यादा चर्चाएं नहीं हो रही थी नेशनल और ग्लोबल लेवल पर। उस समय एक स्टेप लेना और एक ऐसे डिपार्टमेंट का गठन करना जो कि ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन अडेप्टेशन मुद्दों पे जिसने एक लीड रोल निभाया, और एक उसी विभाग के अंडर जो है उन्होंने अपना एनर्जी का डिपार्टमेंट है, गुजरात एनर्जी डिपार्टमेंट, उसकी भी स्थापना की, और वो आज एक पूरे इंडिया के लिए रोल मॉडल है, वर्ल्ड के लिए रोल मॉडल है। करीब करीब वहाँ पर आप देखेंगे तो 100 गीगावाट जो है सोलर एनर्जी आज जनरेट की जा रही है, और 2030 तक उसका टारगेट शायद 150 गीगावाट का है, और 2050 तक 300 गीगावाट का है। और उसी की देखरेख में, उसी की पहल को देखते हुए अन्य स्टेट जो है, केरल भी है, तमिलनाडु, राजस्थान, वो भी उसको फॉलो कर रहे हैं, और एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और मुझे लगता है भारत जिस तरह से सौर ऊर्जा में गुजरात ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अभी फिलहाल मोदी जी, उनके अंडर जो विजनरी स्टेप लिया था, वो एक मतलब कि इस समय जो दिख रहा है कि उस समय जो स्टेप लिया था, आप सोचिए कि इस समय जब लड़ाइयाँ शुरू हुई खासकर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, और हमारी एनर्जी जो है पेट्रोल डीजल ये सब प्रभावित हुआ है, तो अब समझ आ रहा है कि देखिए उस समय जो लिया हुआ स्टेप है कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। तो वो एक बहुत ही विजनरी स्टेप था, और मुझे लग रहा है आज इसको हम और मतलब जैसे कहते हैं गति लानी होगी, और उसके लिए भी सरकार जो है पूरा सब्सिडी दे रही है, के साथ साथ जो उसके लिए इंटरेस्ट जो है 5 और 6% पे इंटरेस्ट पे पैसा भी मिल रहा है सोलर पैनल लगाने का। और आपने जैसे कहा पीएम सूर्य घर, करीब करीब 10 लाख घर जो है वो इसको लगा चुके हैं, और मुझे लगता है टारगेट शायद 1 करोड़ जी से ज्यादा घरों का है आने वाले दिनों में। और उसके साथ साथ सोलर पंप्स, वो एक बहुत फायदा हुआ किसानों को। कई बार क्या होता है आपके ग्राउंड में पानी तो है मगर आपके पास डीजल नहीं है उसको निकालने के लिए पानी के, सोलर पंप है तो आप खासकर सिंचाई कर पाएंगे फसल को उस समय जब आपकी लंबे समय से बारिश नहीं होती है। तो आपको ये देखिए ये जो एनर्जी सिक्योरिटी मिली उससे आपको फूड सिक्योरिटी में भी फायदा हो रहा है
2: जी।
3: तो ये एक बहुत अच्छी पहल है मैं कहूंगा, और अन्य कंट्रीज को एग्जांपल दिया जा रहा है जहां यूरोप और चाइना इवन उनकी पूरी इकोनॉमी कोल बेस्ड है, और खासकर लड़ाई के बाद उन्हें पूरा कोल पे आ गए, और वहीं इंडिया जो पहले शायद 5-7 साल पहले हम भी यही बात कर रहे थे, पर अब हमने शिफ्ट होके सोलर पे आ गए, तो जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा होगा, एनवायरमेंट के लिए अच्छी बात होगी ये, क्योंकि हमें जीरो कार्बन पे आना है मिनिमम, और नेचुरली कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो आपकी तो क्लाइमेट चेंज में मिनिमम होगा या कम हो जाएगा, तो और यदि वो होता है तो हैजार्ड्स कम होंगे, हैजार्ड्स कम होंगे तो आपके जो पैसा और उससे जो नुकसान होता है और वो रिलीफ में जो पैसा था वो बचेगा, और वो पैसा फिर डेवलपमेंट में जाएगा। तो ये अल्टीमेटली लिंक्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से,
2: और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ये फुल साइकिल आपने चर्चा की। आनंद शर्मा जी, 25 सालों का अनुभव सार्वजनिक जीवन में बहुत लंबा अनुभव होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और जो अनुभव वहां से उन्होंने इकट्ठा किए उसे प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी दूरदृष्टि को देखते हुए उन्होंने लागू किया, और उसके जो परिणाम हैं आज हम वो देख रहे हैं। हम कई देश में, शहरों में, कई राज्यों से जब गुजरते हैं तो घरों की छतों पर लगा हुआ सोलर पैनल इस बात की गवाही देता है। आज कई राज्य हमारे, कई शहर जो हैं, जितनी अपनी ज़रूरतें हैं उससे कहीं ज़्यादा बिजली उत्पादन कर रहा है। और आपने अभी जिस पूरी एक साइकिल की बात की देश के विकास में किस तरीके से लोगों की बिजली की बिल में जो बचत हो रही है वो पैसा अल्टीमेटली जीडीपी में बढ़ावा दे रहा है और हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कहना है आपका कि ये क्या जो सोलर पैनल हैं घर घर में कहाँ तक हम पहुंचे हैं, और आगे 5 से 10 साल में हम कहाँ तक पहुंचने वाले हैं?
3: नहीं देखिए, बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुई है उसमें कोई डाउट नहीं है। यदि पूरे वर्ल्ड लेवल पर चले तो इंडिया की प्रोग्रेस सराहनीय है, और कुछ स्टेट जो है बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये पहला स्टेप गुजरात में लिया गया तो गुजरात तो बहुत जबरदस्त कर रहा है। आपने अभी एक वो पार्क की बात करी, वो उसके अभी खेवड़ा जो है सोलर पार्क है वो तो बहुत जबरदस्त, उसके कहते हैं 30 गीगावाट, जो कि एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट या कोई थर्मल पावर उतनी एनर्जी जनरेट करने वाला है, जो कि करीब करीब मुझे लगता है 5,300 एकड़ में फैला हुआ है, और आपने आप में शायद ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर एक जनरेशन वाला रीजन होगा। तो एक ये बहुत बड़ी पहल है, और आपने भी सही कहा कुछ दिनों में ये गुजरात जो होगा सरप्लस स्टेट में होगा, और वो यही नहीं कर रहे उसके साथ साथ उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग वहां शुरू कर दिया है, मतलब कि पानी भी होगा आपके पास, ऊर्जा भी हो सकता है, और वो सब ये मार्जिनल लैंड में जहाँ कुछ ग्रो नहीं करता था। तो ये भी बड़ा अच्छा है कि वो वाली कोई अच्छी वाली, कई बार लोग कहते हैं ना उपजाऊ भूमि खराब हो गई, वो भी नहीं है, तो मार्जिनल लैंड थी, तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाया है। और हु नोस कि कल को उसी के नीचे कुछ और पानी हार्वेस्ट हो जाएगा तो कुछ और लगने लग जाएगा। तो ये सोलर पैनल बड़ी अच्छी प्रयास है, और मुझे लग रहा है इसको जिससे वार फुटिंग पे मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये क्राइसिस को अभी जो हाल ही में एनर्जी क्राइसिस हुआ है, तो हर घर पे हर बिल्डिंग पे ये जरूर देखने चाहिए और वार फुटिंग पे ये काम होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और ये होता है तो हम लोगों की जीडीपी भी बढ़ेगी, जो हमारी निर्भरता है दूसरे देशों से डीजल पेट्रोल की वो करने के लिए, वो भी खत्म होगी। और जब एनर्जी सिक्योरिटी आपकी बढ़ेगी तो आपकी फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, और आप एक सुपर पावर भी बन पाएंगे।
2: बिल्कुल, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक अरुण त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास आते हैं। त्रिपाठी जी, पिछले 12 वर्षों के दौरान देश में जो सौर ऊर्जा की क्रांति हुई है, काफी घरों की छतों पर अब हम देखते हैं सोलर पैनल लगा हुआ है, और हर घर लगभग बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। अब ये नहीं है कि बिजली आएगी गांव में, पोल लगेगा तब होगा, लोग बड़े आराम से उसको लगा रहे हैं और सरकार सहयोग कर रही है। तो इन 12 वर्षों में अगर सिर्फ सोलर पैनल की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, तो आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं, कहां से कहां हम पहुंचे हैं?
3: एक समय ऐसा आ रहा था कि नेचुरली आपको मालूम होगा कई प्रदेशों में तो बिजली आती ही नहीं थी, और आती भी थी तो मात्र 3-4 घंटे रहती थी। अब क्या है, लोग इंडिविजुअल अपने यहाँ जब से लगाने लगे हैं तो उनके पास अब घर में बिजली भी आ रही है, और नेचुरली बिजली होगी तो पढ़ाई लिखाई भी बढ़ेगी आपकी, और साथ साथ आपके सोलर पंप हैं, आप पानी भी निकाल पाएंगे, तो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी आपका बढ़ रहा है, बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन। अच्छा, एक समय पर यह बात हो रही थी कि ऑफ द ग्रिड, मतलब आपको मेजर ग्रिड से जुड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सोलर पैनल लगाइए और अपनी बिजली खुद पैदा कीजिए। और अब जिस तरह से ये बढ़ रहा है, तो फिर बात हो रही है कि ये वाली जो ग्रिड है ऑफ ग्रिड ने, इसको मेन ग्रिड से, मतलब आप खुद तो अपने घर का खर्चा निकालेंगे ही बिजली का, और बेचेंगे भी सरप्लस को। तो अब ऐसी स्थिति आ रही है कहीं जहां ज्यादा बिजली प्रोड्यूस हो रही है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द मेन ग्रिड,
2: मतलब आप अपनी जरूरत तो पूरी कर ही रहे हैं निःशुल्क, और साथ ही पैसे भी कमा रहे हैं। बिल्कुल आनंद जी, आपसे एक सवाल और है कि जलवायु परिवर्तन जो है आज केवल पर्यावरण का विषय ही नहीं रहा, बल्कि कृषि, जैसा भी आप बता भी रहे थे, कृषि है, स्वास्थ्य है, जल संसाधन है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये हमारे आर्थिक विकास से भी जुड़ा हुआ है।
3: जी,
2: भारत में बदलते मौसम के पैटर्न और चरम मौसमी घटनाओं को देखते हुए, कहीं बहुत तीव्र गर्मी है तो कहीं बहुत ठंडा है, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा है, इन सबको देखते हुए जलवायु अनुकूल विकास की क्या आवश्यकता है, और मौसम विज्ञान विभाग इस दिशा में किस प्रकार से योगदान कर रहा है?
3: देखिए, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट की बात हो रही है, वो एक बेसिकली एक स्ट्रेटेजी है जो कि कंबाइन करती है अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन टू रियलाइज द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि ये दोनों चीजों को अलग अलग नहीं मानते हैं, कह रहे हैं क्लाइमेट एक्शन को प्रमोट करेंगे आप तो यू विल बी बिल्डिंग रेजिलियंस इन द सोसाइटी, मतलब कि अडेप्टेशन है एक तरफ आपका मिटिगेशन है, और ये साथ में जुड़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ। तो बेसिक गोल तो क्या है कि हमें, यदि आपको क्लाइमेट एक्शन जो है उस पर मेजर फोकस है, और क्लाइमेट एक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है आपका अडेप्टेशन, एक है मिटिगेशन। मिटिगेशन में मीन्स है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन हो रहा है, नेचुरली आपको ये तो मालूम ही होगा, एस्पिरेशनल सोसाइटी है, सबको बड़े घर चाहिए, कारें चाहिए, रहन सहन की और सहूलतें चाहिए, तो जब आप ये प्रोवाइड करते हैं तो आप ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन करते हैं, और उसके चलते जो होता है ग्लोबल वार्मिंग होती है, और वो ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उस क्लाइमेट चेंज से नेचुरली जब क्लाइमेट जल्दी से बदलेगा और जबरदस्त बदलाव आएंगे, तो चरम सीमाएं, मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगी, कभी सूखा होगा, कभी फ्लड होंगे, कभी हीट वेव होगी, तो ये सब करने के लिए, इसको बचने के लिए हमें मिटिगेशन बड़ा जरूरी है कि हम कम से कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करें, यानी कि हमारा जीरो कार्बन इकोनॉमी की तरफ हमें आगे चलना है। मिटिगेशन आ गया ये पहला। दूसरा एस्पेक्ट हो गया इसका अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब है कि जहां भी कोई रिस्क है, समुद्र के पास है, गुजरात की बहुत बड़ी कोस्ट है, या ज्यादा पूरा इंडिया में इतनी, वहां पे सी लेवल राइज का खतरा लोग कह रहे हैं, साइक्लोन का खतरा रहता है, तो ये जो खतरे हैं उसमें कहां रिस्क है, वो रिस्क को जानना, और उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम, उसके लिए मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। यदि आप सही समय पे, आपको रिस्क मालूम है और आप हजार्ड को प्रिडिक्ट कर देते हैं, उसकी वार्निंग जनता को दे देते हैं, उनको समय पे हटा देते हैं, तो जान माल आप बचा लेंगे। और यदि आप ये कर लेते हैं तो वही बात होगी, आपका पैसा बच गया, वही पैसा आप डेवलपमेंट में जाएगा जो कि रिलीफ में जा रहा था पहले। तो यही अडेप्टेशन और मिटिगेशन है, और जब अडेप्टेशन मिटिगेशन ढंग से होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। अदरवाइज क्या होगा, हर बार हैजार्ड आएगा, आपने प्रेडिक्शन नहीं किया, हजारों जाने जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर उजड़ेगा, और आपका पैसा रिलीफ में जाता रहेगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और उसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखनी कि जब हम इतने सारे काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड हमारी चॉइसेस होनी चाहिए, यानी कि ये है कि ऐसा ना हो कि हम घर बना रहे तो वो उसके चलते क्या हुआ, घर ऐसी जगह पे बना दिया कि वो हजार्ड बाढ़ में बह गया। तो आपस में इन सब में लिंक्स होने चाहिए अक्रॉस द पॉलिसी, मतलब हाउसिंग, एनर्जी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, जिससे कि ऐसा ना हो कि एक को फिक्स करते हुए हम दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। तो आपस में एक इंटेग्रेटेड वो रहना चाहिए, मगर साथ में ये भी ध्यान रखना है हमें कि क्लियर इंप्लीमेंटेशन जो गैप है उसको क्लियर करना है। अभी क्या है कि कहीं चीजें तो हम बोल रहे हैं, कमिट कर रहे हैं उनको, बट उसको अभी शायद उसका कार्यान्वयन करने की बहुत स्कोप पड़ा है हमारे पास, और यदि वो हम करते हैं तो ये गैप जो है हमारे गोल में और एक्शन में अभी थोड़ा गैप है, उसको पूरा करना होगा।
2: आनंद शर्मा जी, सौर ऊर्जा उत्पादन और सौर उपकरणों का जो निर्माण है, इस क्षेत्र में भी भारत ने काफी प्रगति की है। पहले हम इसे आयात करते थे, अब उत्पादन तो हो ही रहा है, और इसके उत्पादन में जो सामान लगता है, जो उपकरण लगते हैं, उसका निर्माण भी हम घरेलू स्तर पर कर रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से, आप अभी बात कर रहे थे एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से, ये कितना महत्वपूर्ण है?
3: नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई, क्योंकि ऐसा था, अभी जब हम कुछ साल पहले चले जाएं, 10 साल पहले, तो एक्चुअली जितने भी सोलर पैनल थे हम सब लोग इम्पोर्ट कर रहे थे, और इम्पोर्ट कर रहे थे वो तो एक चीज थी। उसके बाद में जब से फिर ये चला आगे को, तो जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो अब सवाल आया कि भाई दिन में तो हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं और रात को तो नहीं है, तो इसको स्टोर कहाँ करें एक्स्ट्रा को? तो उसके लिए बैटरीज की बात आई, लिथियम बैटरी, वो भी हम कहाँ से इम्पोर्ट कर, बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे, तो हमारा बहुत सारा पैसा उसमें लग जा रहा था। अब यह है कि बहुत लार्ज स्केल पे जो है अब हमने ये सोलर पैनल्स इंडिया में बनने लग गए हैं, और ऐसे ही बैटरीज भी बनने लग गए हैं, मगर फिर भी आज बहुत जरूरत है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लिथियम हमें जो है उसके लिए, और सिलिका जो कहते हैं हमें इसके लिए चाहिए सोलर पैनल्स की, इन दोनों पे आज भी हमें निर्भर होना पड़ रहा है चाइना के ऊपर। तो वो निर्भरता हमको कम करनी पड़ेगी, इनोवेटिव कहते हैं हमें टेक्नोलॉजीज और डेवलप करनी पड़ेंगी स्टोरेज के लिए, और पैनल्स बनाने के लिए भी हमें मतलब सिलिका से जो है जो उस पर डिपेंडेंस है उसको खत्म करना पड़ेगा। यदि वो हम खत्म कर पाते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह की हमारी भारत सरकार की पॉलिसीज हैं, तो हम शीघ्र ही उसमें भी मतलब कि अच्छे रिजल्ट आएंगे हमारे सामने में, और ऊर्जा में तो डेफिनेटली आ ही चुके हैं, और ये तो बिल्कुल बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे। सिर्फ हमें जो दो करने की जरूरत है वो यही है कि लिथियम ये जो बैटरीज हैं वो भी हम पूर्ण अपने मतलब कि खुद ही सेल्फ रिलायंट हो जाएं उसमें भी, और पूरे पैनल को बनाने से लेकर उसके जो उसमें जो सिलिका जो भी पार्ट लगते हैं उसमें भी हम पूर्ण सेल्फ रिलायंट होना हमें जरूरी है अभी।
2: और आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में मिशन लाइफ क्या है।
4: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीतियों और तकनीक के साथ साथ हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली में बदलाव भी जरूरी है। इसी सोच के साथ भारत ने मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य लोगों और समुदायों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। मिशन के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं: ऊर्जा की बचत, पानी की बचत, कचरा कम करना, ई कचरा कम करना, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, और टिकायु खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के एकता नगर में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया था। मिशन लाइफ के तहत देश भर में अब तक 40 लाख से अधिक गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 7 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया है। बच्चों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए देश भर में 12 लाख से अधिक इको क्लब भी मिशन लाइफ के तहत काम कर रहे हैं। मिशन लाइफ का संदेश है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों और संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है। मिशन लाइफ इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल यानी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है, और टिकायु जीवन शैली को जन भागीदारी से जोड़ता है।
2: आनंद शर्मा जी, इसके माध्यम से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, काफी बड़े पैमाने पर सरकार कर रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में आम नागरिकों की दैनिक आदतों, ऊर्जा बचत, जल संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन और टिकाऊ उपभोग की कितनी भूमिका हो सकती है, और इस मिशन को जन आंदोलन का स्वरूप देने में मौसम विभाग और पर्यावरण जागरूकता की खास तौर पर क्या भूमिका आप देखते हैं?
3: बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि ये जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो इनिशिएटिव था, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में जो आपका COP26 हुआ था ग्लासगो में, वहां ये इन्होंने ये इनिशिएटिव जो था लिया था, और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये, और इसका बेसिकली जो मेन है टू प्रमोट माइंडफुल कंजम्पशन एंड रिड्यूस माइंडलेस कंजम्पशन। अभी समय क्या हो रहा है, माइंडलेस कंजम्पशन हो रहा है, जबकि होना चाहिए माइंडफुल कंजम्पशन, यानी कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और साथ में रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन भी। दूसरा है कि अभी तक हम कर रहे थे यूज एंड थ्रो, यूज करो थ्रो करो, और उससे क्या हो रहा है गार्बेज और बड़े बड़े कूड़े के पहाड़, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है, तो उसको अब चेंज कर दिया है सर्कुलर इकोनॉमी में, यानी कि आप कचरा भी पैदा करेंगे तो उसको सेपरेट भी करेंगे और उसको आप रीयूज करेंगे। जैसे कि आपका वेस्ट निकल गया बायोमास, उससे आप बायोमास से आपने एनर्जी निकाल ली, आपने उससे आपने कहते खाद बना ली, आपने उसको मल्च की तरह यूज कर लिया खेती में, ये बहुत सारे बेनिफिट हो गए उससे, बायोगैस बना ली आपने, तो ये सर्कुलर इकोनॉमी में सब आ रहा है। और उसमें पूरे एकदम जैसे कहते हैं ना एसओपी बनी है बड़े अच्छे ढंग से कि हर चीज़ को मॉनिटरिंग भी हो रही है और उसमें जॉब भी क्रिएट होंगी और आपका वेस्टेज भी मिनिमम होगा, और ये प्रमोट करता है इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को। और इसमें फोकस क्या है, फोकस है आपका प्रो प्लैनेट पीपल, यानी कि हर जो नागरिक हो वो एक जिसे कहते हैं ना एक्टिवली प्ले करेगा कि भाई मैं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, प्रो प्लैनेट पीपल, वो इसका मेन फोकस है। तो उसमें आपने पूछा कि मौसम विभाग और पर्यावरण विभाग का क्या रोल हो सकता है इसमें, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आज की स्थिति आ रही है वो ये आ रही है कि जो ज्यादातर लोग एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, एयर कंडीशन ऑफिस है, एयर कंडीशन स्कूल है, एयर कंडीशन मॉल है, एयर कंडीशन घर है, एयर कंडीशन कार है, तो वो नेचर से जो है हमारी प्रकृति से कट ऑफ हो गए हैं। इसको मैं इसको कहता हूं नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर हो गया कि उसको प्रकृति में पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है बाहर, तो जब वो पता ही नहीं तो वो उसको कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, उसको पता ही नहीं मेरी यमुना नदी खराब हो चुकी है, मेरे लैंडफिल इतने ऊंचे ऊंचे हो गए। पहले उसको कनेक्ट करना है, किताबी ज्ञान से ये लोग सीख नहीं पाएंगे पर्यावरण के बारे में, उनको फील्ड में ले जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा एक चीज। दूसरी बात, जब कनेक्टेडनेस कैसे होगी, जब उनको समझाना पड़ेगा भी देखिए आप जब एक्स्ट्रा कोई पॉलिथीन लेते हैं या एसी कोई आप कहते हैं करना चाहिए, आपने 18 डिग्री पे लगा के रखा है, यदि आप उसको 24 डिग्री पे करके रखते हैं, बिजली बचा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आपको ये भी पता होना चाहिए बिजली कहां से आ रही है,
6: और आप अपना स्वास्थ्य भी बचा रहे हैं,
3: स्वास्थ्य भी बचा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, एवरीथिंग इज लिंक्ड, बिल्कुल स्वास्थ्य भी बचा रहे हैं आप। और जब आपने, और इसको ये मालूम होना चाहिए पॉलीथीन कहां जा रहा है, ये नदी में जा रहा है, फिर उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो फिश वगैरह में जा रहे हैं, उसी को लोग खा रहे हैं, तो कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो उनको ये सारा कनेक्टेडनेस जो है इकोसिस्टम की, इकोनेस आइसोलेटेड नहीं है, पूरा कनेक्शन है, ये जब हम समझाएंगे और बताएंगे वही पॉलीथीन को आप जला रहे हो तो फिर CO2 गैस निकल रही है, फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, तो आपका नुकसान हो रहा है और आप पिछड़ते रहेंगे क्योंकि आपका सारा पैसा तो कहते इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाएगा आपका, फिर आप उसी में पैसा लगाओगे तो नए स्कूल, नए कॉलेजेस, नए हॉस्पिटल, नए यूनिवर्सिटीज आप कैसे खोलेंगे।
6: बिल्कुल,
3: ये कनेक्टेडनेस जब लोगों को ये समझ आ जाएगी सिंपल भाषा में कि भाई हाँ ये तो मुझे तो प्रो प्लैनेट पीपल बनना है,
6: बिल्कुल
3: मुझे है ना, मेरे को धरती पे अपना बोझ कम से कम करना है, तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम कितना पानी डेली यूज कर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि आपका डेली वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, तो लोग नहीं बता पाते, कोई कहता 10 लीटर, कोई कहता 50 लीटर, जबकि वो 500 लीटर कर रहे हैं। तो वही जो है ना,
6: वो दे आर नॉट माइंडफुल, उसके बारे में माइंडफुलनेस
3: जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि माइंडफुलनेस लेके आनी है उनमें, कि उनको रियलाइजेशन हो कि भी हम कर क्या रहे हैं। आजकल के देखा होगा जो बच्चे हैं हर उठाते हैं फोन से सामान पे सामान आ जा रहा है, और आप देखेंगे तो दिन भर में इतना कचरा इकट्ठा हो जा रहा है, तो ये कहाँ जाएगा वो कचरा, वो सारा फिर वो आप जला देंगे कहीं ले जाकर, सेग्रीगेट तो सब नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सरकारों ने बड़ा अच्छा कर दिया, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है, तो वही उनको समझाना है ये फेंकना नहीं है, इसको रिसाइकल करना है। और काफी इसमें पहल हो रही है, काफी इंडस्ट्रीज आ गई हैं आजकल, तो कपड़े भी मिलते हैं आपको, बोलते हैं रिसाइकल्ड है ये कपड़ा या ये बैग है जो रिसाइकल्ड हो रहा है, मगर इसमें एक और भी ध्यान रखना है कि ग्रीन वॉशिंग ना हो, कि बोल रहे हैं हम कर नहीं रहे, करना है, करके दिखाना, क्योंकि अदरवाइज जो है ये प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ी हो रही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है।
6: आपने सही कहा, पॉपुलेशन बड़ी है क्योंकि भारत इतना विशाल देश है, इसकी टोपोग्राफी हर जगह अलग अलग है, कहां अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और नागालैंड, और कहां केरल, और कहां जम्मू कश्मीर, कहां गुजरात, कच्छ, इतना बड़ा देश है। अब ऐसे इतने बड़े भौगोलिक देश में एक्सट्रीम वेदर्स की भी समस्या है, कहीं हीट वेव है, कहीं अत्यधिक वर्षा है, बाढ़ है, कहीं चक्रवात है, लेकिन पिछले 12 वर्षों में सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि और उनका सार्वजनिक जीवन में जो अनुभव रहा है उस पर चलते हुए उनके नेतृत्व में इन सब चीजों पर खास तौर पर ध्यान देना शुरू किया है। हमने ये भी देखा था एक वक्त पर कि IMD, आप वहां रहे हुए हैं एक बड़े पद पर, IMD जब कहती थी कि बारिश होने वाली है, बारिश होती नहीं थी, और उनके कई सारे जो पूर्वानुमान होते थे वो या तो सटीक नहीं होते थे या कई बार गलत साबित होते थे, लेकिन अभी हाल के दिनों में हमने देखा है कि पूर्वानुमान की सटीकता सही रही है, समयबद्धता में सुधार हुआ है, आम नागरिकों तक चेतावनी भी समुद्री इलाकों में बड़े समय से पहुंच रही है। IMD ने ये कैसे किया, क्या रणनीति है
3: इसमें? बहुत सारी चीजें आप किसी से पूछेंगे मीडिया से, तो एक एक्सेलेंट फोरकास्ट मेरी, चाहे वो मैं कर्नाटका में था, चाहे मैं सिक्किम में था, चाहे मैं देहरादून में था, दिल्ली में था, तो बहुत अच्छा काम हुआ है। और इसके पीछे सब कुछ है कि निरंतर प्रयास। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी पिछले 15 साल में तो बहुत तेजी आई है इन प्रयासों में, पर पहले भी प्रयास हुए हम लोगों को, जो जिस तरह से मतलब सुपर कंप्यूटर 87 में आ गया था, उसका एक मेजर रोल रहा, सबसे मेजर रोल रहा, क्योंकि उससे पहले अमेरिका में सुपर कंप्यूटर दे नहीं रहा था, फिर सुपर कंप्यूटर मिला और उस सुपर कंप्यूटर के चलते जो है न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन शुरू हुआ, उसने एक बहुत बड़ा रोल लाया। दूसरा सैटेलाइट जो आए, सैटेलाइट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल, डॉपलर वेदर रडार आ गए, मगर इनके नंबर कम था डॉपलर वेदर रडार का, सैटेलाइट में भी कुछ इतने सेंसर्स नहीं थे जितने हम मौसम विभाग को चाहिए थे। फिर वो जब बोला गया और बीच में, तो ये पिछले 10-15 साल में इनमें बहुत भयंकर तेजी आई, यानी कि मतलब काफी पैसा इसमें गया और नए सुपर कंप्यूटर्स लिए गए, नेटवर्क को बढ़ाया गया। डॉपलर वेदर रडार जो है मेरा ख्याल अभी 25-30 लग चुके हैं और मेरा ख्याल 100 इनका नंबर पहुंचने की बात हो रही है अगले कुछ 1-2 साल के अंदर। तो इसमें निरंतर प्रयास हो रहे हैं और बिल्कुल सही है कि आज से 25-30 साल पहले लोग बोलते थे ऐसा कि भाई मौसम विभाग जो बोलता है गलत, अब नहीं है, अब काफी सालों से 15-20 साल से ये धारणा बदली है और रिजल्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं और बहुत लोगों की जानें बच रही हैं, सबसे बड़ी बात। तो ये सारी जो प्रयास हैं ये हमारे जो है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हमारी सोसाइटी को रेजिलिएंट बना रहे हैं।
6: बिल्कुल, और देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें कृषि और मानसून का कितना महत्व है ये कहने की जरूरत नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के वितरण, तापमान और मानसून के व्यवहार में होने वाले बदलाव किसानों के लिए क्या चुनौतियां पैदा कर रहे हैं, कृषि मौसम सेवाएं, जिला स्तर के पूर्वानुमान और समय पर सलाह किसानों को इन चुनौतियों से निपटने में किस प्रकार से मदद कर सकती हैं और क्या नई तकनीक और IMD लेकर आ रहा है।
3: ये सवाल बहुत बढ़िया है। आपको एक तो मालूम है कि एक तरफ तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं और ये कहा गया कि भाई इससे क्या होगा, बीमारियां बढ़ेंगी पौधों में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगा और तरह तरह की प्रॉब्लम आएगी, वाटर सिक्योरिटी का भी इशू होगा, भाई नेचुरली जहां बारिश नहीं वहां सूखा पड़ेगा। मगर उसके विपरीत आप देखेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है ओवर द ईयर्स। आप देखिए हालांकि इस साल थोड़ा प्रोडक्शन में कमी हो सकती है क्योंकि एल नीनो ईयर था, मगर उसके बावजूद भी मौसम विभाग ने जिस तरह से तरक्की की है और जिस तरह से मौसम आधारित कृषि सलाह लोगों को मिल रही है, जिस तरह से कहते हैं ICR ने ड्राउट रेजिस्टेंट, फ्लड रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप करी हैं, तो इन सब का एक मेजर रोल रहा है। अब जैसे एग्जांपल है, समय समय पर यदि किसान को मौसम आधारित सलाह मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई अभी ये बारिश आने वाली है, तो हम किसान भाइयों को बोलेंगे देखो किसान भाइयों आपकी फसल जो तैयार पड़ी है 3 दिन में बारिश आने वाली है, तो आपकी तैयार फसल को काट के सुरक्षित स्थान पर रख लो, तो नुकसान बच गया उसका। ऐसा ही है, मान लीजिए किसान को इस समय फसल है उसमें फ्लावरिंग आ रही है जैसे महाराष्ट्र में, और बारिश मान लीजिए कि आने वाली है, तो आप कहोगे किसान भाइयों को देखिए भाई बारिश आने वाली है तो आप सिंचाई को टाल दीजिए, तो आपका सिंचाई का पैसा बच गया। सिमिलरली बारिश आने वाली है और आपने मान लीजिए आप फर्टिलाइजर और केमिकल लगाने वाले हैं, तो हम उन्हें कहेंगे नहीं भाई बारिश आने वाली है आप फर्टिलाइजर और केमिकल अभी ना लगाएं, नहीं तो वो पानी से बह जाएगा। तो ये जो मौसम आधारित कृषि सलाह है इसने बहुत फायदा किया है और यही एक कारण है कि वी आर एबल टू स्टेबलाइज एग्रीकल्चर यील्ड्स। नहीं तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही तो यही कहा गया था कि भाई एपिडेमिक्स होंगे, और यही नहीं क्योंकि हम समय समय में उनको बता दे रहे हैं कि अब ये मौसम जो है अनुकूल हो गया है पौधे पे बीमारी आने का, तो आप मॉनिटरिंग शुरू कर दीजिए मगर स्प्रे मत करिएगा अभी, जब वो थ्रेशहोल्ड से बढ़ जाएगा तो हम बताएंगे आपको जब स्प्रे करना है आपको, और हो सकता है कि मौसम पौधे के लिए अनुकूल हो जाए और बीमारी जो पेस्ट होता है उसके लिए विपरीत हो जाए, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी स्प्रे करने की। तो केमिकल स्प्रे को भी बचा रहे हैं हम लोग, और वही स्प्रे जो केमिकल के पानी में जाते हैं, मच्छी में जा रहे हैं, फिर लोग उसको खा रहे हैं, तो हेल्थ खराब हो रही है, पर्यावरण खराब हो रहा है। मौसम आधारित जो कृषि सलाह है उससे हम किसान का पैसा बचा रहे हैं, लोगों की हेल्थ बचा रहे हैं और साथ साथ पर्यावरण को भी बचा रहे हैं।
6: और देखिए भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल पर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की स्थापना हुई। आज ये सौर ऊर्जा के वैश्विक विस्तार और विकासशील देशों में निवेश और तकनीक सहयोग का एक बेहद महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है जिसका हम लोग पूरा फायदा उठा रहे हैं। यूरोप के कई देश अगर आप देखें जैसे डेनमार्क, तो वहां पर पवन ऊर्जा भी बेहद महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल में आ रहा है और उससे ऊर्जा पैदा की जा रही है। भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए सौर, पवन, जैव ईंधन और परमाणु ऊर्जा जैसे जो विभिन्न स्रोत हैं, इनका संतुलित मिश्रण कितना जरूरी आप मानते हैं? क्या पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं?
3: नहीं, उसमें भी बिल्कुल बढ़ रहे हैं, मगर हम सोलर एनर्जी पे ज्यादा हमने मतलब कि उसमें अचीवमेंट है हमारी। और बिल्कुल आपने कहा कि हमें मिश्रित चाहिए, हमें सोलर एनर्जी भी चाहिए, हमको विंड एनर्जी भी चाहिए, हमको ओशन वेव से भी एनर्जी जनरेट करना है, जियो थर्मल एनर्जी को भी एक्सप्लॉइट करना है, बायोफ्यूल्स को भी एक्सप्लॉइट करना है। यदि हम ये सब कर पाते हैं, और ये बड़ा अच्छा है कि जैसे आपने कहा कि मोदी जी ने 2009 में गुजरात क्लाइमेट सेंटर से लेकर 2015 में जो हमारा COP 21 हुआ था पेरिस में, वहां ये इनिशिएटिव लिया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो एक बहुत ही दूरदर्शिता थी उसके अंदर। और मुझे लगता है 140 कंट्रीज उसके मेंबर है, जिसे सनशाइन कंट्रीज कहते हैं, और बिल्कुल उससे काफी बल मिला और हमें लीडरशिप एक मिली। और अब भारत सरकार जो है बिल्कुल बायोमास पे जो है पूरा फोकस है उनका, बायोफ्यूल्स, फिर वही मैंने कहा कि वो जो प्लांट्स लगाए जाएंगे मार्जिनल लैंड्स पे लगाए जाएंगे, और जो एनर्जी क्रॉप्स होंगी जहाँ पे कुछ नहीं उग रहा था, उसके साथ जो आपकी यूज कुकिंग ऑयल है आप उसको बायोडीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोमीथेन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो हमें मल्टी, जिसे कहते हैं प्रॉन्ग पॉलिसीज चाहिए, सिर्फ एक पे निर्भर नहीं होना है। सोलर एनर्जी, बायोमास, विंड एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, जितनी पॉसिबल है उसको एक्सप्लॉइट करना है और टू द मैक्सिमम करना है, क्योंकि क्लीन एनर्जी चाहिए, ग्रीन एनर्जी चाहिए, और हमारा टारगेट है टू अचीव एनर्जी सिक्योरिटी एंड नेट जीरो इमिशन, ये हमारा गोल है।
6: सौर ऊर्जा में तो हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, क्या विंड एनर्जी के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां हैं भारत में?
3: नहीं, चुनौतियां देखिए, सोलर एनर्जी में तो एडवांटेज ये है कि क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल कंट्री है, पूरे एक कोने से दूसरे कोने सनशाइन रहता है,
6: ब्राइट
3: सनशाइन रहता है, तो ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया, तो ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मगर विंड एनर्जी को हर जगह नहीं लगा सकते आप, उसके लिए आपको वहां पे विंड तेज चलेगी वहीं लगाया जा सकता है, या तो कुछ कोस्टल सिटीज हैं या फिर पहाड़ों के ऊपर आपको। और इसके लिए ये अगेन मौसम विभाग का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे पास विंड एटलस है, सोलर एटलस है, जहां बताया जाएगा आपका कि भी कहां आपको लगाना है कहां नहीं लगाना है। सोलर एनर्जी के लिए हमारे लिए प्लस पॉइंट है, विंड के लिए कोस्टल सिटीज पे लग सकता है, और कोस्टल सिटीज में भी हमें ध्यान रखना है कि हम लगाएंगे तो वहां साइक्लोन भी आते हैं, तो साइक्लोन आएगा तो वो नेचुरली बहुत तेज होगी स्पीड, 150-200-250 की, तो उखाड़ भी सकता है। मगर हाँ, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम विंड स्पीड जो 250 आती है करीब, तो उससे जो है ज्यादा की ताकत का हमें वो स्ट्रक्चर वहां खड़ा करना है, जिससे कि वो आ भी जाए तो रेजिलियंट होगा, वो टूटेगा नहीं।
6: विंड एनर्जी के लिए हवा की स्पीड एक आमतौर पर कितनी होनी चाहिए?
3: देखिए, कम से कम 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तो होनी ही चाहिए, तो वो आम ज्यादातर जगहों पे आपको नहीं मिलती है, वो आपको कोस्टल सिटीज में मिलेगी, या हाइट, जैसे जब हाइट ऊपर जाते हैं हम लोग तो विंड स्पीड बढ़ती है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता जाता है, और यदि आप 12 किलोमीटर पे चले जाएंगे तो हवाएं चल रही हैं 150 किलोमीटर की स्पीड से, जिसे हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, नीचे तो पहाड़ है, पेड़ है, बिल्डिंग है, वो रेजिस्टेंस होता है तो विंड स्पीड कम हो जाती है, और जहां खुला इलाका होता है तो वहां विंड स्पीड ज्यादा होती है।
6: तो हेडविंड और टेलविंड जो होता है वो 80-100 बहुत आम
3: बात है। और आपने देखा होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये जेट स्ट्रीम का डिस्कवरी हुई थी, कि जब अमेरिकन प्लेन्स जब कहते हैं जा रहे थे, कहते हैं वेस्ट टू ईस्ट, तो वो फास्ट जा पा रहे थे, और जब वो ईस्ट से वेस्ट लौटते तो उनको ज्यादा समय लगता था, तो उन्होंने देखा क्यों हो रहा है, क्योंकि विंड उनको जेट स्ट्रीम वेस्ट टू ईस्ट जाने में मदद करती थी उनको, और जब आते थे तो अगेंस्ट
6: जब भी हेडविंड होगा तो वो ज्यादा वक्त लगेगा। आनंद शर्मा जी, विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगले दशक में भारत की हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? क्या नवीकरणीय ऊर्जा, आधुनिक मौसम पूर्वानुमान, जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे और जन भागीदारी को एकीकृत कर, यानी इंटीग्रेट करके भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर सकता है?
3: नहीं, बिल्कुल कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक तो हमने लीडरशिप तो ली, और एक और भी ध्यान रखिए, आज से 1000 साल पहले भी भारत जो था, देश जो था, हमारा जिस तरह का कल्चर था, हम लोग कंजर्वेशन में, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन में लीडर थे
6: जी,
3: और बीच में कुछ गड़बड़ हो गई मुझे लग रहा है, और अब फिर दोबारा से हम एक इंटरनेशनल लेवल पे लीडरशिप का रोल अब निभा रहे हैं, और जिस तरह से हमारे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, हम डेफिनेटली जो है इस, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की समस्या हो, चाहे सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ने का प्रयास हो, उस सब में हम बिल्कुल कहते हैं सक्षम हैं। मगर हाँ, प्रयास ये है कि लोगों को, मैंने जैसे पहले भी कहा कि जब तक हम पर्यावरण से कनेक्ट नहीं करेंगे, उनको ये समझाएंगे नहीं पूरे साइकिल को कि किस तरह से काम करता है, और ग्रीन वॉशिंग ना हो, मॉनिटरिंग रेगुलरली हो और इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे उसके लिए आपको जितनी सब्सिडी देनी है सब्सिडी दीजिए, टैक्स रिलीफ देना है टैक्स रिलीफ दीजिए, मगर हर कॉस्ट पे हमको पर्यावरण को बचाना होगा, कि पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, एनवायरमेंट सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी,
6: हर कॉस्ट पर पर्यावरण को बचाना होगा, और तभी हम विकसित भारत 2047 की दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ा सकते हैं। आज की चर्चा में हमने जाना कि हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा केवल भविष्य की जरूरत नहीं बल्कि वर्तमान की अनिवार्यता भी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद शर्मा जी, आप अतिरिक्त महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक श्री अरुण त्रिपाठी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 15वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हरित विकास और ऊर्जा सुरक्षा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी और वरिष्ठ पर्यावरणविद आनंद कुमार शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मैं भी यमुना प्रहरी ऐप का शुभारंभ किया। नागरिकों से अधिक संख्या में यमुना प्रहरी अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। दिल्ली जल बोर्ड ने जल आपूर्ति और सीवर व्यवस्था मजबूत करने को 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत राजधानी सहित देश भर में एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। और दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा, गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कल राजघाट और विजय घाट पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
3: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2047 का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। उन्होंने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
3: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैं भी यमुना प्रहरी ऐप का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से शुरू हुआ ये अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यमुना के प्रति नागरिक जिम्मेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और लोगों से अधिक संख्या में यमुना प्रहरी अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 अक्टूबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी एक साथ यमुना की स्वच्छता और संरक्षण का संकल्प लेकर इस जन अभियान का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी नाले का पानी बिना सफाई के यमुना नदी में नहीं गिरेगा।
4: सरकार अपना काम कर रही है, चाहे वो डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने का काम है, नालों को टैप करने का काम है, नए सीवेज प्लांट खड़े करने का काम है, डिसिल्टिंग करने का काम है, सीवर लाइन जोड़ने का काम है, ताकि एक भी ड्रेन या एक भी नाला यमुना में बिना ट्रीट किए ना गिरे। ये सरकार का काम है और सरकार कर रही है। तो हम सब मिलकर के जब यमुना के प्रहरी बनेंगे तो निश्चित रूप में माँ यमुना साफ होना शुरू होगी।
2: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि नमामि गंगे जैसे अभियानों का उद्देश्य देश की नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नई सरकार के गठन के

0: बाद यमुना की स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए व्यापक कार्य योजना पर काम शुरू किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। एक रिपोर्ट।
1: बोर्ड ने वन जोन वन ऑपरेटर योजना के तहत 10 साल के लिए करीब 17,969 करोड़ रुपए की सीवर रखरखाव योजना को मंजूरी दी है। हर जोन में एक ऑपरेटर सीवर की देखरेख और सफाई करेगा। लोगों की शिकायतों का भी समाधान किया जाएगा। सीवर की जांच और सफाई के लिए मशीनों और रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। सीवर की निगरानी ऑनलाइन भी की जाएगी। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6,044 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। ये परियोजना 247 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगी। इसमें स्मार्ट मीटर और पानी की निगरानी के लिए सेंसर लगाए जाएंगे। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। इनकी कुल क्षमता 328 MGD होगी। इस परियोजना पर 7,373 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा वजीराबाद जल आपूर्ति परियोजना और 25 वाटर इमरजेंसी सेंटर के पुनर्निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। निर्धारित शर्तों के तहत अलग अलग पानी के कनेक्शन देने को भी मंजूरी दी गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
0: केंद्र ने दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में दीर्घकालिक योजना और बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से उसके प्रमुख विभागों के लिए 5 साल की पूंजीगत निवेश योजना प्रस्तुत करने को कहा है। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने हाल में दिल्ली सरकार के विभागों से 5 साल के लिए पूंजीगत व्यय और निवेश का ब्यौरा देने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शास्त्री पार्क स्थित दिल्ली मेट्रो रेल निगम के आईटी पार्क में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ किया। ये अत्याधुनिक केंद्र दिल्ली में प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की रियल टाइम निगरानी, एआई आधारित विश्लेषण, शिकायतों और फील्ड निरीक्षण से जुड़ी जानकारी तथा संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय को मजबूत करेगा।
3: इस केंद्र का उद्देश्य केवल प्रदूषण संबंधी आंकड़े एकत्र करना नहीं बल्कि तकनीक से प्राप्त जानकारी को जल्द से जल्द परिणामों में बदलना है। इसके अलावा कंट्रोल सेंटर से प्राप्त रियल टाइम जानकारी को फील्ड स्तर की कार्रवाई से सीधा जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि तकनीक, डेटा और फील्ड प्रवर्तन को एक साथ जोड़कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इस केंद्र के माध्यम से प्रदूषण हॉटस्पॉट, नियमों के उल्लंघन और प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की पहचान तेजी से की जा सकेगी और संबंधित विभागों तक जानकारी पहुंचाकर मौके पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
4: इस छोटे समय में इतना शानदार इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहां बनाए। 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर वाली कंस्ट्रक्शन साइटों को भी यहां से मॉनिटर किया जाएगा, जो एआई ड्रिवन कैमरास के माध्यम से यहां देखी जा रही है। यहां हमारा मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए जो मशीनरी है उसको भी यहां से जीपीएस के माध्यम से मॉनिटर हो सकती है।
3: इस वर्ष सर्दियों के दौरान 78 सब डिवीजन स्तर की टीमें इस केंद्र के माध्यम से निगरानी करेंगी। इसके अलावा वायुदूत टीमों के माध्यम से प्रदूषण कारी गतिविधियां की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। इससे सफाई और प्रदूषण नियंत्रण कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्रवाई को और मजबूत किया जा सकेगा। विशु और निशा के साथ सौम्या शरण, प्रादेशिक समाचार, दिल्ली।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत आज देश भर में एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों में स्वच्छता और कचरा निपटान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी अभियान में भाग ले रहे हैं। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजधानी के सफदरजंग मकबरे में आयोजित अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं बल्कि प्रतिदिन की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
5: 2017 से पहले भी रेलवे स्टेशन देखते थे, आज बहुत से लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे घूमने जाते हैं। तो ये जो वातावरण चेंज हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, साफ सफाई की प्रति सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान रखता है भारत में, तो ये भारत के बच्चे ध्यान रखते हैं।
0: इस अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री

0: रेखा गुप्ता ने आज कमला नेहरू रिज और दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और दिल्लीवासियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में श्रमदान किया तथा स्वच्छ तथा सुंदर दिल्ली के निर्माण में जनभागीदारी का संदेश दिया। वहीं दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने तुकमीरपुर स्थित पुष्पांजलि स्कूल में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। श्री मिश्रा ने कहा कि ऐसे प्रयास समाज में जिम्मेदारी और सेवा की भावना को मजबूत करते हैं।
1: आज पूरी दिल्ली में लगभग 300 जगह पर इस प्रकार का सफाई अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका नेतृत्व कर रही हैं। सभी मंत्रीगण, विधायकगण, निगम पार्षदगण अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। स्वच्छ दिल्ली का एक लक्ष्य है जिसके लिए काम किया जा रहा है।
0: दिल्ली के मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह ने आज रामलीला के आगामी आयोजनों की तैयारियों तथा व्यवस्थाओं पर दिल्ली सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक में आयोजन स्थलों, आवश्यक सुविधाओं और तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 2026 आज नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मनाया गया। इस अवसर पर नियमित, स्वैच्छिक और बिना किसी पारिश्रमिक के रक्तदान की संस्कृति को मजबूत करने पर बल दिया गया। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉ एम श्रीनिवास ने आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर कल राजघाट और विजयघाट पर आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनजर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। ये व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान रिंग रोड पर राजघाट से सलीमगढ़ वाय पॉइंट और कश्मीरी गेट बस अड्डे की ओर निषाद राजमार्ग, राजा राम कोहली मार्ग, BS-Z मार्ग पर ITO चौक से दिल्ली गेट, शांतिवन चौक से IP फ्लाईओवर, आसिफ अली रोड, गुरुनानक चौक से रणजीत सिंह फ्लाईओवर और राजघाट DTC डिपो से रिंग रोड बाईपास तक यातायात प्रभावित रहने की आशंका है। पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने, यातायात नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात यातायात कर्मियों का सहयोग करने की अपील की है। दिल्ली परिवहन निगम ने बताया है कि गांधी जयंती के अवसर पर कल राजधानी में पिंक सहेली स्मार्ट NCMC कार्ड वितरण केंद्र बंद रहेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सिख समुदाय को गुरु अंगद देव के गुरु गद्दी दिवस पर शुभकामनाएं दी। श्रीमती गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गुरु अंगद देव की शिक्षाएं सभी को विनम्रता, सद्भाव और निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान साफ रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में UPSC शताब्दी समारोह को संबोधित किया। कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मैं भी यमुना प्रहरी ऐप का शुभारंभ किया। नागरिकों से अधिक संख्या में यमुना प्रहरी अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। दिल्ली जल बोर्ड ने जल आपूर्ति और सीवर व्यवस्था मजबूत करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत राजधानी सहित देश भर में एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दादी कौन सा प्लांट है?
4: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
5: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
3: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
5: क्यों?
3: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
5: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये देख, तेरी समझदारी का फल।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देश भर के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विद्यार्थी दायित्वपूर्ण नागरिकता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने और स्वच्छ, हरित तथा स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विमान यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ मच्छार के असाधारण साहस और सूझबूझ पर देश को अत्यधिक गर्व है। श्री नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने हरविंदर कुमार उर्फ सोनू बरनाला को वापस भारत लाने में सफलता हासिल की है। हरविंदर कुमार पर पंजाब के नांगल में विश्व हिंदू परिषद के नेता विकास प्रभाकर की हत्या का आरोप है। गृह मंत्रालय ने बताया कि वीएसपी नेता की हत्या आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के गुट ने की थी। यह हत्या पाकिस्तान में बैठे संगठन के प्रमुख वाधवा सिंह उर्फ बब्बर के कहने पर सांप्रदायिक अशांति फैलाने के लिए की गई थी। सरकार ने पात्र दिव्यांगजनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण से जुड़े दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से बनाए गए वाहनों और दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों को छूट वाला फास्टैग जारी किया जाएगा। ये सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID कार्ड या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित होगा। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने और कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम तिरुमुरू ने कांस्य पदक हासिल किया। उधर स्क्वाश में महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को और पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 32 कांस्य पदकों के साथ कुल 65 पदक लेकर 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ मधुरिमा में। आज आपके साथ है विभा। नमस्कार। मधुरिमा में आज बात करेंगे मन को उत्साह, सकारात्मकता और मानसिक शांति प्रदान करने वाले रागों में से एक राग हंस ध्वनि की। तो पहले सुनते हैं इसी राग पर आधारित एक गीत, साल 1954 की फिल्म शबाब से रफी साहब और लता दी की आवाज में। संगीत दिया है नौशाद साहब ने।

0: राग हंस ध्वनि कर्नाटक शैली का एक अत्यंत मधुर और लोकप्रिय राग है, जो हिंदी सिने जगत में भी अपनी जगह बनाए हुए है। इसकी जाति औड़व औड़व है, प्रकृति चंचल है और उत्तरांग प्रधान राग है। इसमें भक्ति भाव और श्रृंगार का भाव झलकता है।
1: तत मुरली की धुन सुन आई राधे, आई राधे, जमुना के तट पर, जमुना के तट पर।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

झुकत कुछ हल हल चंद्र चपन चपला चली हट कत कुछ कुछ की कुछ मटक मटक

ये गीत आपने सुना साल 1968 की फिल्म दो कलियां से आशा ताई की आवाज में, संगीत रवि का। क्या आपको मालूम है म्यूजिक थेरेपी में भी इस राग का उपयोग किया जाता है। ये ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो मन को तरोताजा, स्थिर और शांत करते हैं। इसके बेहद खुशनुमा और स्वागत करने वाले स्वभाव के कारण शास्त्रीय संगीतकार अक्सर इस राग से ही शुरुआत करते हैं और इसके गाने बजाने का समय भी शाम का पहला और दूसरा प्रहर माना जाता है। तो फिलहाल बातों को देते हैं विराम और सुनते हैं साल 1961 की फिल्म छाया का गीत इसी राग पर आधारित, लता दी की आवाज में, संगीत सलिल चौधरी का।

ये संगीत सुनकर आपका मन भी नाच उठाना। और चलते चलते अब सुनते हैं फिल्म स्वर्ण सुंदरी का गीत लता दी की आवाज में, इसी राग पर आधारित।

मधुरिमा में आज बस इतना ही। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे खेल जगत का कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। एशियाई खेलों में जारी रोमांच और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ खेल जगत की हर अहम हलचल पर रहेगी हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई खेलों के ग्रीको रोमन कुश्ती में नितेश सिवाच ने पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग में जीता रजत पदक। पुरुषों के एस्केप प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरुसिंकल नोबेल ने देश के लिए पहला रजत पदक हासिल किया। महिला टीम ने जीता कांस्य पदक। स्क्वाश में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। गणेश मणि रत्नम ने पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बना ली है और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने फाइनल में जगह बनाई, सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई खेलों से, जहां आज भी भारतीय एथलीटों ने कई पदक देश के नाम किए। आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम कुश्ती से, जहां एशियाई खेलों में आज भारत के नितेश सिवाच को ग्रीको रोमन कुश्ती के फाइनल में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। नागोया सिटी इनाय स्पोर्ट्स सेंटर में नितेश को पुरुषों के 97 किलोग्राम फाइनल में जापान के यूरी नाकाजुतो के हाथों 0-4 से हार का सामना करना पड़ा। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: नितेश वर्ष 1962 के बाद एशियाई खेलों की ग्रीको रोमन कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। 1962 में मारुति माने ने इसी वर्ग में रजत पदक जीता था। पहले राउंड के बीच में नितेश को पेनल्टी मिली, जिससे नाकाजुतो ने 2 अंक के साथ अपना खाता खोला। ब्रेक के बाद 0-2 से पीछे चल रहे नितेश को शेष 3 मिनट में वापसी की जरूरत थी। इसके बजाय नाकाजुतो ने मुकाबले की गति पर नियंत्रण बनाए रखा और भारतीय पहलवान को आक्रमण का कोई मौका नहीं दिया। इसके बाद यूरी नाकाजुतो ने नितेश पर अपनी बढ़त 4-0 कर ली। नितेश लगातार वापसी की कोशिश करते रहे, लेकिन यूरी नाकाजुतो ने मुकाबला जीतकर स्वर्ण पदक हासिल किया और नितेश को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। नितेश ने क्वार्टर फाइनल में तुर्कमेनिस्तान के अमन बेडी अगामा मेदेव को 7-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इसके बाद उन्होंने मंगोलिया के गन बातारिन गन खुयान को सेमीफाइनल में 9-0 से शिकस्त देकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: ऐतिहासिक दिन था आज भी, क्योंकि 1962 के बाद इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता के ग्रीको रोमन कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाले नितेश पहले भारतीय बने। लगातार उनका प्रदर्शन अच्छा रहा और आज भी अलग अलग स्पर्धाओं में भारत ने कई पदक जीते। अब हम चलते हैं नौकायन की तरफ। एशियन गेम्स में भारत के नौकायन में अपना पहला पदक जीता है। पुरुषों के स्किफ इवेंट में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरुसिंकल नोबेल ने रजत पदक देश के नाम किया। उधर नौ रेस के बाद वे चीन की जोड़ी के से दूसरे स्थान पर रहे। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: कुछ करिए बस बड़ा बोले।
3: भारतीय जोड़ी ने 23 पॉइंट्स के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। चीन की जोड़ी वेन जाई डिंग और लियू तिया ने 16 पॉइंट्स के साथ स्वर्ण पदक जीता। हांगकांग चीन के अकीरा ल्यूक सकाई और रसेल आल्सवर्थ 24 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर रहे। फ्रांसिस और नोबल का प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा। भारतीय सेलर्स ने रेस 3 जीती और रेस 1, 5 और 9 में दूसरे स्थान पर रहे। 9 रेस में उन्होंने कुल 29 पॉइंट्स हासिल किए। रेस 8 में छठे स्थान पर रहने के नतीजे को हटाकर उनका नेट स्कोर 23 रहा। ये पदक पुरुषों के स्किफ इवेंट में भारत का पहला एशियन गेम्स रजत पदक और इस इवेंट में देश का दूसरा मेडल था। वरुण ठक्कर और केसी गणपति ने जकार्ता 2018 में कांस्य पदक जीता था। मनु और प्रिंस का सिल्वर मेडल एशियन गेम्स में भारत का 24वां सेलिंग मेडल भी था। हांगझोउ 2023 में भारत ने 3 मेडल जीते थे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि चीन ने स्टैंडिंग में टॉप पर अपनी बढ़त बनाए रखी और 9 में से 4 रेस जीती। ये सिल्वर मेडल 31 साल के फ्रांसिस और 30 साल के नोबेल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सेलिंग की अगर बात की जाए तो सेलिंग में कम पॉइंट्स वाला स्कोरिंग सिस्टम होता है। इसमें रेस जीतने

0: वाले बोट को 1 पॉइंट, दूसरे स्थान पर रहने वाले बोट को 2 पॉइंट मिलते हैं और इसी तरह आगे भी पॉइंट्स मिलते चले जाते हैं। सबसे कम कुल स्कोर वाला विजेता बनता है। और श्रोताओं, अभी अभी हमें जानकारी मिली है कि महिला स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है, तो देश के नाम एक और पदक आज आ गया है। और अब बात स्क्वैश पर करते हैं। एशियाई खेलों के स्क्वैश में आज भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। दोनों टीमों को सेमीफाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: अभय सिंह को व्यक्तिगत स्पर्धा में ईनियो से 0-3 से शिकस्त मिली, जिसके बाद वीर चोटरानी ने संजय जीवा को 3-0 से मात देकर मुकाबला बराबरी पर ला दिया। निर्णायक मैच में विलावन सेंथिल कुमार को अमिशेन राजचंद्रन के हाथों 3-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ भारत की स्वर्ण पदक मैच तक पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गई और टीम को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। फाइनल में मलेशिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। उधर भारतीय महिला टीम ने भी कांस्य पदक जीत लिया है। हालांकि टीम को सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत भारतीय महिला स्क्वैश टीम के लिए अच्छी नहीं रही। अनाहत ने चान सिन युक के खिलाफ शानदार शुरुआत की और पहले 2 गेम जीते। अनाहत ने पहला गेम 11-9 और दूसरा गेम 11-8 से अपने नाम किया। हालांकि इसके बाद चान सिन ने शानदार वापसी की और उन्होंने अगले 3 गेम जीतकर मैच को अपने नाम कर लिया। इसके बाद तन्वी खन्ना ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरा गेम जीत लिया। तन्वी ने दूसरा गेम 13-11, तीसरा गेम 11-9 और 13-11 से जीता। निर्णायक मुकाबले में जोशना चिनप्पा हो तेजे लोक से हार गई। इसके बाद दूसरे गेम में भी हांगकांग के खिलाड़ियों ने निरंतरता बनाए रखी और मुकाबले को जीत लिया। ज्योत्सना पांडे, स्पोर्ट्स कैन।
0: 2 ब्रॉन्ज मेडल आए स्क्वैश में। और श्रोताओं, आपको बता दें कि एशियन गेम्स में स्क्वैश में इस प्रतियोगिता का ये 4th मेडल है। इससे पहले भारत व्यक्तिगत स्पर्धा में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था, जबकि मिक्स डबल्स में जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिल कुमार की जोड़ी ने सिल्वर मेडल जीतने में सफल रही थी। और अब बात हॉकी पर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को एक रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया। मौजूदा चैंपियन ने अब एक और मेडल पक्का कर लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया यह सेमीफाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और मैच के अधिकांश समय में भारतीय टीम ने दबदबा बनाए रखा था। मैच के आखिरी हाफ में पाकिस्तान ने जोरदार वापसी की कोशिश की, लेकिन आखिरी मिनट में अभिषेक के किए गए गोल ने सिर्फ पाकिस्तान पर भारत को जीत दिलाई बल्कि एशियन गेम्स के फाइनल का टिकट भी पक्का कर लिया है। भारत 3-0 की बढ़त के साथ आसान जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने वापसी करते हुए आखिरी क्वार्टर के शुरुआत में ही स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद अभिषेक ने आखिरी मिनट में निर्णायक गोल करके भारत को फिर से बढ़त दिलाई और टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा भारत का हॉकी में भी और अब भारत को हॉकी में भी पदक की उम्मीद होगी। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। एशियाई खेलों में आज भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में 124 रन से श्रीलंका को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने श्रीलंका को 170 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 9 ओवर और 5 गेंद में सिर्फ 45 रन ही बना सकी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 169 रन बनाए। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जल्दी पवेलियन लौट गए। कप्तान श्रेयस अय्यर भी महज 13 रन बनाकर आउट हुए। वैभव सूर्यवंशी ने पारी को संभालते हुए 38 रनों की दमदार पारी खेली। वहीं दूसरी ओर ईशान किशन ने मोर्चा संभाले रखा। ईशान ने 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 80 रन की पारी खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। श्रीलंका के थारिंदु रत्नायके और कप्तान सहान अराचिगे ने 2-2 विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। सिनेथ जयवर्धने, लसिथ क्रूसपुले और सोहन डी लिवेरा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। शीर्ष क्रम के आउट होने के बाद पूरे मुकाबले में श्रीलंका पर दबाव बना रहा। नुवानिदु फर्नांडो ने 11 गेंद में 15 रन बनाए, जबकि कप्तान सहान अराचिगे 9 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी रहा और श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 45 रन पर ही ढेर हो गई। भारत के जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने दो दो विकेट चटकाए, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने एक विकेट हासिल किया। फाइनल मुकाबले में अब भारत का सामना 3 अक्टूबर को पाकिस्तान से होगा, वहीं श्रीलंका कांसे

0: तक मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगी। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: बेहतरीन खेल प्रदर्शन दिखाया है भारतीय खिलाड़ियों ने और भारत को क्रिकेट से भी एक स्वर्ण पदक की उम्मीद होगी। पहले ही महिला टीम ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया इस प्रतियोगिता में। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। आज का खेल काफी बेहतरीन था, 45 रन पर ऑल आउट कर दिया श्रीलंका जैसी टीम को। आज कई इतिहास भी बने हैं विशेष, कैसा रहा भारत का प्रदर्शन और कौन कौन से इतिहास बनाए भारतीय टीम ने?
2: भारतीय टीम का प्रदर्शन आज प्रशांत बहुत ही शानदार रहा है और भारत डिफेंडिंग चैंपियन है इस प्रारूप में। और भारतीय टीम ने आज इतिहास रचते हुए मेंस T20 इंटरनेशनल के किसी भी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल या फाइनल में रनों के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। टीम इंडिया ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले भारत ने T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया था। मेंस टीम T20 इंटरनेशनल में 100 से ज्यादा रनों से अधिक सर्वाधिक जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड भी भारतीय टीम के नाम हो गया है। टीम इंडिया ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 11वीं बार 100 से ज्यादा रनों से जीत हासिल की है। भारतीय टीम ने इस मामले में कनाडा को पीछे छोड़ा है जिन्होंने 10 बार यह कारनामा किया था।
1: भारतीय टीम ने तो कई कीर्तिमान बनाए लेकिन एक स्पेशल खिलाड़ी है भारतीय टीम में जिनका नाम है ईशान किशन। उन्होंने 46 गेंद पर 80 रन बनाए। और विशेष अगर ईशान किशन की बात की जाए तो जब भी बड़ा मौका होता है, चाहे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बात कर ले या फिर लीडरशिप क्वालिटी की बात करें, अभी दिलीप ट्रॉफी उन्होंने जीता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 100 लगाया था फाइनल में और कप्तानी करके टीम को जीता है, आज कैसा रहा उनका प्रदर्शन और कौन कौन से कीर्तिमान उन्होंने बनाए हैं आज?
2: प्रशांत, अगर ईशान किशन की बात करें या उनकी तारीफ करें तो बहुत ही कम शब्द पड़ जाएंगे उनके लिए, क्योंकि ईशान किशन जिस भी टीम से खेलते हैं उस टीम के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। अगर ईशान की आज बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने मनीष पांडे का 8 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ईशान ने 46 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 80 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 4 चौके और 5 छक्के लगाए। भारत की ओर से नंबर 5 या उससे नीचे बैटिंग पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले मनीष पांडे ने साल 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 79 रनों की नाबाद पारी खेली थी।
1: और वैभव सूर्यवंशी की भी बात की जाए श्रोताओं, तो उन्होंने 21 गेंद पर 38 रन बनाए जिसमें 2 छक्के और 6 चौके शामिल थे। और आज जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा है विशेष, 45 रन पर ऑल आउट कर दिया है पूरी टीम को, गेंदबाजों ने कैसा किया आज प्रदर्शन?
2: गेंदबाजों ने आज पूरा डोमिनेट किया है प्रशांत। श्रीलंका जो कि कई बार भारत के सामने जो है बिखर चुकी है, कभी 55 रन कभी 59 रन, और आज न्यूनतम स्कोर पर जो है सिमट गई 45 रन पर 9.5 ओवरों में। जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करी जिन्होंने 2 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं अक्षर पटेल ने भी 3 ओवर में 1 मेडन डालते हुए 8 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। वॉशिंगटन सुंदर को 1 विकेट मिला। वहीं अभिषेक शर्मा ने भी अपनी गेंदबाजी से प्रभावित करते हुए मात्र 5 गेंदों में 2 विकेट अपने नाम किए और 3 खिलाड़ी जो है वो रनआउट से आउट हुए।
1: उधर अगर एक दिवसीय क्रिकेट की बात की जाए तो भारत ने दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया है और कई प्रमुख बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन?
2: प्रशांत, कल का जो एक दिवसीय मुकाबला रहा वो रनों का अंबार था क्योंकि वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 405 रन बनाए 50 ओवर में, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्कोर था, लेकिन भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 406 रन बनाए जहां रोहित शर्मा ने 101 रन की पारी खेली। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने 133 गेंदों पर 223 रन बनाए। अंत में ऋतुराज गायकवाड़ ने 37 गेंदों पर 31 रन बना के पारी को अंत किया।
1: बेहतरीन प्रदर्शन उधर भी रहा है, भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। और अब बात तीरंदाजी पर, भारतीय कंपाउंड आर्चर गणेश मणि रत्नम थिरुनम ने पुरुषों के व्यक्तिगत इवेंट में कांस्य पदक जीत लिया। गणेश ने वियतनाम के कांग डुंग ढांग को 149-144 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.eir@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: मंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता एक वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता एक वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
4: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान

0: की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
2: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
3: वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ द ब्रेवरी एंड द करेज।
4: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और उनके परिवार के साथ खड़ा है।
3: वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर रियली रियली एक्सट्रीमली प्राउड।
1: गुजरात के प्रमुख तीर्थस्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
5: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जांबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मिथ मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गई, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मिथ के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मिथ को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
7: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहां 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
8: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहां लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यहां उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
7: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
9: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है, बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
7: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं है बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद और अपराध से लड़ते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आइजोल में आज सियालसुख के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामे, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबऊ मारिनमई और सीबीसी आइजोल के MTSH लियानवाला शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के मदद के आरोप में कई देशों के 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी 3 कंपनियां भी शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरीसिंकल नोबल ने रजत तथा स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance. Stresses to bring youth in government jobs oriented to serve people. Home Minister Amit Shah chairs meeting with Chief Ministers of Chhattisgarh and Odisha to resolve long-standing

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए नशा मुक्त पंजाब से नशा मुक्त भारत की ओर विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: नशे का प्रकोप न केवल इस

0: का सेवन करने वाले बल्कि उनके परिवारों, समाज और देश के भविष्य के लिए भी गंभीर खतरा है और वर्तमान सरकार ने नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस गंभीर विषय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए आज कंट्री वाइड में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजेश कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SPYM। डॉक्टर कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
1: थैंक यू
0: डॉक्टर कुमार। गृहमंत्री अमित शाह ने कल पंजाब नशा मुक्ति यात्रा में भाग लिया और जलंधर में जनसभा को संबोधित करते हुए पंजाब की समृद्ध विरासत की बात की और कहा उनकी पार्टी नशे की समस्या को पंजाब में पूरी तरह से खत्म करेगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे।
2: जो पंजाब पूरे देश के लिए धान और गेहूं पकाता था, देश की सुरक्षा करता था, वहाँ पर मावा मांग दिया जवाब, माताएं ऐसी रैलियां निकालती। मैं अभी नशे की लत के कारण जिन्होंने जान गंवाई है ऐसे परिवार को मिलकर आया हूँ। एक माँ अपने दो युवा बेटों की तस्वीर गोद में रहकर कहती है, इसको बंद कराओ, मेरे तो नहीं बचे, दूसरे के लाल को बचा लो। पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। सिर्फ पंजाब नहीं, देश भर के लोग मानते हैं कि पंजाब नशा मुक्त होना चाहिए।
0: डॉक्टर कुमार, गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन में पंजाब की समृद्ध विरासत की बात की, उसकी जो रिच हिस्ट्री है, और साथ ही ये भी कहा कि वहाँ पे जो नशे का प्रकोप है उसके बहुत गंभीर परिणाम है। कैसे देखते हैं आप इस स्थिति को, पंजाब में जो नशा मुक्ति का जो एक मुहिम की बात कही जा रही है, ये कितना इम्पोर्टेंट है वहाँ के ओवरऑल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए?
1: माननीय अमित शाह जी ने जो कल डिक्लेयर किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस देश में अगर हाईएस्ट लेवल पे लोग सीरियस हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं या होम मिनिस्टर हैं, तो आई एम श्योर, मैं विश्वास करता हूं कि ये बहुत जल्दी इस पे एक्शन दिखेगा। मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता हूं पंजाब का। पंजाब, राजस्थान, ये दोनों ऐसे प्रदेश हैं इस देश के जहां ट्रेडिशनली लोग अफीम लेते थे, ओपीएम यूज करते रहे हैं, और बहुत सारे आपको इसके ऊपर लिटरेचर मिलेगा, बहुत सारा इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। 78-79 के बाद जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन वाले आए और ईरान में आयतुल्ला खोमेनी का रिवोल्यूशन हुआ, तो जो ड्रग पहले ये इन तीन देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान में जो पैदा होता था, जो प्रोसेस होता था, वो यूरोप जाता था थ्रू यूगोस्लाविया, मगर चूंकि यहाँ इंटरवेंशन हो गया तो वो सारा का सारा ड्रग पंजाब के थ्रू रूट होने लगा। और वही समय था पंजाब का जब वो काफी डिस्टर्ब भी था। पंजाब में अगर आपको याद होगा आतंकवाद, तो आतंकवाद और ड्रग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब स्थिति इतनी खराब हो गई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बार जो पहला स्टडी वो हमारी संस्था SPYM ने किया था 2002 में, फिर 2008 में, फिर 2015 में, फिर 2018 में भारत सरकार के लिए हमने किया था। तो इन सब में जो नंबर दिख रहा है वो नंबर बहुत भयावह है, और अगर अभी भी अगर कुछ बड़े पैमाने पे नहीं किया जाएगा तो वी विल बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन।
0: आप ब्रॉडली स्टैटिस्टिक्स बता सकते हैं कि कितना विस्तार है इस समस्या का?
1: देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जनरली पंजाब की आबादी लगभग 3 करोड़ है, और 3 करोड़ में 50% फीमेल पॉपुलेशन है, और उसमें भी जो मेल पॉपुलेशन है वो 0 से 15 वाले बहुत कम बच्चे नशा करते हैं, तो लगभग 60-70 लाख लोगों में अगर 12-13 लाख लोग चिट्टा, या जिसको आजकल हीरोइन को चिट्टा आजकल बोलते हैं, वो अगर इतना बड़ा है तो आप सोचिए हर 6ठा 7वां बच्चा, मेल बच्चा नशा कर रहा है, और ये बहुत ही भयावह स्थिति है। और जो पंजाब गवर्नमेंट का जो डेटा है, लगभग 47% जो लास्ट मेरे पास डेटा आया था, 47% लोग पंजाब के प्रिजन्स में ड्रग यूजर्स या NDPS एक्ट में बंद हैं, और लगभग 12 लाख लोग अलग अलग पंजाब सरकार के जो प्रोग्राम है, ओट्स एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है पंजाब का, उसमें रजिस्टर्ड है, डी एडिक्शन सेंटर्स में रजिस्टर्ड है या प्राइवेट सेंटर्स में रजिस्टर्ड है। तो 12 लाख लोग एक बहुत बड़ा नंबर है, और पंजाब यूपी और मध्य प्रदेश, राजस्थान उतना बड़ा स्टेट नहीं है, इतना छोटा स्टेट है, तो सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है।
0: जो लोग ऑलरेडी उसमें फंसे हुए हैं उनको सेंसिटिवली उनके साथ डील करना और उनके ट्रीटमेंट के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए जो नेटवर्क है उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं?
1: देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात यह है कि लगभग 99% या उससे ज्यादा बच्चे नशा नहीं करते हैं, तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम होना चाहिए हर स्कूल में। और देखिए, अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन में बड़ा फर्क है। जैसे लोग जानते हैं कि टोबैको यूज से कैंसर होता है, या गुटखा या इस तरह के च्यूइंग टोबैकोज है वो खाने से उनको कैंसर होता है, मगर वो छोड़ते नहीं है। दे आर अवेयर, उनको जानकारी है, जागरूकता है। प्रिवेंशन के लिए तीन चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है लाइफ स्किल, जिसको हम लोग कहते हैं हुनर, जीवन कौशल, वो स्कूल में दिया जा सकता है कि ना कैसे कहें, अपने दोस्तों के दबाव से कैसे बचें, उन दोस्तों के बीच में न जाएं जो दोस्त ऑलरेडी इसमें फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हर स्कूल में भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने और माननीय अमित शाह जी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था नवचेतना, तो पंजाब के हर स्कूल में नवचेतना का प्रोग्राम होना चाहिए। ये लाइफ स्किल बेस्ड है। दूसरा, जिन बच्चों ने नशा लेना शुरू किया है उनको एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं पीयर लेड इंटरवेंशन, और ये चंडीगढ़ में बहुत सक्सेसफुली हुआ था, जिसमें लगभग 4000 बच्चों को, जो लोग नशा कर रहे थे, उनके पीयर ने उनको वापस स्कूल में दाखिला करवाया, और इन बच्चों को शायद डी एडिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अभी ये उनकी डिपेंडेंसी बहुत छोटी है, बहुत कम समय का उनका यूज है, मगर वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये दूसरी स्ट्रेटजी है। तीसरी स्ट्रेटजी है, जो ट्रीटमेंट में आ रहे हैं उस ट्रीटमेंट में किसी तरह का कोई बायस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टिग्मा बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ, और स्टिग्मा प्रिवेंट करता है लोगों को ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर में जाने के लिए। ये प्रिवेंट करता है फैमिलीज को उन ट्रीटमेंट सेंटर्स में ले जाने के लिए, कि लोगों को पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो ये जब तक तीनों स्ट्रेटजीज नहीं आप लागू करेंगे स्टेट में, तब तक बहुत कुछ हम नहीं अचीव करेंगे।
0: सो डॉक्टर कुमार, नशा मुक्त भारत अभियान सरकार ने शुरू किया 2020 में, और उसमें इसी तरह का, जैसे आप कह रहे हैं कि सेंसिटाइजेशन, लोगों को इस बारे में अवेयर करना कि ये एक समस्या है जिस पे काबू पाया जा सकता है, और सब कम्युनिटी के सपोर्ट से, फैमिली के सपोर्ट से, और इसमें ऑलरेडी 29.32 करोड़ सिटीजन्स को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और नेशनल अवेयरनेस कैंपेन्स के द्वारा जोड़ा गया है। ये इस तरह के, या जैसे मानस जो एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें एक हेल्पलाइन है जिसमें आप कभी भी फोन कर सकते हैं 1933 और अपनी समस्या काउंसलिंग ले सकते हैं, इस तरह की जो पहल सरकार की है, या आपको लगता है कि इस समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत जरूरी है?
1: देखिए, ये सारे के सारे कार्यक्रम वातावरण निर्माण के लिए होता है। जैसे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम बात करते थे, अब बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने कहा मैं भी परेशान था या मैं भी परेशान थी, तो लोगों ने बात करना शुरू किया। वैसे ही अब जब नशे के ऊपर जब बात शुरू हो रही है, तो ये वातावरण निर्माण हो रहा है, और उस वातावरण निर्माण में से प्राइम मिनिस्टर ने 2 अगस्त को एक नेशनल कॉल दिया था यंग लोगों के लिए, तो अलग अलग लोगों ने जो कॉल दिया, बट ये वातावरण का निर्माण हो रहा है, मगर इसमें कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने की जरूरत है। इसमें वो स्टेप लेने की जरूरत है जो साइंस, मतलब विज्ञान और साक्ष्य के आधार पे होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो अच्छे ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, उसमें ट्रेंड मैन पावर नहीं है, उसमें वो डॉक्टर्स नहीं है जो समझ सकते हैं कि अब नए प्रकार की दवाइयां बाजार में है, उसको यूज किया जाए। तो इन तमाम चीजों पे भी ध्यान देना होगा, अपार्ट फ्रॉम ये जो वातावरण निर्माण की जो आप बात कर रहे हो।
0: तो जो आप चुनौती बता रहे हैं कि ट्रेंड जो मैन पावर है उसकी जो संख्या है वो और भी बढ़ाई जानी चाहिए। इनफैक्ट इसके बारे में बात भी हुई है कि ये स्किलिंग जो है कि कैसे ट्रीटमेंट जो वहां पे जो केयर गिवर्स हैं वो कैसे उनको डील करें। तो इस डीलिंग में जैसे आपने विज्ञान की बात कही, विज्ञान के साथ साथ आपको लगता है कि एक सेंसिटिव अप्रोच भी बहुत जरूरी है?
1: समझिए, मैंने पहले जो स्टिग्मा वर्ड किया था वो यही है। दुनिया में एकमात्र बीमारी है जिस बीमारी के लिए व्यक्ति को जेल जाना होता है या मजिस्ट्रेट के सामने जाना होता है, ट्रीटमेंट सेंटर में नहीं जाना होता है। तो समाज और देश और सरकार को समझना होगा कि यह व्यक्ति जो नशे के गिरफ्त में है उसको इलाज की जरूरत है, अच्छे क्वालिटी इलाज की जरूरत है, उसको अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के जो प्रोफेशनल्स हैं उसके सपोर्ट की जरूरत है।
0: तो जैसा आपने कहा कि अभी जो दायरा है ऑलरेडी बहुत बड़ा है, जो भारत के स्तर पे जो अभियान चल रहा है, लेकिन इसके विस्तार की और भी जरूरत है। आप हमें बता सकते हैं कि अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, या जो महिलाएं यूजुअली जो पूरे परिवार है उसको एक तरह से उसकी नर्चर करती हैं, ऐसे जो पेरिफेरल ग्रुप्स हैं या कम्युनिटी है, उनको किस तरह से उनको इसमें शामिल किया जा सकता है इस मुहिम में?
1: देखिए, मैंने आपसे बताया स्कूल बेस्ड जो प्रोग्राम है और नवचेतना है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। नवचेतना में एक चैप्टर है जो सिर्फ पेरेंट्स के लिए है। इसके अलावा दो बड़ा एक पॉपुलेशन है इस देश में, एक है फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसमें आशा है, आंगनवाड़ी है, ANM है, इनको ज्यादा नहीं 2-3 घंटे का एक ओरिएंटेशन होना चाहिए, इनको पता होना होना चाहिए कि कहाँ पे ट्रीटमेंट सेंटर्स अवेलेबल है और कैसे पहचाने कि कोई अब इसके गिरफ्त में आ गया। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको, या पंचायती राज की जिम्मेवारी बनती है कि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इसमें लेकर आए। क्योंकि जब तक ये तीनों बड़े जो मिनिस्ट्रीज हैं ये ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो हम लोग उस पॉपुलेशन में नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए अभी तो हम लोग सिर्फ शहर की बात कर रहे हैं, शहर में अभी कुछ इलाकों की बात कर रहे हैं, अगर आप पूरे राष्ट्रीय स्तर की बात कर रही है तो उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन तीनों को आना पड़ेगा।
0: जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत ही व्यापक इसमें पार्टिसिपेशन की जरूरत है, तो नशा मुक्ति मित्रास का जो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है जिसमें वॉलंटियर्स जाके समझाते हैं, वो भी आपको लगता है कि ग्रास रूट लेवल पे, जैसा आप कह रहे हैं कि जो छोटे शहर हैं या रूरल एरियाज हैं वहां के लिए एक बहुत ही सुगम और प्रभावी एक तरीका है?
1: देखिए अधिकतर ये जो मित्र बने हैं वो मित्र कहां से है, एनएसएस से है, एनवाईके जो माई गॉव आजकल उसका नया नाम हो गया है, एनसीसी है, इन संस्थाओं के बच्चे बने हैं। क्योंकि ये बच्चे दूसरों बच्चों से थोड़े, मैं बेहतर नहीं कहना चाहता हूँ, थोड़ा ज्यादा एक्टिव हैं और उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। क्योंकि वो अगर वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो लोग उनकी बात सुनते भी हैं। तो इस तरह के जो मित्र बने हैं उनका भी रोल बड़ा अच्छा है, बट उनको भी ट्रेन करने की जरूरत है, उनको बताने की, उनको एज ए पीयर एजुकेटर उनको ट्रेन करने की जरूरत है। अगर वो ट्रेन हो जाते हैं तो उसका फायदा क्या होगा, हम और यंग पॉपुलेशन में बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। एक और बात मैं कहता हूँ, जो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च करने की जरूरत है, और वो भी उतना मुश्किल नहीं है, बट यूनिवर्सिटीज को एंड कॉलेजेस को इनिशिएटिव लेना होगा और उसके लिए भी भारत सरकार के पास प्रोग्राम है।
0: सो आप कह रहे हैं कि भारत सरकार के पास प्रोग्राम्स हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना जो है वो एक माइक्रो लेवल पे, उसमें बाकी लोगों की जो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी हो जाती है। डॉक्टर कुमार, आपने शुरुआत में बात कही थी जो बाहर से बॉर्डर के पार से ड्रग्स आती हैं, अब चाहे वो टेररिज्म हो या चाहे वो ड्रग्स हो, ये बॉर्डरलेस कहें कि मेनेसेस है, ये सभी को प्रभावित करती है और सभी के लिए उतने ही हानि पहुंचती है, उनकी इकोनॉमी को, के पूरे जो पीढ़ी है उसको, तो क्या कहेंगे आप इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितनी जरूरी है इस समस्या से पार पाने के लिए?
1: देखिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बगैर तो आप कहीं नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है वो सैंडविच है बिटवीन ये जो तीन कंट्रीज है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान, वहां पे जो कल्टीवेशन होता है उसका काफी बड़ा पोर्शन इंडिया आता है या इंडिया के थ्रू वो बाहर भेजना चाहते हैं। दूसरा जो म्यांमार है, म्यांमार में अभी आपको पता है कि वहां पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जो ड्रग अभी ओपियम पैदा हो रहा है वो प्रोसेस हो रहा है वो हमारे ईस्टर्न जो तीन स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, उससे आ रहा है। तो अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं होगा तो हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा, अगर इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा तो हमें नहीं पता है कि कहां से ड्रग निकल कर आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल जो हमारे संबंध है उन एजेंसीज के साथ जो हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिनको हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो फर्दर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है।
0: तो जैसा आप कह रहे हैं कि हर लेवल पर कोऑपरेशन की जरूरत है, अगर हम भारत की बात करें तो स्टेट लेवल पर जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्सेज हैं उनको जो सेंट्रल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके साथ मिलकर काम करना है, सभी देशों को साथ मिलकर काम करना है, बहुत बड़ी चुनौती है लेकिन अगर प्रतिबद्धता हो तो कोई भी समस्या पार की जा सकती है। सो इस उम्मीद और आशा के साथ कि नशा मुक्त भारत एक जो सपना है वो साकार होगा, हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर कुमार।
1: थैंक यू।
3: अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्त पंजाब से नशा मुक्त भारत की ओर विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। Countrywide.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय

0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होना चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें राज्य में चल रहे विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने राज्य की उपलब्धियों, निवेश और विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री को वर्ष 2027 में मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेश सम्मेलन में आमंत्रित किया। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। इस घटना के कारण विमान को सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। फ्लाई दुबई की यह उड़ान कल दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान सह पायलट ने विमान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उसे रोकने की कोशिश कर रहे कैप्टन स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला किया। घायल कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। ये जानकारी संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद जाता रहेगा। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरुसिंकल नोबेल ने रजत तथा महिला स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance. The Prime Minister said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. Addressing the centenary celebrations of Union Public Service Commission, UPSC, at Bharat Mandapam in New Delhi today, the Prime Minister stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service.
2: हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
1: The Prime Minister said an examination should not be considered just an event, as it is related to the future of the

0: उन्होंने कहा कि सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों के लिए अधिक अवसर पैदा करना भारत की नीति के प्रमुख केंद्र में है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसी भी देश पर दबाव बनाने के लिए खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक संघर्षों के कारण उत्पन्न खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट से ग्लोबल साउथ के देश सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज उर्वरकों की कमी कल खाद्य संकट का रूप ले सकती है। बैठक में मंत्रियों ने जबरन व्यापारिक कार्रवाइयों के माध्यम से खाद्य के हथियारीकरण पर G20 वक्तव्य पर सहमति व्यक्त की और इस विषय पर सहयोग जारी रखने की इच्छा जताई। इससे पहले श्री गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि के राजदूत जेमिसन ग्रिर के साथ विस्कॉन्सिन के मैकवान में रॉकवेल ऑटोमेशन के कार्यालय और कारखाने का दौरा किया। उन्होंने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से इतर प्रमुख G20 साझेदार देशों के व्यापार मंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इसराइल के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता डेविड मेंसर ने कहा है कि फ्लाई दुबई विमान अपहरण का प्रयास अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमलों जैसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि कल फ्लाई दुबई विमान में भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर पर हमला करने के बाद ओमान के पायलट ने कॉकपिट के नियंत्रण कक्ष में विमान की प्रणाली नष्ट करने का प्रयास किया। श्री मेंसर ने कहा कि यह प्रयास 9/11 हमलों जैसा हो सकता था। उन्होंने बताया कि सऊदी अधिकारी ओमान के पायलट से पूछताछ कर रहे हैं। ओमान के पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया जाएगा। श्री मेंसर ने कहा कि दुर्घटना की जांच करने और भविष्य में ऐसे हमले रोकने के लिए इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 6 दिन के लिए उड़ान पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि इस घटना के दौरान इजरायली यात्रियों और चालक दल ने भारतीय पायलट के साथ मिलकर विमान की सुरक्षा सुनिश्चित की। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। UAE के विदेश मंत्रालय के अनुसार लोक अभियोजन के विशेषज्ञ सदस्यों वाली यह टीम घटना की परिस्थितियों और कारणों की जांच करेगी। मंत्रालय ने कहा कि UAE के कानूनों के अंतर्गत इस मामले की जांच का अधिकार वहां की न्यायिक एजेंसियों के पास है, क्योंकि विमान UAE में पंजीकृत है और उसी के ध्वज के अंतर्गत संचालित होता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह भारतीय नागरिक और फ्लाइट दुबई की उड़ान FZ-1073 के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार करीबी नजर बनाए हुए है। मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब के तबुक स्थित एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें आगे के उपचार के लिए अबुधाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात सहित भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छर से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी। इससे पहले राजदूत ने उनके परिवार से भी मिले और कैप्टन के स्वास्थ्य और कुशलता के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस मामले में अबुधाबी सहित भारतीय दूतावास और दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। अफगानिस्तान के कुनौर और हेलमत प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनौर के सल्तन जिले और हेलमत के गर्मसेर जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। मुजाहिद ने बताया कि 24 सितंबर को कंधार, पक्तिका और खोस्त में हुए हमलों में 4 नागरिक मारे गए, जबकि 3 दिन पहले कुनार और पक्तिका में हुए हमलों में 3 लोग मारे गए थे। ताजा हमलों की निंदा करते हुए मुजाहिद ने इन्हें आक्रामकता का कृत्य बताया और पाकिस्तान का घरेलू, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए अफगानिस्तान पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की सैन्य आक्रामकता का उचित जवाब देगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र सहायता के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने में मदद के आरोप में कई देशों में मौजूद 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी 3 कंपनियां शामिल हैं।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम है हर श्रृंगार और ये जो खूबसूरत सा प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना ये था फिल्म यस बॉस का। जी हाँ, 1997 में आई ये फिल्म, जावेद अख्तर का लिखा ये गीत, अभिजीत की आवाज और इस गीत को संगीत से सजाया जतिन ललित ने।

रात का ये खामोश सा वक्त, हल्की सी ठंडी हवा है ना, और गुलाबी ठंड की दस्तक सी देने लगा है ये जो मौसम है ना, और साथ में कुछ ऐसे नगमे जो दिल की उन बातों को जुबा दे देते हैं जिन्हें हम अक्सर कह नहीं पाते।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वाकई गीत ऐसे हो तो झूमने का तो मन करता ही है। ये गीत जो आपने सुना, ये इस गीत को गाया कुमार सानू और अलका याग्निक ने, अलबेला फिल्म से, जतिन ललित का संगीत और समीर के लिखे गीत।

और हमको भी सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड से प्यार है, है ना, जिसे आप सुन रहे हैं कहाँ, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, कार्यक्रम है हर श्रृंगार और मैं हूँ आपके साथ रितिका। 1995 में आई फिल्म बरसात से आपने ये गीत सुना, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में, नदीम श्रवण का संगीत और समीर का लिखा ये गीत, ये जो गीत फिल्माया गया बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना पर। कहते हैं कि किसी को जानना और उसे समझना और उसकी छोटी छोटी बातों को याद रखना और फिर धीरे धीरे ये महसूस होना कि शायद दिल को उससे मोहब्बत हो गई है, ये एहसास जितना खूबसूरत है उतना मुश्किल भी है। तभी तो कहते हैं कि जो एहसास आप करते हैं उसे बताना भी उतना ही ज़रूरी है। जो हमारा अगला गीत है ना, छोड़े जाती हूँ आप सभी को उसी के साथ, और हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। 11 बजे आप सुनेंगे समाचार, बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड के चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की

0: आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में भी बदलाव किया है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। पुदुचेरी जिला प्रशासन ने 6 अक्टूबर को होने वाले थट्टन चावड़ी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए 4 फ्लाइंग स्क्वाड और 1 विशेष निगरानी टीम 24 घंटे तैनात की गई है। इसके अलावा 5 बाइक स्क्वाड और आबकारी विभाग की 3 टीमें भी लगातार निगरानी कर रही हैं। उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार रविवार 4 अक्टूबर को शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदाता चुनाव संबंधी शिकायतें टोल फ्री नंबर 1950 या निर्वाचन आयोग के सी विजिल मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज करा सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। इस घटना के कारण विमान को सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। फ्लाई दुबई की यह उड़ान दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान सह पायलट ने विमान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उसे रोकने की कोशिश कर रहे कैप्टन स्मिथ मछार पर चाकू से हमला किया। घायल कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। यह जानकारी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के राजदूत डॉ दीपक मित्तल ने दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मछार पर गर्व है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ टोटल 66 पदक जीत लिए। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा महिला स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। उधर पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को और पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with principles of pro-people, pro-active and good governance. The Prime Minister said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. Addressing the centenary celebrations of Union Public Service Commission at Bharat Mandapam in New Delhi today, the Prime Minister stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service.
2: हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है बल्कि वो यह भी देखे युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
1: The Prime Minister said an examination should not be considered just as an event as it is related to the future of the youth. Mr. Modi noted that a delay of even a few months can create difficulties for the youth and therefore the examination system should follow the principle of time certainty. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have praised Captain Smith Mutcher for his heroic courage in preventing a major tragedy and saving many precious lives. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आज की आर्थिक खबरों की बारीकियों पर चर्चा के लिए आज वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे स्टूडियो में आमंत्रित है. नमस्कार उदयन, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद सोनू.
1: और अब हेडलाइंस के साथ निहारिका भुवानिया.
0: The headlines for this evening are as follows. Benchmark domestic indices shed nearly 1%. Sensex falls over 550 points. Nifty settles below 22,450. Finance Ministry expects country's economy to grow by 7.3% in second quarter of current financial year. And government needs to encourage households to shift more savings to long-term pension products, says Chief Economic Advisor V. Anant Nageswaran.
1: प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक लगभग 1% की गिरावट पर हुए बंद. सेंसेक्स 550 अंकों से अधिक गिर गया. निफ्टी 22,450 के नीचे आ गया. वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ेगी. और सरकार को परिवारों को प्रोत्साहन देना चाहिए.

ये कि वे अपनी बचत की ज्यादा राशि लंबे समय के पेंशन उत्पादों में हस्तांतरित करें, कहा प्रमुख आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने।

0: And before we move forward, a small disclaimer for all our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. And we further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक लगातार चौथे सत्र आज गिरावट में रहे। सेंसेक्स 0.8% की मंदी से 571 अंक कम होकर 71,910 पर बंद हुआ। निफ्टी 0.9% टूटकर 199 अंकों की गिरावट दर्ज करता हुआ 22,422 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 दोनों सूचकांक लगभग 1% की भारी गिरावट पर बंद।
0: Benchmark domestic equity indices extended their losing streak for the fourth straight session today. The Sensex plunged 571 points or 0.8% to close at 71,910. The Nifty shed 199 points or 0.9% to settle at 22,422. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 as well as the small-cap 100 indices tumbled around 1% each.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 24 गिरावट में रहीं। सबसे अधिक गिरने वाली कंपनियां रहीं मारुति 4.6%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.3% और 3% गिरावट के साथ टाटा स्टील। इसके विपरीत सबसे अधिक बढ़ने वाली कंपनियां थीं 4% उछाल के साथ इन्फोसिस और 1.4% बढ़त के साथ टीसीएस और एचसीएल टेक।
0: इन द सेक्टोरल इंडेक्सेस ऑन द बीएससी 22 out of 28 sectors edged lower while capital goods remained unchanged. Among the top losers, auto shed 3.1%, metal fell 2.2% and consumer discretionary dropped 2.1%. In contrast, IT jumped 1.8%, focused IT rose over 1.6% and insurance added 0.6%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,056 companies declined, 1,367 advanced and 229 remained unchanged.
1: रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 48 पैसे कमजोर होकर 96.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। क्या कहेंगे उदयन, ये सप्ताह काफी दबाव में रहा है बाजार। चारों ही दिन छोटा सप्ताह है, छोटा कारोबारी सप्ताह है। आज भी बाजार जब गिरावट के साथ खुले, बॉन्ड यील्ड्स मल्टी ईयर हाईज तक पहुंच गई थी, क्रूड ऑयल प्राइसेस की कीमतें बढ़ी हुई थी, इस बीच पूरा टाइम दबाव में रहे और आफ्टरनून ट्रेड तक आते आते लगभग 1280 अंक गिर गया था सेंसेक्स। लेकिन अगर एक ऑप्टिमिस्टिक की तरह हम उसके बाद देखें, जो 700 अंकों से अधिक की बढ़त आई, ये आपको क्या सिग्निफिकेंट लगती है? कैसे देखते हैं आप बाजार की स्थिति को?
2: देखिए, जब से हम पिछले कुछ सप्ताह में जो हमने गिरावट देखी है बाजार में और सिक्वेंशियली वो गिरावट हम देखते आ रहे हैं, ये अगर आप गिरते हुए बाजार के की इतिहास को देखें
1: जी,
2: कौन कौन से ऐसे वक्त रहे हैं जहां पे बाजार में गिरावट आई है और इस पैमाने इस लेवल में इस स्तर में गिरावट हुई, तो सबसे 6 बड़े गिरावट के जो पीरियड्स हैं 2000-2008 उसमें आ जाएंगे ये, तो ये वाला पीरियड है। पर अभी भी जो गिरावट हुई है, क्योंकि हम इतने ऊंचे स्तर पे थे, उतना नहीं हुआ है जितना वो जिन सालों के बारे में बात किया 2008-2010 उन टाइम्स में ऐसा नहीं हो, 2000 में जब .com बबल कहा जाता था, तो
1: 2013 में
2: हाँ जी, तो जी। वो अभी वो टॉप 6 में हम आ गए हैं, जो काउंटडाउन होता है गानों गीतों का होता है, रेडियोज में आते हैं, तो उसमें तो आ गया है। पर ये एक पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है। पर दूसरी बात ये है कि अब अगर हम आप इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि स्टॉक्स जो हैं ज्यादातर शेयर बाजारों में दबाव में है, तो रिस्क हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स को अगर या शेयर्स को अगर आप हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो रिस्क लेने की जो एपेटाइट है, जो भूख है, जो आपका अर्ज है, वो पीरियोडिकली कम होता जा रहा है। हाँ, कई लोग हम इमीडिएटली कहेंगे कि आप देखिए अमेरिका में बढ़ रहा है और दूसरी जगह में बढ़ रहा है, वहां पे कारण है, फंडामेंटल रीजंस हैं, वहां पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल्स आ रहे हैं वो काफी मजबूत फाइनेंशियल्स हैं। तो फिर आपकी एआई रिलेटेड बातें, पर ये हमें देखना पड़ेगा। अगर बॉन्ड मार्केट यील्ड्स के बारे में बात की, दुनिया के सारे बॉन्ड बाजारों में बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं, तो कई जगह में कई
1: जो स्टॉक मार्केट के बजाय अभी बॉन्ड मार्केट्स में ज्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं इन्वेस्टर्स।
2: बिल्कुल नहीं, वो क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि यील्ड अगर बढ़ेगा तो आपका प्राइस घट रहा है। इसका मतलब आपको उससे भी ज्यादा यील्ड वाले बॉन्ड चाहिए होंगे, तो अगर आप बेचना चाहेंगे तो फिर मुश्किल है। अगर आपके होल्डिंग्स में आपके फंड मैनेजर ने बॉन्ड्स ले रखे हैं, या तो आपने डेट फंड लिया है या किसी और में लिया है, तो उसके तो वैल्यू नीचे जा रहा होगा। पर अगर आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, बिल्कुल मतलब मान लीजिए 30, जैसे मान लीजिए अमेरिका के जो है वो ऑल टाइम हाईस में चल रहे हैं, तो 30 साल होल्ड करना पड़ेगा, तो जो 30 साल का व्यक्ति है वो 60 साल की उम्र तक वो होल्ड करेगा, ऐसा होता तो नहीं है, ठीक है ना। तो जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो बाजार में ट्रेडेड होते हैं वहां पे दबाव है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये दबाव तब तक रहेगा जो एक फंडामेंटल जो बिल्डिंग ब्लॉक है या जो इस्तेमाल होता है कच्चे तेल के दाम, जब तक उसमें निश्चितता नहीं आएगी तब तक दबाव में रहेगा। कुछ देशों में कम रहेगा, जो लोग खुद आयात पे निर्भर नहीं करते और उनमें कम रहेगा। हम भारत जैसी अर्थव्यवस्था जहां पर हम ज्यादातर अमाउंट पे हम लोग आयात करते हैं, हम लोग हमारे ऊपर प्रेशर पड़ा रहेगा, तो वो आप कॉर्पोरेट फाइनेंशियल्स में उसका इम्पैक्ट हमें उसकी आशंका रहेगी। और आप पाएंगे कि
1: अब जब रिजल्ट्स आने शुरू होंगे
2: थोड़ा बहुत इफेक्ट तो जरूर होगा। तो ये स्टॉक मार्केट क्योंकि उसे लीड इंडिकेटर बोला जाता है, वो आगे से ही भापने की कोशिश करते हैं, आपको सिग्नल देते हैं, संकेत देते हैं कि कैसा आगे चल के होगा, उसको लीड इंडिकेटर। कई ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो लीड इंडिकेटर्स माने जाते हैं, तो स्टॉक मार्केट को बोला जाता है। तो ये आप देखेंगे, ये जब तक तेल कच्चे तेल के दाम जो है सब, अगर आप एक चीज की तरफ अगर आपको उंगली डालनी, पॉइंट योर फिंगर एट वन, तो वो कच्चे तेल के दाम, अगर ये कल स्थिर हो जाता है आपको आइडिया हो जाता है,
1: जो ज्यादा इंपोर्टर नेशंस हैं उनको ज्यादा इंपैक्ट करता है।
2: कल अगर ये सॉर्ट आउट हो जाएगा ना, मैं आपको पूरे मतलब वैसे तो आपने प्रोग्राम से पहले डिस्क्लेमर दे ही दिया है, तो फिर भी मैं कहने के लिए, और मेरे से बहुत ज्यादा लोग डिसएग्री नहीं करेंगे कि ऑटोमेटिकली आप दे पाएंगे कि पूरे माहौल में काफी परिवर्तन और फर्क आ जाएगा। तो ये बना जब तक रहेगा तो ये शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली पिवट वगैरह वगैरह, पर जो छोटे निवेशक हैं जो इस प्रोग्राम के सुनने वाले हैं, उनको वही काम करना है जो वो हमेशा करते आए, नियमित रूप से निवेश करना, कोई नई चीजें नहीं करनी। जब मार्केट सीधी वर्टिकली ऊपर जा रही थी तब भी कुछ अलग नहीं करना था। एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि क्योंकि हम किताबें पढ़ते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, हमें लगता है निवेश जो है कुछ उसमें कुछ खास करना पड़ता है, तो निवेश एक व्यायाम की तरह है, आपके डेली जो आप खाना खाते हैं हेल्दी खाना खाते उसकी तरह है, वो बोरिंग होना होता है उसको। ये नहीं कि उसमें कुछ खास चमत्कारी कुछ होता है, चमत्कारी नहीं होता, चमत्कारी लोग बोलते हैं, हम जैसे एक्सपर्ट आके हो सकते हैं तो लोग ऐसी बात करेंगे।
1: वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज भी है निचले दामों पर,
2: हाँ, पर वो उसके लिए आपके आप में वो मतलब जिगरा चाहिए जिसे कहते हैं कोलोकियल टर्म्स में, सो यू नीड टू हैव एन एपेटाइट फॉर दैट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस ऐसे, और जाते जाते मैं इस बात को खत्म करते करते एक बात और बात कहूं कि ये हमने हमारे देश में शोध हुआ है कि आप मार्केट में जो ऐसी गिरावट आती है उसमें उसके बाद जब रिबाउंड होता है सबसे ज्यादा वेल्थ जो क्रिएट होते हैं, जो आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो इस रिबाउंड में होता है, क्योंकि आप और हम जैसे लोग, इवन सबसे ज्ञानी गुनी लोग भी पता नहीं कर सकते कि कौन सा कब जाके बॉटम मार्केट रीच करता है, इसलिए आपको इन्वेस्टेड होना पड़ता है। तो जैसे एक वोल्टेज स्टेबलाइजर वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, जितनी देर तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे, बाजार में निवेशित रहेंगे, वो एक साल में ऊपर नीचे ज्यादा होगा, दो साल में थोड़ा कम होगा, आगे चल के बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज की तरह हो जाता है।
0: And with that, let's also move towards the next story for this evening. India's economy is expected to grow by 7.3% in the second quarter of financial year 2027, supported by resilient domestic demand and investment. According to the Finance Ministry's monthly economic review for September, the economy entered the second quarter of current fiscal from a position of strength after recording 7.8% growth in the first quarter. However, it cautioned that India cannot take its growth performance for granted as geopolitical polarization and disruptions across global supply chains intensify. Higher oil prices, tightening global financial conditions and trade uncertainty pose challenges to sustaining the growth momentum. The review highlighted that high-frequency indicators for July to August suggest growth has continued into the second quarter, although at a more measured pace. So very quickly on this, Udin, this projection has also said that at the current run rate of nearly $400 billion in total exports achieved in the first 5 months of 2026, the country's overall export value for the full financial year could reach approximately $1 trillion. So what could be driving this kind of growth? And also, we've been able to maintain a position for ourselves given the volatile global scenario. Just a quick comment on that.
2: One, I would say that I would guess that the fact that our the value of the rupee has gone down would have made us a lot of our exports price competitive. I don't have access to any study, but people have already started talking about that this is one possibility. It's a pretty sharp fall in the value of the rupee, and it would have actually made a difference in many of the places where we compete on the basis of price with our competitors. That's for number sure. One. Number two is we have been diversifying our basket. Mm-hmm. Okay, and lot of some our products have become high value added, like mobile phones and stuff like that, electronics. So they're very high value added. Second is things like petroleum related stuff where the prices are going up. So these would have added a kicker out there. Last but not the least would be these trade agreements. Some of these things must be coming into play. So they haven't come into play all that much in the level at levels that we would like. But in the next 6-7 maybe 8 months, we will see those benefits coming in, and you know, smart entrepreneurs catching in.
0: It's kind of laying the groundwork future prosperity.
1: उदयन, आपको लगता है कि करंट स्टडी में ब्रीफली क्या लगता है आपको, जो ग्रोथ पर भी जैसा कि इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि काफी हैं चुनौतियां हैं, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन के लिए भी चुनौतियां, जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि आरबीआई के लिए जो अब मंडे से वेंसडे तक उनकी पॉलिसी मीटिंग होने वाली है, एक बहुत मुश्किल फैसला है?
2: मुश्किल फैसला तो है, क्योंकि आपने FCNR के जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं वहां से जबरदस्त आपने कलेक्शन किया, तो इसका मतलब बहुत लिक्विडिटी थी। आपने गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन करके वो लिक्विडिटी सक आउट किया है, पर फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि सिचुएशन कहाँ पे है।
1: तो इंटरेस्ट रेट्स के लिए क्या आपको लगता है कि किस तरह का डिसीजन?
2: देखिए, ज्यादातर लोगों का मानना है कि जैसे फेड है वैसे ही आरबीआई रेट हाइक करेगी। अब वो कब करेगी और हमारे उसमें कितना प्रेशर है, ये तो आरबीआई वो कर पाएंगी, पर मुझे लगता है कि, और ज्यादातर लोगों का मानना है कि एक या दो रेट हाइक्स शायद ऑन द कार्ड्स है। वो कब आएगा नोबडी नोज, बट हम उम्मीद कर सकते हैं।
1: अब अगली खबर लेते हैं। सितंबर में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में तेजी आई है, नए ऑर्डर और उत्पादन में वृद्धि के चलते इस क्षेत्र का क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI 7 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। HSBC इंडिया विनिर्माण PMI अगस्त के 52.8 से बढ़कर सितंबर में 55.1

0: गया, वहीं दूसरी तिमाही का औसत पीएमआई 53.8 रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत घरेलू और वैश्विक मांग से बिक्री और उत्पादन बढ़ने के बल पर भारत का फैक्ट्री क्षेत्र बीती तिमाही में मजबूती पर बंद हुआ। मांग में बढ़त व्यापक थी। इलेक्ट्रॉनिक, खाद्य, दवा और कपड़ा उत्पादों में तेजी से नए व्यापार में वृद्धि आई। बहुत ही उत्साहजनक आंकड़े हैं ये, सेल्स और प्रोडक्शन दोनों में इतनी जो मजबूती बनी हुई है। आपको लगता है कि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं बाजार में, वो भी इन जो आंकड़े हैं उनका संज्ञान लेते हैं?
1: बिल्कुल लेना चाहिए। और देखिए, अगर 7% से अगर देखिए, एक और आर्गुमेंट है जो, अगर 7% से अगर आपकी जीडीपी ग्रो करती है, आप ये मान के चलते हैं, और 4 या 4.5% इन्फ्लेशन करते हैं, तो आपके जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके 11.5% तो वैसे ही ग्रोथ नॉमिनल टर्म्स में आप देख रहे हैं
0: जी।
1: ये ग्रोथ आपको कहाँ पे, कौन सा दूसरा इन्वेस्टमेंट सोर्स आपको देगा? तो आपको कई बार ना इस तरीके से थंब रूल्स, ऑल्दो दिस इज नॉट अ वेरी कल्चर्ड और वेरी इवॉल्व्ड आर्ग्यूमेंट, पर अगर आप थंब रूल से देखें, मतलब बैक ऑफ द एनवेलप करें, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे पोटेंशियल है। क्योंकि जो अगर आपके सबसे बेहतरीन जो कंपनीज हैं वो इकोनॉमी के उनकी वृद्धि दर के को मैच तो करेंगी
0: जी,
1: और अगर ऐसा होता है, टैक्स के बाद आपका जो रिटर्न आता है, इन्फ्लेशन के बाद जो रिटर्न आता है, वो तो नेट पॉजिटिव जा रहा है और वेरी हेल्दी पॉजिटिव आ रहा है।
0: इनफैक्ट जो आप बोल रहे हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक मजबूती दिखाई दे रही है धरातल पर, उसका एक और प्रमाण है वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सितंबर माह में कुल 14.7% की वृद्धि दर्ज की गई और ये 2,03,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। एकीकृत जीएसटी संग्रह 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। घरेलू गतिविधियों से प्राप्त सकल जीएसटी राजस्व में 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई और ये लगभग 1,38,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं आयात से प्राप्त संग्रह में लगभग 26% की वृद्धि दर्ज की गई और ये 65,525 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशियाई बाजारों में जापान का निकेई 225 3.3% के उछाल में रहा और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 2% की बढ़त दर्ज हुई। तो बहुत डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रही है वर्ल्ड मार्केट्स में। अगर हम ये जापान का जैसे देखें, दक्षिण कोरिया का देखें, तो आज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, तो कैसे आप इसको आंकते हैं?
1: देखिए, जापान के अपने चैलेंजेस हैं, वहां पे मुद्रास्फीति है, स्पेंडिंग को लेकर चिंताएं हैं, वहां पे साउथ कोरिया में AI रिलेटेड, चिप रिलेटेड बूम हुआ है और वहां पे रनअवे ग्रोथ हुआ है। तो ये जो हालात हैं ये हमेशा रहते नहीं है। कई लोग मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में कमेंट्री देखता हूँ, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो ये मार्केट्स वन वे, एक ही लेन नहीं है
0: जी।
1: मार्केट्स गिरती भी हैं, तो पता नहीं ये
0: मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर्स भी।
1: अगर गिरेगी नहीं तो आपका एवरेज कॉस्ट कैसे बनेगा और फिर आप मुनाफा कैसे करेंगे? जितना महंगा आप खरीदेंगे आपको उतना ही आगे, अगर बहुत महंगे में खरीदते हैं आपको जो 3 साल में आप ब्रेक इवन करते हैं वो 4 साल में करेंगे
0: जी।
1: तो कई बार डाउनवर्ड मूवमेंट आपके हक में होता है
0: जी।
1: तो ये कुछ बातें हैं, ऑब्वियस बातें हैं, जो थोड़ा सा ऐसे मौकों में ख्याल रखना होता है।
2: And let's also take a look at the next story. India has cautioned against treating legitimate national measures to protect food security as the weaponization of food. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal made the distinction during a session of the G20 Trade Ministers meeting in Milwaukee, United States. Goyal highlighted that the shared objective must be to ensure that food remains a source of security, stability and cooperation. Chief Economic Advisor V. Anant Nageshwaran today said that the government needs to encourage households to commit a larger share of their savings to long-term pension products, as pension and insurance assets remain a relatively small part of household savings. He made these remarks while speaking virtually at an event marking National Pension System Diwas 2026 in New Delhi. Nageshwaran said that Indian households have changed their saving patterns.
3: Indian households have changed how they save, and they have changed faster than many of us expected. Monthly flows into systematic investment plans rose from under 4,000 crores in 2016-17 to over 28,000 crores in the first 8 months of 25-26. Yet, between 2018-19

सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अंजू आ चुकी है निशिगंधा लेकर स्टूडियो में। छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महात्मा गांधी का शांति और अहिंसा का संदेश विश्व के कई हिस्सों में व्याप्त युद्ध और संघर्ष के माहौल में और अधिक प्रासंगिक हो गया है। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर अपने देश में राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन और आदर्शों का वैश्विक समुदाय व्यापक रूप से सम्मान करता है। गांधी जयंती के अवसर पर आज देशभर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन विशेष ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान 2026-27 सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में भी बदलाव किया है। नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के कई सुधार शुरू किए हैं। परिचालन दक्षता और कामकाज सुगमता बढ़ाने के उपायों की जानकारी देते हुए नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि व्यापक बदलाव का उद्देश्य कामकाज डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और उच्चतम सुरक्षा मानक के साथ उत्तरदायी व्यवस्था की ओर बढ़ना है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीआईबी इम्फाल के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामे, दूरदर्शन केंद्र आइजोल के निदेशक समाचार नामपिबो मारिनमाई और केंद्रीय संचार ब्यूरो आइजोल के बहुकार्य कर्मचारी एच लियानवेला के दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री वैष्णव ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में उनके शोक संतप्त परिवारों, मित्रों और सहकर्मियों के प्रति संवेदना व्यक्त की। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अलशमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। इस घटना के कारण विमान को सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। फ्लाई दुबई की ये उड़ान दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान सह पायलट ने विमान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उसे रोकने की कोशिश कर रहे कैप्टन स्मिथ मछार पर चाकू से हमला किया। घायल कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। यह जानकारी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के राजदूत डॉ दीपक मित्तल ने दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मछार पर गर्व है। जापान एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य पदकों सहित 66 पदक लेकर 8वें स्थान पर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 12:11:16। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम है निशिकंधा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

ये वादियाँ, ये मौसम बुला रहा है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें, तरस रहे हैं ये फूल तुम्हें छूने के लिए, और मचल मचल की ये हवाएं बुला रही हैं तुम्हें।

लाख खूबसूरत सही ये दुनिया तो हम क्या करें, लाख खूबसूरत सही ये दुनिया तो हम क्या करें, हमारी आंखों को तो बस तेरा दीदार ही पसंद है।

गए थे महफिल में पर होश गवा बैठे, गए थे महफिल में पर होश गवा बैठे, तुझसे क्या मिले हम अपना हर कल ऐसे ही भुला बैठे।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

हम अपने उन सभी श्रोताओं का भी स्वागत करते हैं जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है निशिगंधा और मैं हूं आपकी दोस्त अंजू।

धड़कने बेकाबू होकर बस तुम्हारा ही नाम तो लेती हैं, धड़कने बेकाबू होकर बस तुम्हारा ही तो नाम लेती हैं, मेरी आंखें हर चेहरे में बस तुम्हें ही ढूंढती हैं, न मिलूं तुमसे तो ये दिल बहुत घबराता है, जानते हो कैसे, जैसे सूखी जमीन बूंद बूंद बरसात को तरसती है।

तुम्हें पता है, इस जमाने की कोई भी चीज मुझे सुकून नहीं दे सकती सिवाय तुम्हारे। तन्हाइयों के साए में जब भी दिल घबराता है, ये दिल धड़कना भूलकर बस तुम्हें ही पुकारता है।

दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महात्मा गांधी का शांति और अहिंसा का संदेश विश्व के कई हिस्सों में व्याप्त युद्ध और संघर्ष के माहौल में और अधिक प्रासंगिक हो गया है। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन और आदर्शों का वैश्विक समुदाय व्यापक रूप से सम्मान करता है। गांधी जयंती के अवसर पर आज देशभर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर आज राजघाट और विजय घाट पर आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनजर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। यह व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी रहेगी। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने, यातायात नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात यातायात कर्मियों का सहयोग करने की अपील की है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ अक्टूबर से दिसंबर 2026 के लिए निजी कॉरपोरेट क्षेत्र कैपेक्स निवेश आशय कैपेक्स 2026 पर भविष्योन्मुखी सर्वेक्षण कर रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि यह सर्वेक्षण विशाल निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की कंपनियों द्वारा नियोजित और क्रियान्वित पूंजी पर व्यय पर व्यापक और समयबद्ध जानकारी प्रदान करेगा। नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के कई सुधार शुरू किए हैं। परिचालन दक्षता और कामकाज सुगमता को बढ़ाने के उपायों की जानकारी देते हुए नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि व्यापक बदलाव का उद्देश्य कामकाज डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और उच्चतम सुरक्षा मानक के साथ उत्तरदायी व्यवस्था की ओर बढ़ना है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के लिए विशेष टीम का गठन करने का निर्देश दिया है। इस घटना के कारण विमान को सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। फ्लाई दुबई की यह उड़ान दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान सह पायलट ने विमान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उसे रोकने की कोशिश कर रहे कैप्टन स्मिथ मछार पर चाकू से हमला किया। घायल कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। यह जानकारी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के राजदूत डॉ दीपक मित्तल ने दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मछार पर गर्व है। जापान एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण गुरदासपुर, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, उदयपुर और नालिया में वर्षा हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with principles of pro-people, pro-active and good governance. The Prime Minister said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examination must also work on reforms that are the need of the country. Addressing the centenary celebrations of Union Public Service Commission UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday, the Prime Minister stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has highlighted India's food security measures and reaffirmed commitment to rules-based multilateral trading system. Participating in the opening day of the G20 Trade Ministers meeting in Milwaukee, Wisconsin, Mr. Goyal thanked the U.S. G20 presidency for placing food at the center of the discussions. He said, ensuring food security for all and creating greater opportunities for farmers are central to India's policy. He reiterated that food must never be used as an instrument of pressure against any country. Mr. Goyal pointed out that countries of the global south are among the most adversely impacted by the food, fuel and fertilizer crisis caused by global conflicts. The ministers reached consensus on the outcome document, G20 statement on the weaponization of food through coercive trade actions and expressed their intent to continue cooperation on the subject. Captain Smith Mutcher, who was injured in the Fly Dubai flight incident, is in stable condition and recovering well, said India's ambassador to the UAE, Dr. Deepak Mittal. Speaking exclusively to Prasar Bharti, Ambassador Mittal said he met Captain Mutcher and his family in the UAE and found the pilot in good spirits. Dr. Mittal said the captain is receiving good medical care and that the Indian embassy remains in continuous contact with the UAE authorities. Meanwhile, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have praised Captain Mutcher for his heroic courage in preventing a major tragedy and saving many precious lives. In Mizoram, three persons, including PIB Imphal Additional Director, General Dr. Imgampami, DD News Aizawl Director, Nampibo Marine Mai and CBC Aizawl MTS H. Lianwele were killed in a road accident near Sheol Suk yesterday. The car in which they were travelling fell into a gorge. Another person was seriously injured. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav condoled their deaths and expressed condolences to their bereaved families. The Defence Ministry also mourned the death of Nampibo Marine Mai, who had served as PRO Defence at DPR Headquarters and Director DD News Mizoram. President Draupadi Murmu has said Mahatma Gandhi's message of peace and non-violence has become even more relevant amid wars and conflicts in several parts of the world. In her message on Gandhi Jayanti, President Murmu paid tributes to Mahatma Gandhi on his 157th birth anniversary. She said his lives and ideals are widely respected across the world and expressed confidence that India is advancing toward the goal of Viksit Bharat by 2047. Maharashtra Chief Electoral Office has said voters who received notices for no mapping or logical discrepancy during electoral roll revision will not be required to appear personally for hearings under revised ECI instructions. Booth-level officers will visit such voters' home to collect required documents based on which the Electoral Registration Officer or Assistant Electoral Registration Officer will take a decision. Voters can also submit documents to the concerned BLO through WhatsApp. Special polling station-wise camps will also be held tomorrow, Sunday, and on the 10th and 11th of this month, where voters can submit the required documents. Now on to the sports. At the Asian Games 2026 in Japan, India enjoyed another action-packed day yesterday with the men's hockey and cricket teams reaching their respective finals. Now India's medal tally has risen to 66, including 10 gold, 23 silver and 33 bronze medals. Men's hockey team defeated their arch rivals Pakistan 4-3 in a thrilling semi-final, while the cricket team beat Sri Lanka by 124 runs to book a place in the gold medal match. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं एक बार फिर से अंजू करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सुनेंगे इस घंटे बहुत ही मधुर गीत। एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार।

भूल जाएंगे हम इस जमाने के सारे सितम, भूल जाएंगे हम इस जमाने के सारे सितम, बस एक बार महफिल में तुम पुकारो तो सही।

ढल रही है ये रात तुम्हें याद करते करते, ढल रही है ये रात तुम्हें याद करते करते, और मेरा दिल अब भी तेरी यादों की महफिल में गिरफ्तार है।

से कहो रुक जाए आज जरा ठहर कर, रात से कहो रुक जाए जरा आज ठहर कर, गुजर ना जाए ये लम्हा यूं ही संवर कर। बड़ी मन्नत से मिली है ये घड़ी, बड़ी मन्नत से मिली है ये घड़ी, देख लेने दो तुम्हें जी भर के ऐ मेरे हमसफर।

न जाने क्यों एक डर सा लगा रहता है तुम्हारे दूर जाने का, न जाने क्यों एक डर सा रहता है तुम्हारे दूर जाने का। शायद अब इस दिल को आदत नहीं रही तुम्हारे बिना मुस्कुराने की।

चलो कहीं दूर चले हम इन घटाओं के साथ, चलो कहीं दूर चले हम इन घटाओं के साथ, थाम कर उम्र भर के लिए एक दूजे का हाथ, जहां रास्तों में सिर्फ सुहानी सी धुंध हो और कभी खत्म ना हो हमारी ये गुफ्तगू की रात।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से आपसे मिलेंगे कार्यक्रम रात सुरमई लेकर। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: गांधी जयंती के अवसर पर आज देशभर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर आज राजघाट और विजयघाट पर आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनजर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। यह व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी होगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास पर जोर देकर उपलब्धता, वहनीयता और संधारणीयता के माध्यम से पूरी की जानी चाहिए। श्री पुरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गोवर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा कि कनाडा और भारत ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 70 अरब डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश व्यापक व्यापार समझौते पर वार्ता आगे बढ़ा रहे हैं। श्री सिद्धू ने कहा कि वार्ता का 5वां दौर सोमवार को ओटावा में शुरू होगा, जिसमें दोनों पक्ष आगामी महीनों में वार्ता को अंतिम रूप दे सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तेलंगाना के मेदचल मलकाजगिरी जिले के बचुपल्ली स्थित एक निर्माण स्थल पर उत्तर प्रदेश के 12 सदस्यों के एक परिवार को लगभग 1 वर्ष तक बंधुआ मजदूर बनाकर रखे जाने की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने तेलंगाना के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मेदचल मलकाजगिरी के जिला मजिस्ट्रेट और साइबराबाद के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर इस मामले में 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में बचाए गए सभी बाढ़ पीड़ितों की स्थिति और उनके वर्तमान ठिकाने, उनकी तत्काल सुरक्षा, आश्रय, भोजन और चिकित्सा देखभाल के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों द्वारा बैंकिंग कंपनियों में प्रमुख हिस्सेदारी की अधिग्रहण अनुमोदन प्रक्रिया सरल बनाने के संशोधित निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा है कि इन संशोधनों का उद्देश्य पात्र संस्थागत निवेशकों द्वारा प्रमुख हिस्सेदारी के बाद के अधिग्रहण के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15

दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत का अभियान 7 अक्टूबर को केपटाउन में ग्रुप ए में पिछले चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले से शुरू होगा। 10 अक्टूबर को भारत जोहान्सबर्ग के वंडर्स स्टेडियम में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगा। शुरुआती दो मुकाबलों के बाद भारत 14 अक्टूबर को सेंचुरियन में अफगानिस्तान से खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हुआ है 2:11 और 2 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं अंजू एक बार फिर से करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत। पहला गीत मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिल्म प्रेम रोग से, जिसे गाया है सुरेश वाडकर के साथ। लता मंगेशकर ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

सीने में जो धड़कता है अब वो मेरा दिल दिल नहीं तेरा साया है। तुम अपनी बेअंतहा मोहब्बत से उसे खुद में समा चुके हो।

दिल से जुदा नहीं कर सकते ये वादा है हमारा, दिल से जुदा नहीं कर सकते ये वादा है हमारा। तुम जहां भी जाओगे पाओगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ अक्स हमारा।

मेरी आंखों में छिपे इंतजार को भी कभी पढ़कर तो देख, मेरी आंखों में छुपे इंतजार को भी कभी पढ़कर तो देख, ये आज भी सिर्फ तेरे नाम पर ही ठहरती हैं।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और अगला कार्यक्रम हमरा ही लेकर आएंगे अर्चित पांडे। मुझे अनुमति दीजिए, जल्द ही मिलूंगी किसी न किसी मोड़ पर। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इस अवसर पर पूरे देश में और विदेशों में स्थित दूतावासों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित होगी। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती मनाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शास्त्री जी ने उत्तर प्रदेश और बाद में कांग्रेस केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पद संभाले। गांधी जयंती के अवसर पर आज देशभर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर आज राजघाट और विजय घाट पर आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनजर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। यह व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान रिवॉच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सहयोग से आवाज से लिपि तक पूर्वोत्तर भारत में भारतीय लिपि वर्तनी के विकास के माध्यम से मातृभाषाओं का पुनरुद्वार परियोजना कार्यक्रम की शुरुआत के लिए इस महीने 3 और 4 अक्टूबर को 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों द्वारा बैंकिंग कंपनियों में प्रमुख हिस्सेदारी की अधिग्रहण अनुमोदन प्रक्रिया सरल बनाने के संशोधित निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य पात्र संस्थागत निवेशकों द्वारा प्रमुख हिस्सेदारी के बाद के अधिग्रहण के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना में घायल हुए कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉ दीपक मित्तल ने जानकारी दी। प्रसार भारती से विशेष बातचीत में राजदूत मित्तल ने बताया कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में कैप्टन मछार और उनके परिवार से मुलाकात की और पायलट मछार को अच्छी स्थिति में पाया। डॉ मित्तल ने कहा कि कैप्टन को अच्छी चिकित्सा मिल रही है और भारतीय दूतावास संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। जापान एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेल में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा की संभावना जताई है। केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं और अब रोजाना की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है हमराही। और आज के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ जिसके बोल हैं जीवन साथी साथ में रहना।

जीवन है तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, जीवन है तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। बेचैनियों में पड़कर इतना बेचैन ना होइए, खुशियों को दिल खोलकर दिल में ही संजोइए। 3:20 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

छोड़िए बेचैनियां सारी, अब जरा सुकून की तलाश में निकलिए। छोड़िए बेचैनियां सारी, अब जरा सुकून की तलाश में निकलिए। बहुत दौड़ लिए बेचैनियों के साथ, अब जरा आराम से ही चलिए। बेकार की उलझनों में खत्म हो जाएगी जिंदगी सारी, बेकार की उलझनों में खत्म हो जाएगी ये जिंदगी सारी। मेरी इन बातों को थोड़ा दिमाग में रखिए। पहुंच ही जाएंगे जहां पहुंचना होगा, पहुंच ही जाएंगे जहां पहुंचना होगा। दौड़ भाग छोड़कर अब थोड़ा आराम से ही चलिए। 3:27 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: ना याद रख दालिम तेरे बाबा की बाबा की बाबा की आ, तेरे बाबा की महफिल में मैं भूख हड़ताल कर दूंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा।
1: लेकिन छोटी सी एक अर्ज है,

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

सुकून में रहते हैं वो लोग जिन्हें थोड़ी भूलने की आदत होती है। सुकून में रहते हैं वो लोग जिन्हें थोड़ी भूलने की आदत होती है। अक्सर बहुत परेशान करती हैं कुछ भी ना भूल पाने की ये आदतें। कुछ चीजें भूलकर दिलो दिमाग को थोड़ा खाली भी करना चाहिए। कुछ चीजें भूलकर दिलो दिमाग को थोड़ा खाली भी करना चाहिए। फुल हो जाए मेमोरी तो फोन भी ठीक से काम नहीं करते। 3:42 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, जिसके बोल थे, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। घर बाहर से सुंदर हो तो जरूरी नहीं अंदर से भी अच्छा हो। इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए। सुंदरता का क्या है, सुंदरता तो मेकअप से भी आ जाती है। 3:48 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

मिजाज इंसान का बड़ा ही निराला है। कोई काम हो गया तो मैंने कर दिया, और जो नहीं हुआ तो भगवान की मर्जी।

3:58 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही। अब से कुछ ही देर बाद आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इस अवसर पर पूरे देश में और विदेशों में स्थित दूतावासों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित होगी। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती मनाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शास्त्री जी ने उत्तर प्रदेश और बाद में केंद्र में सरकार में कई महत्वपूर्ण पद संभाले। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर आज राजघाट और विजय घाट पर आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनजर विशेष यातायात व्यवस्था लागू होगी। यह व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर आज देशभर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का 5वां संस्करण कल शनिवार से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय बदलाव के दौर में लचीलापन रखा गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस सम्मेलन में 180 से अधिक नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वित्तीय विशेषज्ञ और वैश्विक विचारक एक मंच पर जुटेंगे। इनमें करीब 30 देशों के 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हैं। पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान रिवॉच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सहयोग से आवाज से लिपि तक पूर्वोत्तर भारत में भारतीय लिपि वर्तनी के विकास के माध्यम से मातृभाषाओं का पुनरुद्धार परियोजना कार्यक्रम की शुरुआत के लिए इस महीने 3 और 4 अक्टूबर को 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के पानीपत जिले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना बड़ी संख्या में ब्लीचिंग यूनिट संचालित होने संबंधी मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। खबर में बताया गया है कि इन इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों को जूते, दस्ताने या कोई अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। आयोग ने कहा कि श्रमिक इसके कारण खतरनाक रसायनों के सीधे संपर्क में आ रहे हैं। आयोग ने इस मामले में पानीपत के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। निजी अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी स्पेसएक्स ने ड्रैगन अंतरिक्ष यान को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने के कुछ समय के बाद केप कैनरवेल स्पेस फोर्स स्टेशन के लैंडिंग जोन 40 में अपने फाल्कन 9 के प्रथम चरण के बूस्टर सफलतापूर्वक उतार लिए। इसके साथ ही नासा के क्रू 13 मिशन की शुरुआत हो गई है। बांग्लादेश में आगामी दुर्गा पूजा उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हिंदू समुदाय 5 दिन तक चलने वाले इस उत्सव की तैयारी में जुटा है। बांग्लादेश सरकार ने इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए 5 दिन का अवकाश घोषित किया है। जापान एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेल में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta.

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 4:11 हो चुके हैं और ये समय रहता है हमेशा की तरह आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अरुणिमा। और एक बार फिर से मैं ही हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम किशोर कुमार जी की आवाज में एक बहुत ही बेहतरीन से गीत के साथ।

थोड़ी तहजीब से बात किया कीजिए हर किसी से, थोड़ी तहजीब से बात किया कीजिए हर किसी से, क्योंकि हर समय बदतमीजी आपकी परवरिश पर सवार उठाती है। 4:16 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

वादियां तो कल भी हसीन थी और आज भी हसीन ही हैं। वादियां तो कल भी हसीन थी और आज भी हसीन हैं। फर्क तो सब हमारी सोच का है। इसी बरसात में किसी को हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और किसी को हर तरफ सिर्फ कीचड़ ही कीचड़। 4:23 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

ले प्यार भी थोड़ा, तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को और यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी।

कुछ भौतिक सुख सुविधाओं के खातिर अब दिन रात बेचैन हुए हैं। कुछ भौतिक सुख सुविधाओं के खातिर अब दिन रात बेचैन हुए हैं। सुख चैन से रहेंगे घर में, इस चक्कर में अब और भी बेचैन हुए हैं। ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं, काश ये पहले पता चल जाता हमको, हर ख्वाहिश के चक्कर में खुद से कितने दूर हुए हैं। आधी जिंदगी बीत गई फिर भी सुख चैन से महरूम रहे हैं। छोड़ दी जब रब पर सारी चिंता, तब जाकर कुछ सुकून में रहे हैं।

आदतें भी जरा सोच समझ कर ही बनाइए, आदतें भी जरा सोच समझ कर ही बनाइए, क्योंकि जिंदगी गुजर जाती है पर ये आदतें नहीं बदलती, और जब आदतें बदलती हैं तब फिर जिंदगी नहीं बचती। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 4:35 हो चुके हैं। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित। तो आइए इस प्रोग्राम में इसी तरह आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

ताउम्र भटकते रहे मंजिलों की तलाश में, ताउम्र भटकते रहे मंजिलों की तलाश में, मिली जब मंजिल तब पता चला असली सफर तो अब शुरू हुआ है, अभी तक तो सिर्फ भटक ही रहे थे। 4:46 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

छोटी छोटी खुशियों में ही खुश होना अब सीख लीजिए। छोटी छोटी खुशियों में ही खुश होना अब सीख लीजिए। किसी बड़ी खुशी का इंतजार अब ना कीजिए। कोई बड़ा गम नहीं है, इसी बात की खुशी मनाइए। कोई बड़ा गम नहीं है, इसी बात की खुशी मनाइए। गमे दुनिया में कितने हैं गमगीन यहाँ पर, गमे दुनिया में कितने हैं गमगीन यहाँ पर। विश्वास ना हो तो किसी से भी जाकर पूछ लीजिए। 4:53 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को केवल एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर आज पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती मना रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शास्त्री जी ने उत्तर प्रदेश और बाद में केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पद संभाले। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर आज राजघाट और विजय घाट पर आयोजित कार्यक्रमों को देखते हुए विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। ये व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि इन विशेष ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान 2026-27 सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सकें। पांचवा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय बदलाव के दौर में लचीलापन रखा गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस सम्मेलन में 180 से अधिक नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वित्तीय विशेषज्ञ और वैश्विक विचारक एक मंच पर जुटेंगे। इनमें लगभग 30 देशों के 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन के दौरान कई मुख्य सत्र, समानांतर चर्चाएं और गोलमेज बैठकें होंगी। इन बैठकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने और दीर्घकालिक निवेश के लिए घरेलू पूंजी जुटाने जैसे प्रमुख विषयों पर मुख्य चर्चा होगी। पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान रीवॉच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सहयोग से आवाज से लिपि तक पूर्वोत्तर भारत में भारतीय लिपि वर्तनी के विकास के माध्यम से मातृभाषाओं का पुनरुद्धार परियोजना कार्यान्वयन की शुरुआत के लिए इस महीने 3 और 4 अक्टूबर को 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करेगा। बांग्लादेश में आगामी दुर्गा पूजा उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हिंदू समुदाय 5 दिन तक चलने वाले इस उत्सव की तैयारियों में जुटा है। बांग्लादेश सरकार ने इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए 5 दिन का अवकाश घोषित किया है। जापान में 20वें एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत अब तक 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with the principles of pro-people, proactive and good governance. He said the country is progressing rapidly on the reform express and institutions conducting examinations must also undertake reform in line with the country's needs. Addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission at Bharat Mandapam in New Delhi, the Prime Minister stressed the need to bring young people into public services who are driven not by public office, but by public service.

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 5:11 हो चुके हैं और अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है भोर सुहानी। और एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित।

कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है। जागना ही है हर दिन तो एक उम्मीद के साथ ही जागिए। जागना ही है हर दिन तो एक उम्मीद के साथ ही जागिए। निराशा के साथ जागे तो पूरा दिन निराश ही रह जाएंगे। उम्मीद के साथ ही कीजिए हर काम को, उम्मीद के साथ ही कीजिए हर काम को, कभी न कभी सफल जरूर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं भोर सुहानी के इस सफर को मेरे यानी अर्चित के साथ।

कोशिश करिए कि बिना बात के कोई आपसे नाराज ना हो। कोशिश यही करिए कि बिना बात के कोई आपसे नाराज ना हो। रिश्ते सभी से आपके हमेशा शानदार ही हों। हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए। हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए, पर कभी आप हो नाराज तो उसे भी इस बात का एहसास जरूर हो। 5:18 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, जिसके सपने हमें रोज आते रहे। 5:24 हो चुके हैं, सपनों से जागने का समय अब हो चुका है, क्योंकि कुछ समय बाद सुबह होने लगेगी। रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास अपने पैरों पर रखें। जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, ये रास्ते आपको कहीं नहीं पहुंचाते। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी, मेरे यानी अर्चित के साथ।